0: मेरी आवाज गूंजेगी।
1: नमस्ते, सत श्री अकाल, आपका स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लंच बॉक्स शो में। मेरा नाम केतन है और आप मुझे सुन रहे हैं यहाँ पे। जी हाँ, हम रेडियो से अभी से लेके 3 बजे तक मैं यहाँ पे हूँ। बहुत सारी बातें होने वाली है। अभी थोड़ी देर में आपके लिए होम सिक रेमेडीज की भी कुछ रेमेडीज लेके आने वाला हूँ, यानी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप बहुत ज्यादा मिस करते हैं। आप भी मुझे भेज सकते हैं 5599 पे भेजिए और बताइए कि कौन सी ऐसी चीज है जो आप मिस करते हैं बहुत ज्यादा। अपने नाम के साथ मुझे भेजिए 5599 पे, जिसके बारे में बात होगी थोड़ी देर में।
2: बचाओ क्या

0: Welcome back. You are listening to Lunchbox. My name is Ketan. And now let's talk about Homestick Remedies. Some big messages have come here, which we will hear here. The first message has come from Rohan Bhai. Rohan says, I miss those evenings when neighbors would just walk into our house without texting first. Back home, nobody needed appointment to meet people. That is so true, yaar. Yahan pe to alag hi hai. Yahan pe, in fact, suna hai that parents ko bhi aapas mein milne ke liye appointment leni padti hai, aur vice versa. But yes, sabka apna apna culture hai. Of course, there is no direct attack on anything. But yes, this is the major thing which I also miss. But mujhe lagta hai ki time ke saath theek hai. Like परमिशन मेरे को लगता है कि प्रोज एंड कॉन्स दोनों जगह. इमोशनली अगर आप सोचोगे तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा, बट प्रैक्टिकली अगर सोचोगे तो ऑफ कोर्स आप काफ़ी टाइम बचा रहे हैं, उसके फायदे भी हैं. सो यस, थैंक यू रोहन भाई आपके मैसेजेस के लिए. पूजा कहती है, नॉट आवर ब्रेकफास्ट पूजा बट अदर पूजा, आई डिडंट रियलाइज हाउ मच आई वुड मिस मानसून रेन इन इंडिया. ऑकलैंड रेन्स टू बट इट डजंट स्मेल द सेम. ये पहले भी किया है शायद ना, आई डोंट नो इफ वाज इट पूजा और कोई और था, बट थैंक यू पूजा. डेफिनेटली ये चीज़ तो मेरे साथ भी हुई है दैट जो मानसून का जो मज़ा आता था इंडिया में वो यहाँ पे इसलिए कम हो चुका है बिकॉज यहाँ पे 12 ही महीने बारिश होती रहती है. इनफैक्ट जिस दिन बारिश होती है तब तो लगता कि अब हम कहीं पे प्लान नहीं कर सकते ऐसा कुछ. वाई सोचा. देव कहते हैं, माई रेमेडी फॉर होम सिकनेस, लेट नाइट टी विथ अदर फिजी इंडियन फ्रेंड्स, somehow sitting together and talking in our own style makes Auckland feel better. ये क्यों मेरे को deja vu जैसा फील हो रहा है अभी हाल फिलहाल. ये messages में पढ़ रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पहले भी पढ़े हैं मैंने. अगर if you are a regular listener of mine, do let me know. बताइएगा मुझे 5599 पे. But thank you so much for all the messages. आप बने रही होम ऑफिस shout out के लिए भी आप मुझे message भेज दीजिए अब भी 5599 पे.
1: Lunchbox with Ketan.
2: मुझे पसंद है लड़का.
1: हाँ.

भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।

0: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
1: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
0: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
1: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
0: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
2: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 ईयर्स।
3: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल।

0: कब तक चलेगा? Switch to Leap Motor C10 or B10 Ultra Hybrid or Electric. सिर्फ 44,990 plus on road से शुरू. Visit Armstrong's Leap Motor Green Lane or Botany. T's and C's apply.
1: Beating pump prices is easy with Auckland Transport. Simply use your Hopcard, credit or debit card, smartphone or smartwatch to tag on and off buses, trains and most ferries. Search AT Journey Planner and save when you mix your go with AT.
2: Big Save's massive bed sale ends Monday. Whatever size of bed you're after, from single to California King, we have it. And today we're having a massive bed sale. Queen beds from only $7.99. Get a free mattress protector with our Pacific California King bed, only $17.99. And get a single bed for only $2.99. We've got thousands of beds in stock. Take home a new bed today. Must end Monday only at Big Save.
3: Do you know why so many of your neighbours are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mould and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
4: Showerdome.co.nz.
5: Non-stop Bollywood.
6: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं.
5: हम playing Bollywood's biggest hits.
7: Lunchbox with Ketan.
8: हीरा लड़का है. टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
7: हम. Office shoutout.
9: Welcome back. You are listening to Lunchbox. Well, yes, office shoutout में आपका स्वागत है. यहाँ पे मैं messages पढूंगा वो सारे जो आपने भी भेजे हैं रिगार्डिंग अभी हाल फिलहाल आप लंच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल ऑफिस में या घर पे या कहीं बाहर, ये सारे मैसेजेस आपने भेजे हैं मुझे, मैं पढ़ता हूँ अभी. सबसे पहले तो निखिल ने भेजा है, ईटिंग सुशी इन द ऑफिस बट सीक्रेटली विशिंग फॉर हॉट बटर चिकन इन दिस कोल्ड वेदर. कोल्ड तो है बट इतना नहीं है, बट मे बी आई डोंट नो, आप जहाँ काम कर रहे हो सकते हैं वहाँ पे हो. बट यस, ये जो बटर चिकन का नाम लेते हो, मेरे को बटर चिकन तो खैर इतना पसंद नहीं है, बट चिकन का नाम लेते मुझे भी थोड़ी क्रेविंग होने शुरू हो जाती है खाने की. जी हाँ, बट थैंक यू यार, थैंक यू. लिथिया कहती है, बुला विनाका, केतन, माय मम पैक्ड कसावा एंड लैम करी टुडे. माय कीवी वर्कमेट्स ऑलवेज क्यूरियस अबाउट फिजी फूड. हा हा, ओके. कसावा क्या होता है यार? मेरे को डेफिनेटली गूगल करना पड़ेगा यार. लाइक कसावा मैंने पहली बार सुना है एक्चुअली, बट मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं कसावा क्या होता है. बट थैंक यू लितिया, थैंक यू फॉर योर मैसेज. अनिका कहती है, आई मेड माय ओन लंच टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सम हाउ द स्मोक अलार्म आल्सो गॉट इनहॉल्ड. ये 19 साल की है, अरे क्या बात है. थैंक यू अनिका, थैंक यू सो मच. होपफुली योर मॉम won't be so angry after this. अभी मदर्स डे तो खत्म हो गया, अदरवाइज आई वुड हैव आस्क्ड यू कि उनका रिएक्शन क्या होने वाला है यहाँ पे. बट यस, एक और मैसेज पढ़ लेते हैं. राजेश भाई कहते हैं, नो लंच येट, वेटिंग फॉर वाइफ टू डिसाइड व्हाट यू वी आर ईटिंग. मैरिड लाइफ ब्रो, दैट इज ट्रू, बट हम तो ऑब्वियसली साथ में ही डिसाइड करते हैं व्हाट वी गोना बी मेकिंग. बट यस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मैसेजेस. आप ऐसे ही बनी रहिए, थोड़ी देर में कुछ चटपटी खबरें लेके आऊंगा मैं बहुत ही जल्द.
5: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

कुछ कम्युनिटी इवेंट्स की बात कर लेते हैं। काफी इवेंट्स होने वाले हैं। सबसे पहले तो 17 मई को होने वाला है सुबह के 11 से शाम के 4 बजे भोजन मेला फूड कार्निवल, जो कि श्री वेंकटेश्वरा देवास्थनम चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से हो रहा है। जो पर्पज है उनका है वो ये है कि टू सपोर्ट लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल प्रोजेक्ट। जी हाँ, वैसे यस, काफ़ी फीचर है इसमें। फ्री एंट्री है, फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स है, फ्री फूड बाय शिवानी रेस्टोरेंट एंड इडली सांबर, ज्वेलरी क्लोथिंग एंड अदर स्टॉल्स भी मिलने वाली है। हीना आर्टिस्ट होने वाला है, फेस पेंटिंग, उसके बाद बाउंसी कासल साइट विजिट एज वेल। आप स्पॉन्सरशिप या स्टॉल्स के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं शिवानी अरोरा को 0218700012 पे। उसके बाद 147th गिरमिट रिमेम्बरेंस डे भी सेलिब्रेट किया जा रहा है बाय ASAP ASAP प्रॉपर्टी फाउंडेशन स्पेशलिस्ट गिरमिट फिजी गिरमिट फाउंडेशन। 16 मई को ये सेलिब्रेट किया जा रहा है मलायोला कम्युनिटी सेंटर 16 वाव कौरी प्लेस मैंगरे में। आप शाम के 4:30 से 8:30 बजे तक विजिट कर सकते हैं। 4 बजे दरवाजे खुल जाएंगे आप सभी के लिए। बहुत ही परफेक्ट टाइम है आप सभी के लिए एक नेटवर्किंग टी एंड स्नैक्स के लिए। जी हाँ, एंड ऑफ कोर्स एंट्री जो है वो कम्प्लीटली फ्री। अगर आपके पास कुछ सवाल जवाब है या फिर आप वॉलंटियर होना चाहते हैं तो आप fijigirmitnz@gmail.com पर जाके ईमेल करके आप कह सकते हैं। उसके बाद देयर इज बढ़िया इवेंट होने वाला है द ग्रैंड मस्ती नाइट 23rd May 2026 को नेटबॉल मनुरेवा में, जहां पे बहुत ही बढ़िया रिनोन आरजे आ रहे हैं फिजी से। जय भैया जी एंड रॉडी नमन ये आ रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स डांसिंग लेजेंड भी आ रहे हैं चाफर कमिंग टू न्यूजीलैंड आफ्टर 17 ईयर्स। 5 से 6 मसाला मिक्स स्किट्स ऑन द स्टेज भी होने वाली, जिसमें कॉमेडी होगा, डांस होगा एंड कुछ मस्ती मैडनेस ऑन द स्टेज एज वेल। कुछ एक बहुत ही बढ़िया ड्यूअल वॉइस भी होने वाले, यानी कि एक सिंगर से दो आवाज, क्या बात है। मेल फीमेल मानी डिसूजा वो आ रहे हैं, वो दोनों आवाज़ों में खुद अकेले गाएंगे। अमेजिंग मॉन्टो मोनिका भी होने वाली है और युवा डांस ग्रुप न्यूजीलैंड भी होने वाला है। फिर साथ में ऑफकोर्स टॉप डीजेस भी होने वाले हैं। और सबसे खास बात बताया गया, खास बात तो खैर सारी है, ये तो छोटी सी बात है कि मैं खुद भी वहाँ होने वाला हूँ, मैं खुद भी परफॉर्म करने वाला हूँ शो में। सो यस, आई वुड लव टू सी यू ऑल ओवर देयर। सो लॉट्स ऑफ गिव अवेज टू बी वॉन, मलाबार गोल्ड एंड डायमंड वाउचर्स भी होने वाले हैं वहाँ पे, रॉयल गोल्ड हैम्पर्स पैक भी मिलने वाले हैं, ग्रीन हॉर्न गिफ्ट हैम्पर भी होने वाला है, विकेट चिंग चिकन बॉटनी राउंड ब्रांच विल ऑल्सो गिव फूड वाउचर ड्यूरिंग द शो टू विन। तो देखिए कितना कुछ है आप सभी के लिए। सो यस, पार्किंग जो है कम्प्लीटली फ्री है, बट आप टिकट ले लीजिए, टिकट खरीद लीजिए आप हंटर्स फूड टाउन पापाटोटो या फिर जय फ्रेश मार्ट पापाटोटो, गेट फ्रेश सुपरमार्केट मैंगरी, केस हेयर एंड ब्यूटी सलून मनुरेवा से, या फिर विकेट चिकन बॉटनी डाउन्स ब्रांच या फिर जेंडर हेयर एंड ब्यूटी सलून से आप खरीद सकते हैं। सो यस, गो एंड डू इट फास्ट बिफोर इट गेट सोल्ड आउट।

0: रोआ ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कंप्लीटली फ्री ऐप है। एज यू ऑल नो दैट आप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अगर नहीं है तो, और अगर है तो उसे यूज करिए। आपके जहन में होगा कि यार डेटा जाता है ये कैसे फ्री है, वेल एक्चुअली टेक्निकली तो फ्री नहीं है, डाउनलोड करना इज फ्री बट यूज करने एज लॉन्ग एज आपका डेटा है वो ही काफी है, वो ही चाहिए बस। आपका कोई इनिशियल आपको यू नो बैंक अकाउंट डिटेल्स या फिर कुछ परचेज कुछ नहीं करना है, इट्स जस्ट द डेटा विच विल बी यूजिंग। बट लेट मी पुट सम लाइट ऑन दैट, लेट मी क्लियर एक चीज। आप एक स्टोरी डालते हो विदाउट थिंकिंग अबाउट कि कितना आपका डेटा जाएगा कितना नहीं जाएगा, तो यहाँ क्यों? वेल एक और अच्छी बात बताता हूँ, दैट एक स्टोरी डालते हो आप 20 सेकंड की, जितना डेटा वो यूज करेगा उससे आप एक घंटे तक रोआ ऐप के जरिए आप हमें सुन सकते हैं। जी हाँ, नो कंपेरिजन ऑफ कोर्स, बट दिस इज जस्ट टू क्लेरिफाई कि अगर आप इस वजह से यूज नहीं कर रहे हो ऐप तो। जी हाँ, वैसे उसके थ्रू आप काफी म्यूजिक स्टेशन सुन सकते हो, हमारे पॉडकास्ट सुन सकते हो, और साथ में रोआ ऐप के जरिए आप गेम्स भी खेल सकते हो जहाँ पे तरह तरह के कॉम्पिटिशन आते हैं और उसे जीत सकते हैं, जैसे कि कीवी वर्ड विजर्ड। इफ यू आर देन दिस इज द गेम, द गेम नेम इज चर्डल, इसे खेलिए, जितने फ्रेजेस हैं उसे फिल आउट करिए, बॉक्सेस जितनी गलती कम गलतियों के साथ आप फिल आउट करेंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपके ड्रॉ में शामिल होने के और जीतने के, $100 a day। जी हाँ, $7,000 तक के हमारे पास गिव्वे है, सो डोंट वेट एंड स्टार्ट एक्टिंग नाउ। रोआ ऐप डाउनलोड कर लीजिए, खेलना शुरू करिए। लंच
1: बॉक्स विद केतन। इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
2: इसके पीछे हम कीप काम बिकॉज़ पंजाबी स्वैग इज ऑन।

0: Totoy plus 24-hour mobile service. For bulk orders, call Ron on 022-175-3941 or visit rpstires.co.nz or their Facebook page, RPS Tires. Drive safe, drive smart.
1: Spark Satellite, powered by Starlink satellite to mobile technology, is officially live. With an eligible phone and line of sight to the sky, you can now send texts and use data on select satellite-ready apps while you're out exploring off the beaten path. With Spark Satellite, the best coverage just got better. Go to Spark to find out more. As awarded by Open Signal, requires eligible phone, SIM and plan. T's and C's apply.
2: Babita, thank you so much for giving me Guru's number, yaar.
3: Kyun? Kya hua?
2: Mujhe urgent kaam se Fiji jana tha. $20,000 chahiye the. Bank gayi, to itne documents maange ki bas poochho hi mat. Ek hafta ho gaya, no response. Phir tumne Guru ka number diya aur bas agle din paise mere account mein. Guru to ho ja shuru wala kaam hai.
4: Guru Kandola of Logic Finance, a household name in finance and insurance industry. Call 0800 Logic G. That's 0800-564-424.
5: Lunchbox with Ketan.
6: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी.
7: चटनी शॉट्स में आपका स्वागत है. यहाँ पे फटफट से आपके लिए न्यूज लेके आया हूँ. सबसे पहले तो ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने नए फ्यूल रेशनिंग प्लान्स रिवील किए हैं, लेकिन ऑफिशियल्स का कहना है कि इनिशियल फेसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे. नेल्सन में दो पुलिस ऑफिसर को एक कार ने हिट कर दिया, जिससे कलीग्स ने कैटास्ट्रोफिक सीन बताया है. इन्वेस्टिगेशन जारी है. डनिडन की एक महिला ऑनलाइन स्कैम का शिकार बनी और फेक यूएस जनरल के झांसे में आकर लगभग $800,000 भेज दिया. वेस्ट ऑकलैंड में 120 बाइकर्स की राइड ने कियोस क्रिएट कर दिया, जिससे बाद में के कई अरेस्ट भी किए गए. स्पोर्ट्स की दुनिया से व्हाइट फर्न इंग्लैंड के खिलाफ पहला ओडीआई सिर्फ एक विकेट से हार गई और न्यूजीलैंड रग्बी बॉस ने कहा है कि सुपर रग्बी मैचेस में एम्प्टी सीट्स एक बड़ा कंसर्न बन सकता है. एंटरटेनमेंट में पॉप स्टार केटी पेरी फीफा वर्ल्ड कप के पहले मैच में यूएस में परफॉर्मेंस देने वाली है और आखिर में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग बुल $1,61,000 यानी कि $161,000 में बेचा गया, जिसे ओनर्स ने वर्थ एवरी सेंट कहा.

Well, आज का सवाल मेरी तरफ से बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है ये. What is the weirdest thing you have googled today? या फिर recently? जल्दी से मुझे इसका जवाब 5599 भेज दीजिए और बताइए कि कौन सी ऐसी weirdest thing है जो आपने Google पे सर्च की है. 5599 is the number. अपने नाम के साथ मुझे भेजिएगा.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर के हाल चाल जान लेते हैं। 17 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला, 11 डिग्रीज आज का मिनिमम रहेगा। वैसे यस, बारिश के आसार बहुत ही ज्यादा है, 7.6 mm हो सकती है, 70% चांस है बारिश के, लेकिन 5:26 PM पे होगा आज का सनसेट।
0: लंच बॉक्स विद केतन,
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे
1: नमस्ते, सत श्री अकाल, आपका फिर से स्वागत करते हैं आज के इस लंच बॉक्स शो में। वेल यस, थोड़ी देर में बात होगी लंच टाइम रेंट लाइन की, तो आप जल्दी से फोन उठाइए और मुझे भेज दीजिए ऐसी बातें जो सचमुच आपको बहुत ही ज्यादा इरिटेट करती है, बट यू मे नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। तो यस, लंच टाइम रेंट लाइन, चाहे वो खाने के बारे में हो या फिर नहीं हो, कुछ हटके भी टॉपिक हो, यू कैन डेफिनेटली सेंड मी। एंड इनफैक्ट आप 5599 पे अपने नाम के साथ मुझे भेजिए। लेट्स सी यार कितने हिलेरियस यू नो कंटेंट आता है हमारे पास।
0: बचाओ क्या, लेडीज एंड जेंटलमैन,

वेल लंच टाइम रेंटलाइन की थोड़ी देर में बात होगी, प्लस आपके लिए वो कोड भी मैं अनाउंस करूंगा बहुत ही जल्द, जहां पे ऑफ कोर्स सुनते ही आपको डालना है विद इन 60 मिनट्स उस कोड को डालेंगे अपने रोए पे ताकि आप ड्रॉ में शामिल हो सकें और इस ड्रॉ के जरिए आप जा सकें, अगर जीतते हैं तो फ्लाई टू फीजी, वो भी रिटर्न टिकट। क्या बात है। तो यस वो चीज सुनते रहना, बट यस थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक सवाल किया था कि क्या ऐसी वियर्डेस्ट थिंग है जो आपने सर्च की है गूगल पे रिसेंटली। राज भाई एज ऑलवेज फर्स्ट वन हु ऑलवेज सेंड मी, उन्होंने लिखा है कि आई गूगल्ड कैन यू कुक राइस इन अ कैटल बिकॉज द पावर वेंट आउट एंड वॉज डेस्परेट ब्रो। ये सही है। सो आपको जवाब मिला नहीं मिला, क्या गूगल ने क्या जवाब दिया वो भी तो जवाब दीजिए। उसके बाद शानिया कहती है मनुकाओ से, एट 2 AM आई सर्च व्हाई डू इंडियन आंटीज नो एवरीथिंग बिफोर आवर योर पेरेंट्स। ये तो भाई क्या जवाब दूं मैं इसमें, मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है अगर

0: बट आप बताइए जवाब में इनकाउंटर कि क्या गरम मसाला यूज कर सकते हैं व्हेन इट गेट एक्सपायर्ड। प्रिया कहती है व्हाई डस चाय टेस्ट बेटर व्हेन मम मेक्स इट। ये तो यार माँ का प्यार है यार, मतलब माँ का प्यार क्या, मतलब ऑनेस्टली इसका जवाब तो हाँ, मतलब सारी सबकी माओ का खाना है ना एकदम टेस्टी होता है, ऐसा क्यों? एक्चुअली गुड क्वेश्चन यार। कोई है यहाँ पे जवाब देना चाहेगा मुझे? 5599 इस नंबर जहाँ पे आप मुझे भेज सकते हैं।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
3: हम
1: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
4: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
5: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब क्या है कि मैं
6: बहुत खुश है, बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन।
5: मेरे को समझ में नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
6: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
1: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
3: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून।
1: वीकडेज 6 to 10 a.m.
7: The Spec Savers Spec Stravaganza store-wide sale is on now. Phew, bit of a tongue twister, hey? Get any two pairs of glasses store-wide, even designers, for only $299. Save up to $200. Only for a limited time. Should have gone to Spec Savers. Include single vision lenses. Conditions apply.
8: Big news, New Zealand. Mother's Day may be over, but our Triple Dip promotion is still on. There's 100 extra prizes of $30,000 that must be won. Get a Triple Dip in-store or online. Prizes drawn Saturday 16th of May. T's and C's apply.
9: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
10: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
9: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
11: सोना संसार 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर gold.
12: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Fly to Fiji from just $309 one way, or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations like Samoa from $305 one way, Tonga from $319, Tokyo from $635, Singapore from $699, and Hong Kong from $669 one way. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
13: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी, और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल।
14: रियल साउथ इंडियन टेस्ट का क्रेविंग है? ट्राई करो कशिश फूड्स डोसा बैटर, फ्रेशली मेड इन न्यूजीलैंड, स्टोन ग्राउंड फॉर दैट ऑथेंटिक टेक्सचर, सॉफ्ट फ्लफी इडलीज और परफेक्टली क्रिस्पी डोसास, हर बार क्लासिक हो या रागी, मल्टीग्रेन या मेदू वड़ा बैटर, सब मिलेगा। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31st May तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर, लिव बेटर।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
15: मुझे पसंद है लड़का।
1: हम लंच टाइम रेंट लाइन।
0: वेलकम टू लंच टाइम रेंट लाइन के सेगमेंट पे, मेरा नाम केतन है और आप सुन रहे हैं मुझे हम रेडियो पे। लंच बॉक्स शो इट इज। वेल फरजाना कहती है एवरी आंटी रिमेंबर्स योर चाइल्डहुड एम्बैरेसमेंट स्टोरीज बेटर देन देयर ओन बर्थडे। वेल क्या क्या क्या बोलूं इसमें मैं। कोई है यहाँ पे जो जवाब देना चाहता है मुझे इस पे? क्या मतलब मेरे पास कुछ है नहीं इसका, इसके बारे में जवाब। फरजाना कहती है कि हर एक आंटी को आपके चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में पता है बट मोर देन देयर ओन बर्थडे। सो या कोई है यहाँ पे जो देना चाहता है जवाब, फील फ्री। दिनेश भाई कहते हैं ऑकलैंड ट्रैफिक गॉट मी क्वेश्चनिंग माई लाइफ चॉइसेस एवरी सिंगल मॉर्निंग। ये थोड़ा इंटेंस हो गया है बट यस दिस इज व्हाट इट इज। यहाँ पे ट्रैफिक जो है बढ़ते ही जा रहा है एंड ऑनेस्टली यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग अनटिल अनलेस हम डाउन साउथ में शिफ्ट हो जाए, वहाँ पे ट्रैफिक नहीं है। इनवर्स आगे शिफ्ट हो जाओ, ट्रैफिक ही नहीं है।

0: उसके बाद रीना कहती है, व्हाई डू इंडियन मॉम नेवर थ्रो अवे आइसक्रीम कंटेनर्स, ओपन फ्रीजर, सरप्राइज, इट्स ओल्ड करी। हाँ, ये बहुत ही सही है। और उसके बाद सॉरी, मेरे को स्नीज आ गई थी, मेरे को माइक बंद करना पड़ा। बढ़िया, कहाँ था मैं? हाँ, रीना कहती हैं, व्हाई डू इंडियन मॉम्स नेवर थ्रो, हाँ ये तो पढ़ लिया था। महेश भाई कहते हैं, नॉट महेश बाबू, जिम मेंबरशिप्स इन जनवरी शुड कम विथ फ्री डिसअपीयरिंग एक्ट बाय फरवरी। क्या मतलब हुआ इसका? लगता है इनके, ये भी मेरी तरह डोनेशन करते हैं, ये भी मेरी तरह अमीर बना रहे हैं जिम ओनर्स को। सिमरन कहती हैं, प्लीज टेल पीपल नॉट टू यूज लाउड स्पीकर ऑन ट्रेन, वी डोंट नीड फुल फैमिली गॉसिप अपडेट। नाउ ये एक्चुअली पॉइंट है, बट आई डोंट नो, ये मेरे को लगा शायद इंडिया में होता होगा, यहाँ पे भी होता है इस तरह की बातें। आखिरी मैसेज पढ़ते हैं अरविंद भाई का, एवरी फीजी इंडियन नाना थिंक्स विक्स कैन क्योर एब्सोल्युटली एवरीथिंग। ये मैं रिलेट कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे नाना भी हो गए, मेरी मॉम, एक्चुअली मॉम खुद कहती है कि विक्स की गोली खा ले या फिर विक्स लगा दे, सब सही हो जाएगा। और इनफैक्ट मुझे भी लगता है कि काफ़ी हद तक सही हो जाता है, बट ये सिर्फ मेरी सोच है या सचमुच ऐसा होता है, आई हैव नो आइडिया, बट एक्चुअली मोस्टली सर्दी जुकाम होता है, इट एक्चुअली वर्क फॉर मी। या बट थैंक यू फॉर द मैसेजेस, बने रहिए, जल्दी आपके लिए लेके आने वाला हूँ एयर टिकट टू फीजी का वो मैजिकल कोड वर्ड।
1: लंच के मंच पे टॉप हिट ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: वेल एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक आया है मेरे हाथ में क्या टॉपिक था सॉरी माय बैड Why supplements are not a shortcut to healthy aging? Well, इसके जवाब में मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया उसमें ये आर्टिकल आया है that health experts ने वार्निंग दी है कि supplements healthy aging का shortcut नहीं है एक नए रिपोर्ट्स के मुताबिक आजकल बहुत सारे लोग विटामिन और सप्लीमेंट्स का क्विक हेल्थ फिक्स समझ कर यूज़ कर रहे हैं लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि सिर्फ पिल्स से हेल्दी लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती डॉक्टर कहते हैं कि कुछ सप्लीमेंट्स जैसे विटामिन डी विटामिन बी 12 और प्रोटीन सप्लीमेंट्स ज़रूर हेल्पफुल हो सकता है स्पेशली ओल्डर एडल्ट्स के लिए लेकिन बिना प्रॉपर मेडिकल एडवाइस के ज़्यादा सप्लीमेंट्स लेना हार्मफुल भी हो सकता है हाई डोजेस से लिवर किडनी और बॉडी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है साथ में एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि हेल्दी एजिंग का असली फॉर्मूला है बैलेंस डाइट रेगुलर एक्सरसाइज अच्छी स्लीप और स्ट्रेस कंट्रोल सप्लीमेंट सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल को रिप्लेस नहीं कर सकते सो यस डेफिनेटली याद रखिए हेल्थ की असली स्ट्रेंथ है बॉटल में नहीं डेली हैबिट्स उस चीज में होती है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है वैसे ही है।

0: Well, yes, Hollywood ke famous James Bond star Pierce Brosnan ne in dino न्यूजीलैंड ट्रिप पर है और उनका सिंपल कीवी स्टाइल फैंस को काफी पसंद आ रहा है। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रॉसनन नॉर्थलैंड के एक लोकल फिश और चिप्स शॉप पर नजर आए, जहां उन्होंने लोकल नेटवर्क भी खरीदा। सॉरी, आर्टवर्क, नॉट नेटवर्क। नेटवर्क कैसे खरीदेंगे भाई? हाँ, लोकल आर्टवर्क को खरीदा। शॉप ऑनर्स ने यह बताया कि हॉलीवुड सुपरस्टार बहुत ही हम्बल और फ्रेंडली थे। पियर्स ब्रॉसनन ने लोकल आर्टिस्ट के काम में काफी इंटरेस्ट दिखाया और न्यूजीलैंड कल्चर की तारीफ भी की। इससे पहले भी वो ऑकलैंड की आर्ट गैलरीज और लोकल रेस्टोरेंट्स में विजिट करते नजर आए थे। फैंस ने सोशल मीडिया पर काफी एक्साइटमेंट दिखाई और एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी इतनी सिंपलिसिटी के साथ लोकल कीवी स्पॉट्स एंजॉय कर रहा है। कई लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया कि जेम्स बॉन्ड भी अब कीवी फिश एंड चिप्स का फैन बन गए। पियर्स ब्रॉसनन, उनका ये लो प्रोफाइल न्यूजीलैंड हॉलीडे अब लोकल और फैंस दोनों के लिए डिस्कशन का हॉट टॉपिक बन चुका है। व्हाट यू थिंक? आपको दिखेंगे ही वो। 5599 इज द नंबर।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन,
4: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
5: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
4: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
6: द हच विल्को न्यूजीलैंड बोट शो is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha grand prize. Auckland Showgrounds, May 14 to 17. Tickets at boatshow.co.nz.
4: We gotta go to the boat show. Lunchbox with Ketan.
7: Iske piche na 3-4 ladkiyan padi hui hain.
2: Iske piche?
6: Hum.
4: Lunch ke munch pe.
0: Well, yes, the time has arrived. जहाँ पे आप बेसब्री से वेट करते हैं, अपना काम काज छोड़कर ये सुनने का वेट करते हैं कि कैसे कब आपको कोड में बता सकूं। So yes, the code is here finally. और वो कोड है for Fly Fancy, जी हाँ, with Hum, ताकि आप फीजी के लिए एयर टिकट कॉम्पिटिशन में भाग ले सके, आप अपने आप को ड्रॉ में डाल सके। Well, yes, आज 12 तारीख है, तो 12 तारीख के हिसाब से आज का जो वो कोड है, लकी कोड, वो है खेरे खेरे। जी हाँ, KERE KERE, केरे केरे है कोड। इसको फट से अभी से, आपके पास टाइम है एक घंटे का, और फट से डाल दीजिए रो ऐप पे ताकि आप ड्रॉ में शामिल हो सके। बढ़िया, थोड़ी बॉलीवुड की बात कर लेते हैं। साउथ इंडियन सिनेमाज काफी पॉपुलर होते जा रहा है और एक फिल्म है दृश्यम, वो एक्चुअली घर घर में काफी फेमस हो चुकी है। साउथ सिनेमाज के फैंस के लिए एक बहुत ही बढ़िया खबर है इस, और साथ में ऑफकोर्स हम लोगों में भी जो मूवी देखना पसंद करते हैं, स्पेशली दृश्यम जैसी, जैसे कंसेप्ट की। तो मोहनलाल की मच अवेटेड थ्रिलर दृश्यम 3 का ट्रेलर फाइनली रिलीज हो चुका है और इस बार जॉर्ज कुटी की जिंदगी पहले से भी ज्यादा डार्क और डेंजरस नजर आ रही है। वैसे ट्रेलर में दिखाया गया है कि पुराने राज एक बार फिर उनका पीछा कर रहे हैं। डायरेक्टर जेथू जोसेफ की इस सस्पेंस थ्रिलर में जॉर्ज कुटी सिर्फ पुलिस की नहीं बल्कि सोसाइटी और अपने ही फैमिली के डाउट का सामना करते नजर आते हैं। वैसे ट्रेलर के इमोशनल और इंटेंस सीन्स ने फैंस की एक्साइटमेंट और भी बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म 21 मई 2026 को वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी और एडवांस बुकिंग को ऑलरेडी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलते जा रहा है। फैंस सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि दृश्यम फ्रेंचाइजी का ये सबसे थ्रिलिंग चैप्टर हो सकता है। सो यस, मोहनलाल की आइकॉनिक कैरेक्टर जॉर्ज कुटी एक बार फिर मिस्ट्री, फियर और सस्पेंस के साथ बड़े पर्दे पर नजर आते दिखेंगे और सवाल वही है, क्या इस बार भी सच छुपा पाएंगे या नहीं? काफी एक्साइटिंग टॉपिक है और मैं शायद ये वाली फिल्म मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप देखिए और बताइए मुझे। बट ऑब्वियसली लैंग्वेज का वेरियर, अगर हिंदी में आती तो डेफिनेटली आई वुड लव टू वॉच। बट ऑफकोर्स अजय देवगन की भी जो रीमेक थी वो भी एक नंबर थी। क्या बोलते हो?
4: दिल

चलिए अभी का मेरा सवाल वो ये है कि ऐसी कौन सी चीज है जो बचपन में आपको बहुत ही महंगी लगती थी बट देन नाउ यू आर रियलाइजिंग भाई ये तो बहुत ही सस्ती थी। 5555 नंबर जहां पे आप मुझे टेक्स्ट भेज के बता सकते हैं। लव टू हियर फ्रॉम यू यार।

0: celebrating local artists.
1: Back Your Backyard Beats.
2: Well, अगला जो गाना है वो सुने उससे पहले मैं बता देता हूँ कि Back Your Backyard Beats आज के जो सुपरस्टार है, आज के जो हमारे लोकल सुपरस्टार है, वो है जसराज बसरा। जी हाँ, जसराज बसरा ऑकलैंड बेस्ड इमर्जिंग आर्टिस्ट है जो कि इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं और अपना जो डेब्यू पंजाबी रिलीज है वो भी कर रहे हैं, ब्रिंगिंग अ फ्रेश एंड एनर्जी साउंड, एनर्जेटिक साउंड। जी हाँ, जग्गा नचदा ये इनका गाना है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे। बट लेट मी रिमाइंड यू, अगर आप भी सिंगर हैं और आप भी यू नो कंटेंट क्रिएट करते हैं, म्यूजिक के कंटेंट, और आपके पास कोई ट्रैक है ओरिजिनल या फिर कवर एज वेल, तो आप हमें भेज सकते हैं buzz@humfm.com पर, बिकॉज यहाँ पे भेजते ही अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो ऑफकोर्स आप पूरा दिन आपका हो सकता है, एज वी विल बी प्लेइंग योर सॉन्ग मल्टीपल टाइम्स। साथ में लोग आपको वोट करके आपको सपोर्ट करेंगे सो दैट यू कैन गेट इन टू टॉप 3 में, जहां पे टॉप 3 जो आर्टिस्ट होंगे वो फीचर्ड होंगे रोआ ऐप पे। जी हाँ, यानी कि आपके टोटल लाइक्स, शेयर्स ऑन सोशल मीडिया, प्लस कितने मैसेजेस आते हैं यहाँ पे हमें ऑन एयर, वो सब कंबाइन करके वी विल बी टेकिंग इट टू देयर। जी हाँ, वेल गेस आज की सुपरस्टार है वो जसराज बसरा, सो इफ यू लव हिज सॉन्ग मेक श्योर कि आप हमें MM लिखिए, 5599 टेक्स्ट भेज दीजिए विद हिज नेम टू सपोर्ट हिम। जी हाँ, और अगर आपको और भी सवाल है तो सिर्फ MM लिख के हमें 5599 पे भेज दीजिए। एंजॉय द सॉन्ग।

0: लुक एट यू, ब्लू लाइट स्क्रीन को इतना घूर रहा है जैसे वो तुझे प्रमोशन दे देगा। और ये कॉफी ल्यूक वार्म, टेस्ट बिल्कुल हार्ट ब्रेक जैसा। प्लीज सर, तू क्यूबिकल के लिए नहीं बनाए, तू बीच के लिए बनाए, तू लाइफ को एंजॉय करने के लिए बनाए।
1: Listen to Hum on Rover every weekday at 8 a.m., 11 a.m., 1 p.m. and 5 p.m. Hum denge ek special code word. You've got 60 minutes to enter it in the Rover app and go in the draw to win a trip to Fiji. So what are you waiting for? Download the Rover app now. Win a trip to Fiji. Only on Hum on Rover. T's and C's apply.
2: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट, squirrel.co.nz।
3: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/where-it-goes पे। तमाकी तुरुकी, All Together Oakland।
4: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी, और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल।
5: कुकिंग का असली फ्लेवर चाहिए? स्विच टू कशिश फूड्स जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्रेशली ग्राउंड इन न्यूजीलैंड, बिना एडेड केमिकल्स, बिना प्रिजर्वेटिव्स एंड विनेगर फ्री, सिर्फ क्लीन नेचुरल टेस्ट, बिल्कुल घर जैसा। जिंजर हो, गार्लिक हो या परफेक्ट कॉम्बो, हर डिश बनेगी फुल ऑफ फ्लेवर। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर, लिव बेटर।
6: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां

0: गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
1: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424।

0: with Ketan.
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम
0: skip या replay.
3: लेटेस्ट खबर पढ़ लेते हैं. न्यूजीलैंड के स्टार ड्राइवर शेन वैन गिस्बर्गन ने एक बार फिर नास्कर में अपना जलवा दिखाया है और वॉटकिंग्स ग्लेन इंटरनेशनल रेस में शानदार कमबैक करते हुए उन्होंने सीजन की एक और बड़ी जीत हासिल की है. ट्रैक हाउस रेसिंग के ड्राइवर शेन वैन गिस्बर्गन ने पोल पोजिशन से स्टार्ट करते हुए 100 लैप्स में से 74 लैप्स लीड किए. एक स्टेज पर पिट स्टॉप के बाद वो टॉप पोजीशन से बहुत ही पीछे रह चले गए थे, लेकिन सिर्फ कुछ लैप्स में ही जबरदस्त स्पीड दिखाते हुए फिर से लीड हासिल कर ली. वैसे ये उनकी नास्कर कप सीरीज में नेटविन जीत है और खास बात ये है कि उनके सारे विन्स रोड या स्ट्रीट कोर्सेज पे पार कर गई है. इसी वजह से अब उन्हें नास्कर का रोड कोर्स एस भी कहा जा रहा है. वैसे रेस के बाद शेन ने यह भी कहा कि कंपटीशन बहुत टफ था और प्रेशर भी काफी था, लेकिन उनकी टीम ने परफेक्ट स्ट्रेटजी बनाई. कीवी मोटरस्पोर्ट्स फैंस के लिए ये एक और बड़ा प्राउड मोमेंट है. शेन वैन गिस्बर्गन दुनिया की सबसे बड़ी रेसिंग स्टेज पर न्यूजीलैंड का नाम जो है उसे रोशन किया है.
0: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

वेल, अगर आपने हम फ्लाई अवे फ्रेंजी का कोड मिस किया है तो डोंट वरी, बिकॉज 5 बजे बाद फिर से आपको वो कोड सुनाई देगा। यस, जैसे कि आप सुबह 8 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, 1 बजे के बाद और 5 बजे के बाद आप तो ये कोड सुन सकते हैं। और जैसे ही सुनेंगे आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा और रो ऐप पे डालने के लिए। रो ऐप पे जैसे सबमिट करेंगे आप ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे और जीत सकते हैं ढेरों इनाम। जी हाँ, रिटर्न एयर टिकट टू ढेरों इनाम नहीं, एक्चुअली एक मेगा इनाम आप जीतेंगे अगर ड्रॉ में शामिल हुए। और ड्रॉ में शामिल होने के बाद अगर आपका नंबर लगता है तो एक मेगा प्राइज आपको मिलेगा, वो है रिटर्न एयर टिकट टू फीजी फॉर अ सनस्ट्रोक एस्केप यू हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ। जी हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन डू अप्लाई, बट कीप लिसनिंग टू अस एज वी विल लेट यू नो द कोड एनी टाइम आफ्टर द गिवन टाइमिंग।

0: वेलकम बैक। वेल चलिए उस सवाल का जवाब पे थोड़ी सी नजर डाल देते हैं जहाँ पे मैंने पूछा था ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बचपन में बहुत ही ज्यादा महंगी लगती थी बट बड़े होके यू फाउंड इट सो चीप। या नेहा कहती है, एज अ किड आई थॉट फेरेरो रोशर वॉज ओनली फॉर मिलियनेयर्स, नाउ इट्स सिटिंग एट डैश डैश डैश ऑन स्पेशल एवरी सेकेंड वीक। थैंक यू यार, ये सही है, मतलब आप यू कैन फाइंड दोज थिंग्स ऑन स्पेशल ऑन ऑलमोस्ट एवरी सुपर मार्केट। उसके बाद अमित कहते हैं, आई यूज टू थिंक टेकिंग द होल फैमिली टू KFC मीन्ट वी वर रिच। दैट इज सो ट्रू। खैर मैं जब छोटा था तब तो था भी नहीं कोई KFC वहाँ पे इंडिया में उस टाइम पे, अब तो गली गली में है। संजना कहती है, दो ओनिंग अ प्रिंटर एट होम वॉज रिच पीपल थिंग। या वो भी सही है, इनफैक्ट मेरे डैड का तो ये था कि जिनके घर में साइकिल हुआ करती थी दोज पीपल यूज टू कंसिडर एज रिच पीपल, ऐसे पापा बताते थे। मेरे टाइम पे तो ये होता था कि किसी के पास अगर गियर वाली साइकिल है वो दैट इज समथिंग लाइक वेरी फैसिनेटिंग। रवि कहते हैं, बॉटल्ड वाटर आई थॉट ओनली रिच पीपल बाय इट। प्रिया कहती है, पिज्जा डिलीवरी फेल्ट लाइक लग्जरी ग्रोइंग अप। जेसन कहते हैं, आई थॉट $20 वॉज अ बिग मनी एज अ किड। मेरे तो खैर मुझे एक रुपया भी मिलता था वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, अरे वाह मुझे एक रुपया मिला और 10 रुपये मिल जाए मेरे को तो मैं सीना तान के मैं घूमता था। अनिशा कहती है, नेम ब्रांड सीरियल, वी वर ऑलवेज ऑन द होम ब्रांड स्टफ। क्या बात है। एंड आखिरी मैसेज पढ़ते हैं विनेश का, गोइंग टू द मूवीज एंड बाइंग स्नैक्स एलीट बिहेवियर। ये भी सही है, मतलब इतना यूजली होता नहीं था फॉर अस, मे बी पापा मम्मी के साथ हार्डली 2 से 3 फिल्में ही देखी है, सो फॉर मी ऑल्सो गोइंग टू द थिएटर टुगेदर विद फैमिली वॉज लाइक रिच थिंग। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? लंच बॉक्स विद केतन, मुझे पसंद है लड़का। हम ड्राइविंग यू होम, द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हां जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहां पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिल्ली से बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिल्ली तो
4: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Bedzaras Manuko and Pokekoi, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from $449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? स्विच टू लीप मोटर C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू। विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटर ग्रीन लेन और बॉटनी। टीज एंड सीज अप्लाई।
5: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
6: I know how to balance my clients' books, but not how to use AI tools to free up my time.
7: When you're a Spark Business customer, you get a network of global and local partners to help with your business. Spark, the best bench in business.
8: Non-stop Bollywood.
9: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
8: हम playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
10: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
8: इसके पीछे
9: हम
8: Tech Talk.
0: वेल टेक टॉक में आपका स्वागत है। अभी आज का जो खास इनोवेशन जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो समथिंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। जी हाँ, साइंस और एग्रीकल्चर की दुनिया में एक नई रिवॉल्यूशन देखने को मिल रही है। एक्सपर्ट्स अब प्लांट्स को यूज करके मेडिसिन, एंजाइम्स और इम्पोर्टेंट केमिकल्स भी बना रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी को प्लांट बेस्ड बायो मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि मेडिसिन और बायो फार्मास्यूटिकल, अरे बाप रे बहुत ही भारी वर्ड है मेरे लिए, बायो फार्मास्यूटिकल, ओह थैंक गॉड होपफुली मैंने सही प्रोनाउंस किया हो, बट यस वो जो प्रोडक्ट है कम खर्च में ज्यादा सेफ तरीके से तैयार किया जा सकता है। साथ ही साइंटिस्ट क्रॉप्स को जेनेटिकली स्ट्रॉन्गर भी बना रहे हैं ताकि वो हीट ड्रॉट और क्लाइमेट चेंज जैसे स्ट्रेस को बेटर हैंडल कर सके। ये इनोवेशन फूड सिक्योरिटी को भी सपोर्ट करेगा और सस्टेनेबल फार्मिंग का उसे बूस्ट भी करेगा। वैसे रिसर्चर्स का मानना है कि फ्यूचर में प्लांट्स के थ्रू विटामिन्स और इको फ्रेंडली बायोकेमिकल्स भी लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किए जा सकते हैं जो ट्रेडिशनली केमिकल फैक्ट्रीज को ग्रीन ऑल्टरनेटिव बना सके। सो यस, सिंपल शब्दों में कहें तो फ्यूचर की फैक्ट्रीज अभी शायद खेतों में भी नजर आने वाली है। वाओ,

0: पास गूंजेगी। हम थ्रोबैक
1: एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। बहुत ही बढ़िया आज का दिन, समय, बातें और आपका साथ। जी हाँ, वैसे बने रहिए बिकॉज सैंडी थोड़ी देर में आपके साथ जुड़ेगी इन द कॉफी ब्रेक और मेरी मुलाकात होगी आपसे कल फिर से सेम टाइम 12 से 3। तब तक के लिए एंजॉय करिए, अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा प्यार दीजिए अपने परिवार को एंड अच्छे से टाइम स्पेंड करिए उनके साथ और मेक श्योर थोड़ा टाइम वक्त निकाल के AI से भी रूबरू होइए बिकॉज अभी AI का जमाना है, हर इंडस्ट्री में AI घुस रही है। सो डोंट बी स्केयर्ड ऑफ दैट, जस्ट ट्राई टू थिंक कि कैसे आप अपने आप को अपस्केल कर सकते हैं विथ योर नॉलेज, विथ योर यू नो वर्कहोलिक टाइम बाय यूजिंग और बाय लर्निंग AI। जी हाँ, मेक इट एज अ फ्रेंड एंड थिंक, ये एक तरह से स्टेप हो सकता है, एक तरह से ब्रिज बन सकता है फॉर योर सक्सेस टू एनी काइंड ऑफ प्रोडक्टिव वर्क। So yes, I'll take a leave and I'll see you guys tomorrow, same time, 12 to 3. Tab tak liye, bye bye.

0: से मेरे उफ।
1: 3:11 हो चुके हैं एंड इवेंट्स के बारे में बातें करते हैं तो आपके सुपर सिटी में एक बहुत ही सुपर इवेंट होने वाला है। वाइब मिक्स आपके लिए ये इवेंट लेके आ रहे हैं, द ग्रैंड मस्ती नाइट। द ग्रैंड मस्ती नाइट जो कि 23 मई को होगा नेटबॉल मेनोरिवा में। सो अगर आप फीजी से हैं तो फीजी में काफ़ी रेडियो अनाउंसर्स हैं जो बड़े फेमस रहे हैं, वो कुछ रेडियो अनाउंसर्स इस इवेंट में आने वाले हैं। इसमें राउडी नमन रहेगा जो कि हम का भी काफ़ी समय तक पार्ट रहे हैं, एंड मोर ओवर इसमें कुछ डांस भी होने वाले हैं। डांसिंग लेजेंड्स जो है फीजी से वो यहाँ पे रहेंगे। कुछ मसाला मिक्स स्किट्स भी रहेंगी स्टेज पे, कॉमेडी डांस मस्ती मैडनेस ऑन स्टेज। एंड डुअल वॉइस सिंगर है एक मनी डिसूजा जो कि बोथ मेल एंड फीमेल की आवाज़ में गाना गाते हैं, ये स्टेज पे रहने वाले हैं। एंड मोंटो मोनिका विल बी ऑन द स्टेज। एंड इसी के साथ साथ वैसे हमारा अपना केतन जो है, केतन कुमावत, वो भी स्टेज पे गाना गाने वाला है। तो ये सब कुछ एक्चुअली में रहने वाला है विद लॉट ऑफ गिव अवेज एज वेल फॉर द सेम डे। तो फ्री पार्किंग है लेकिन टिकट्स जल्दी से मेजर इंडियन आउटलेट से आपको मिल जाएंगी। इस इवेंट की टिकट अगर आपको यहाँ पे जीतनी है तो फिलहाल आपको क्या करना है, आपको ड्राइव कीवर्ड के साथ यहाँ पे लिख के भेजना है अपना नाम। सो ड्राइव स्पेस अपना नाम लिख के भेज डालिए 5599 पर और आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा। आज ड्राइव शो में डबल पास निकाला जाएगा, किसी एक के नाम डबल पास हो जाएगा। सो ड्राइव स्पेस अपना नाम लिख के अभी भेज डालिए 5599 इज द नंबर।
2: कॉफी ब्रेक विद सैंडी,
3: उससे कोई पर्सनल सवाल नहीं पूछते, गुस्सा हो जाती और सब पास कर देते सब।
2: हम 80s के रेट्रो गाने।

0: switch. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
1: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई-वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे। तमाकी तुरुकी, ऑलटुगेदर ओकलैंड।
2: Discover the magic at Go Bananas Chai Ke, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
3: Go Bananas Chai Ke is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
2: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Chai Ke Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-4626-26 today.
3: Available at selected branches. T's and C's apply.
4: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations, 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
2: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है. वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स. आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले. लिमिटेड टाइम ऑफर. टीज एंड सीज अप्लाई. फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स.
5: Jen didn't think she needed a DVS system.
6: Oh, I've got insulation in that.
5: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
6: Ah, yeah.
5: So Jen got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.

0: Skill check.
1: पर ट्रेल्स के बारे में बातें करते हैं तो वैसे एक ट्रेल है जिसकी एंट्री आज सुबह ओपन हुई थी और इसकी एंट्री बहुत ही जल्दी अब बंद भी हो चुकी है. वेल, ग्रेट वॉक्स यहाँ पे जो न्यूजीलैंड में है, इसके लिए क्या होता है कि बुकिंग्स ओपन अप होती है. सो पापारोआ ग्रेट वॉक जो है, ये सुबह इसकी आज बुकिंग ओपन हुई थी. मोर देन 4,000 पीपल इन्होंने क्यू अप किया था अपना स्पॉट यहाँ पे सिक्योर करने के लिए. तो इनका जो स्पॉट है ये सिक्योर हो चुका है. फिलहाल वो बुकिंग जो है ये क्लोज़ हो चुकी है. सो इट इज़ इट वाज द फर्स्ट ऑफ द ग्रेट वॉक एक्चुअली में जो कि बुकिंग के लिए ओपन हुई थी. एंड क्या होता है कि डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेशन क्या करते हैं, इन्होंने एक ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम ओपन अप किया है जो न्यूजीलैंड के ग्रेट वॉक्स है उसके लिए, सो दैट वहाँ पे जो ट्रैफिक है वो मैनेज हो सके, कितने लोग एट अ टाइम जा रहे हैं वो सब चीज़ें मैनेज हो जाए. बिकॉज एक टाइम पे आके समर में स्पेशली पीक डिमांड हो जाता है. सो पहले भी 2023 में 2024 में सीरीज ऑफ क्रैशेज हुए हैं एंड काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी जिसके वजह से उन्होंने ये जो ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम है इसको शुरू किया था. सो DOC हेरिटेज एंड विजिटर के जो डायरेक्टर हैं, इन्होंने बोला कि बुकिंग सिस्टम बहुत ही स्मूथली काम किया है आज सुबह एंड बाकी जो ग्रेट वॉक्स है इसके लिए भी वो सेम बुकिंग सिस्टम जो है ये वो करने वाले हैं. 9:30 बजे एक्चुअली में ओपन अप हुआ था, 10 बजे तक एकदम क्लियर हो गया. मोस्ट डेट्स जो है ये जो बुकिंग के लिए है वो जैन एंड मार्च की डेट्स है, यानी कि अगले साल की जैन एंड मार्च की डेट्स है जब मौसम एकदम सही होता है, समर वाला सीज़न होता है. बट इनका ये कहना है कि अगर इसमें से कोई ग्रेट वॉक आप करना चाहते हैं जिसके लिए बुकिंग यू नो डन हो जाती है तो फिर भी आप चेक करते रहिए, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे बहुत सारी कैंसिलेशंस भी होती है. एंड अगर आप ऑफ पीक टाइम पे करना चाहते हैं तो उसके लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स भी रहते हैं. तो बहुत सारे ग्रेट वॉक्स जो है, हर्ट्स, कैंप साइट्स, इनके लिए जो बुकिंग्स है ये पहले से ओपन अप हो जाती है. तो अगर आप कोई ग्रेट वॉक करना चाहते हैं तो काफ़ी बुकिंग्स जो है ये ओपन अप हो चुकी है फॉर स्टेज फ्रॉम 1st July 2026 टू 30th June 2027. ये जो एक पूरा का पूरा टाइम ड्यूरेशन है, इसके लिए जो डेट्स है जैसे कि पापारोआ ट्रैक की आज डेट थी 12th May. कल मिलफोर्ड ट्रैक जो है इसके लिए बुकिंग्स ओपन अप होने वाली है. एंड देन 14th May को एबल तैस्मैन कोस्ट ट्रैक जो है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसके लिए बुकिंग ओपन होगी. देन फ्राइडे 15th May को रूट बर्न ट्रैक इसके लिए ओपन होगा. देन ट्यूसडे 19th May को कैपलर ट्रैक के लिए बुकिंग्स ओपन अप होने वाली है. वेंसडे 20th May को हीफाई ट्रैक के लिए रहेगी, चूँकि फांगनोई जर्नी वहाँ पे ये है. एंड 21st May को टोंगरीरो नॉर्दर्न सर्किट जो है इसका ट्रैक की जो बुकिंग्स है ये ओपन अप होने वाली है. सो अगर किसी ग्रेट वॉक की बुकिंग आप करना चाहते हैं सो दिस कमिंग डेज जो है इज़ अ गुड टाइम टू गो एंड बुक इट. सो DOC की डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेशन की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं ये बुकिंग्स करने के लिए.
0: Are you ready? Shockbusters.
2: थोड़ा तो हॉल बना दे.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
1: हाँ। अच्छा
0: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
1: मिसेस सिंह।
2: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
3: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 30।

3:34 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं कॉफी ब्रेक. फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं. रिसेंटली आर्टिकल आया है जो बताता है कि अप्रैल मंथ में जो पिछला महीना गया है प्लेनेट की टॉप 50 हॉटेस्ट सिटीज जहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी है, ये 50 हॉटेस्ट सिटीज जो है वो एक सिंगल कंट्री में रही हैं. ये अप्रैल का रिकॉर्ड जो है ये यहाँ पे आया है. एनी आइडिया किस कंट्री की बात कर रही हूँ? ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे 50 हॉटेस्ट सिटीज दुनिया में उस समय पर अप्रैल के मंथ में जो 50 हॉटेस्ट सिटीज थी वो एक ही कंट्री में थी. ये जो रिसेंट आर्टिकल है ये एक्चुअली में अलार्मिंग क्लाइमेट ट्रेंड को एक्चुअली में हाईलाइट करता है. वन डे इन अप्रैल ऑल ऑफ वर्ल्ड्स 50 हॉटेस्ट सिटीज वर लोकेटेड इन इंडिया. सो इंडिया में इस समय पर ये जो मई जून का मंथ होता है बहुत गर्मी पड़ती है. एंड रिमेंबर पिछले साल एक्चुअली में इस टाइम के अराउंड शायद वापस आ गई थी. सो आई वॉज देयर, मई में थी मैं, कुछ हाफ ऑफ मई में मैं वहाँ पे थी. बहुत ही बुरी गर्मी थी एक्चुअली में. मैंने तो बहुत देर बाद एक्चुअली में ऐसी गर्मी देखी थी. सो एक्चुअली में इंटेंस एंड वाइड स्प्रेड हीट वेव रहती है इस टाइम के अराउंड. और 50 सिटीज़ में ऐसी गर्मी पिछले महीने ही ऑलरेडी पड़ चुकी है जहाँ पे टेम्परेचर्स जो थे ये डेंजरस लेवल्स को क्रॉस किए थे इन मैनी नॉर्दर्न एंड सेंट्रल रीजन्स में. सो क्लाइमेट के ऊपर जो अफेक्ट हो रहा है उसका भी है. एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है कि जो हीट वेव्स है ये लॉन्गर होती जा रही है, फ्रीक्वेंट होती जा रही है एंड इन मैनी कंट्रीज एक्चुअली, एंड डेंजरस होती जा रही है पब्लिक के लिए, पब्लिक की हेल्थ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, फार्मिंग के लिए, इवन फॉर द वाटर सप्लाईज एज वेल. बिकॉज एज कम्पेयर टू हीट वेव जो होती है उतने कंपेरिजन में जो बारिश है वो नहीं होती है. सो काफ़ी चीज़ें जो है इन सर्कल वो अफेक्ट करती है. काफ़ी ग्रुप्स है जैसे कि वल्नरेबल ग्रुप्स भी होते हैं जिसमें आउटडोर वर्कर्स, चिल्ड्रन, एल्डरली पीपल, दे स्पेशली बिकम एट द रिस्क जब ऐसी हीट वेव होती है तो. सो एक्सट्रीम हीट इज़ no longer a rare event but part of changing climate pattern. So ये हम भी यहाँ पर notice करते हैं कि गर्मी जो है जब पड़ती है तो बहुत ही कड़ाके की गर्मी जो है ये पड़ती है. काफ़ी hottest cities वहाँ पर रही है जिसमें 46.2 degrees तक का जो temperature है ये गया है. And last year तो मैंने सुना था 50s तक temperature काफ़ी जगह पर गया था. And इन cities में नागपुर आई है इंडिया में, झांसी, नोएडा, फतेहपुर, कानपुर एंड देन अमरावती, बहुत सारी सिटीज़ है. गुड़गांव का नाम भी इसमें आता है, आगरा का नाम आया है, कोटा का नाम आया है, फिरोज़ाबाद का नाम आया है. सो बहुत सारी सिटीज़ है. सो ये सब का जो डाटा है ये 27 अप्रैल का डाटा है टू बी प्रिसाइज. 27 अप्रैल वॉज अ डेट. एवरेज पीक टेम्परेचर अक्रॉस दिस सिटीज़ वॉज अराउंड 44.7 डिग्रीज. यूपी में, उत्तर प्रदेश में मोस्ट सिटीज़ थी ऑन द लिस्ट, मतलब ये जो 50 की लिस्ट है उसमें से 21 सिटीज़ जो थी ये उत्तर प्रदेश में थी. अदर हाईली अफेक्टेड एरियाज़ जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये सब थे. नॉट नॉर्मल है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस वजह से जो हीट वेव है ये अराउंड द वर्ल्ड एवरी ईयर एक्चुअली में बढ़ती ही जा रही है. एनीवे नाउ बैक टू सुपर सिटी. यहाँ पे ऑकलैंड में, न्यूजीलैंड में और क्या क्या हो रहा है इसके बारे में भी बात करेंगे बस थोड़ी देर में.

342 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. वैसे वन न्यूजीलैंडर एंड फाइव ऑस्ट्रेलियंस इन्हें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक गवर्नमेंट चार्टर फ्लाइट में लेके जाया जा रहा है फॉर द क्वारंटीन. हंटा वायरस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जिस क्रूज में ये लोग थे उसमें ऑफकोर्स ये न्यूजीलैंडर थे वन ऑफ. सो ये क्वारंटीन वहाँ पे करेंगे पर्थ के पास. एक्चुअली में ये जो फैसिलिटी है इसे पहले COVID-19 पैंडमिक के टाइम पे बनाया गया था एज अ क्वारंटीन सेंटर. तो उसी फैसिलिटी में इन लोगों को रखा जाएगा. सो ये जो क्वारंटीन है एक्सपेक्टेड है कि एटलीस्ट 3 वीक्स तक चलेगी, बट लंबी भी हो सकती है बिकॉज जो हंटा वायरस है बेसिकली इसका जो पीरियड टाइम है बाहर आने का वो 42 डेज का रहता है. सो मे बी इसके कारण वो लॉन्गर भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन फ्यू सिम्टम्स एज वेल. फिलहाल वैसे नन ऑफ द पैसेंजर्स इज करंटली शोइंग द सिम्टम. हेल्थ ऑफिशियल्स का कहना है कि जो मूव है ये एज अ प्रिकॉशन लिया जा रहा है सो दैट ये लोग जब वापस आए तो पब्लिक को इसके ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, पब्लिक को बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए. पैसेंजर्स जो है दे विल अंडरगो टेस्टिंग जहाँ पे जो सैम्पल्स है ये एनालाइज किया जाएगा एवरी डे इन मेलबर्न. सो 3 पीपल अब्रॉड द क्रूज हैव डाइड सो फार फ्रॉम दिस वायरस एंड सेवरल अदर्स आर इल एज वेल. अथॉरिटीज़ जो है ये स्ट्रेस कर रही है ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड है इस वायरस का जो कि रेयर है, इसलिए COVID-19 के साथ इसका कोई भी हम कंपैरिजन नहीं कर सकते बिकॉज वो मोर ऑफ एयरबॉर्न था, ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड होता है. सो यहाँ वन ऑफ द न्यूजीलैंडर वॉज इन द क्रूज जो कि अभी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में फॉर 3 वीक्स या फिर मैक्सिमम 42 डेज के लिए एक्चुअली में क्वारंटीन करने वाले हैं.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 15.5 डिग्री है और आज का ओवरनाइट 10 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है और आज का मौसम बस थोड़ा सा रेनी रहा कल लेकिन ऑलमोस्ट फाइन सनी ब्राइट डे आपको दिखाई देगा.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: हमेशा साथ देने वाले दोस्त.
3: Brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
0: Super Se Ooper. Brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. Drive Show with Sandy and Rusbe.
4: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
1: चार बज के दो मिनट हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. ड्राइव शो आपके लिए शुरू हो चुका है. यू हमिंग अलोंग विद सैंडी, बस रुस्बे मेरा साथ थोड़ी देर में शामिल हो जाएगा. कैसे हैं आप और आपका डे आज का कैसा जा रहा है? 12th May it is. अगर आज आपका बर्थडे है, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. अगर आज आपकी एनिवर्सरी है, अ वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी टू यू. शाउट आउट्स के लिए वैसे आप यहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं. 5599 इज़ द नंबर. वैसे इस आवर में आपके लिए कुछ और कॉम्पिटिशन्स भी, जो कि ग्रैंड मस्ती नाइट, इसके लिए अगर आपको डबल पास जीतना है, स्टे ट्यून. ये कॉम्पिटिशन भी आपके लिए रहने वाला है. आपके आसपास क्या हो रहा है ये न्यूज़ भी शेयर करेंगे. कुछ टॉपिक्स भी लेके आएंगे जिसके ऊपर आपके साथ हम चर्चा यहाँ पे करेंगे. तो ये सब कुछ आपके लिए इसी आवर में रहने वाला है. एंड अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ तो आप भी शेयर कर सकते हैं. कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको लगता है कि यार इस चीज़ के बारे में आज बात होनी चाहिए, यू नो हाई टाइम ये चीज़, ये टॉपिक तो डिस्कस होना ही चाहिए, तो मैसेज कीजिए 5599 पर या फिर कॉल कीजिए 0800 हम पर. सो ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको लगता है कि यहाँ पर कवर होना चाहिए. और आज 6 बजे के बाद ट्रेंड मेकर्स आपके लिए हम लेके आते हैं. ट्रेंड मेकर्स में कोई ना कोई थीम या किसी आर्टिस्ट को ट्रिब्यूट हम देते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. और आज एक एक्चुअली में थीम आपके लिए लेके आए हैं. 6 से 7 के बीच में आज आप एक ऐसे गाने सुनने वाले हैं, कुछ ऐसे गाने सुनने वाले हैं जो चाय और कॉफ़ी सॉन्ग्स हैं. यू नो ऐसे गाने नहीं जो चाय पीते पीते आप सुनते हैं, कॉफ़ी पीते पीते आप सुनते हैं, लेकिन ऐसे गाने जिसमें चाय का जिक्र हो रहा है या फिर जिसमें कॉफ़ी का जिक्र हो रहा है. तो चाय और कॉफ़ी के गाने आज हम प्ले करने वाले हैं बिटवीन 6 to 7 PM. नो बॉलीवुड में अगर देखा जाए तो बहुत ही लिमिटेड सॉन्ग्स हैं जो कि चाय और कॉफ़ी इन वर्ड्स को लेके बने हैं. सो अगर आपके जहन में कोई गाना है जिसमें चाय शब्द आता है या फिर जिसमें कॉफ़ी शब्द आता है तो मैसेज कीजिए 5599 पर. आपका गाना हम कोशिश करेंगे हमारी प्लेलिस्ट में ऐड करने के लिए. हो सकता है कोई ऐसा गाना हो जो रह जाए हमसे, जो हमारे दिमाग में नहीं आए एंड जो हमारे गूगल के दिमाग में नहीं आए वो आपके दिमाग में हो सकता है. 5599 पर मैसेज करके बताइएगा चाय या कॉफ़ी के ऊपर अगर आपको कोई गाना पता है. 6 से 7 के बीच में ये प्लेलिस्ट आज आप सुनने वाले हैं.

0: बज के 12 मिनट हो चुके हैं एंड 9354 जिनका फोन नंबर इस डिजिट से एंड होता है, थैंक यू सो मच. काफ़ी लोगों ने लिस्ट भेजी है. मैंने आपसे पूछा था कि आज चाय के ऊपर जो गाने आपको पता है जिसमें चाय शब्द आता है या फिर जिसमें कॉफ़ी शब्द आता है, ऐसे गाने बताइए जो कि आप 6 से 7 के बीच में सुनने वाले हैं. वेल, जो लिस्ट मेरे पास आई थी ऑलमोस्ट सारे गाने इंक्लूड किए ही थे एक्सेप्ट वन सॉन्ग. ये गाने के बारे में एक्चुअली मैं भूल ही गई थी. सो थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग. लव के लिए कुछ भी करेगा इस मूवी का ये जो एक गाना है, मतलब जब तक ये गाना सुना नहीं ऐसा हिट नहीं किया कि इसमें चाय आता है शब्द. इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग एक्चुअली में. तो ये गानों की लिस्ट जो है ये बन चुकी है 6 से 7 के बीच में. एक्चुअली में आप सुनने वाले हैं चाय एंड कॉफ़ी वाले गाने. फिलहाल वैसे पार्टिसिपेट करने का वक्त है इस कंपटीशन में. ग्रैंड मस्ती नाइट होने वाली है एंड ग्रैंड मस्ती नाइट में होने क्या वाला है, ढेर सारा एंटरटेनमेंट है आपके लिए. सो ग्रैंड मस्ती नाइट में कुछ डांसिंग लेजेंड जो कि फीजी से आने वाले हैं ये यहाँ पे परफॉर्म भी करेंगे. कुछ मसाला मिक्स स्किट्स रहने वाली है, स्टेज कॉमेडी जो डांस है ये सब कुछ रहेगा. ड्यूअल वॉइस सिंगर हैं मनी डिसूजा एंड देन अमेजिंग मोंटो मोनिका, ये भी परफॉर्म करेंगे. एंड इसी के साथ साथ बहुत अच्छे डीजेस रहने वाले हैं. हमारा अपना केतन कुमावत भी वैसे वहाँ पे रहने वाला है जो कि स्टेज पे परफॉर्म करेगा एंड बहुत सारे गिवअवेज भी वहाँ पे रहेंगे. सो नेटपॉल मैनोरिवा में ये इवेंट होने वाला है 23 मई को. इसके लिए टिकट्स आप मेजर इंडियन आउटलेट से खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पे फिलहाल टिकट जीतनी है तो आपको करना क्या है, आपको 5599 पर मैसेज करना है ड्राइव कीवर्ड के साथ. बस अपना नाम लिख के भेजना है, ड्राइव स्पेस योर नेम एंड आपका नाम जो है इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा.
1: आपका प्रोफाइल देखा, आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं.

0: At Bunnings, you can keep the cold air out for less with an Adored Fabric Draft Stopper, just $10.95. It doesn't cost a lot to winterproof your home. Shop online or in-store. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
1: Flight Centre's Big Red Sale has landed with up to 50% off stays, cruises and tours, plus sky-high savings on flights, holidays and more. Book online or in-store today. End 2nd June. T's and C's apply. Flight Centre, your centre for travel.
2: Arey Babita, thank you so much for giving me Guru's number, yaar.
3: Kyun? Kya hua?
2: Mujhe urgent kaam se Fiji jana tha. $20,000 chahiye the. Bank gayi, to itne hi documents maange ki bas pooch hoi mat. Ek hafta ho gaya. No response. Phir tumne Guru ka number diya aur bas agle din paise mere account mein. Guru to ho ja shuru wala kaam hai.
4: Guru Kandola of Logic Finance, a household name in finance and insurance industry. Call 0800 Logic G. That's 0800-564-424.
5: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है. वे सिटी GWM हैवल. हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स. आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले. लिमिटेड टाइम ऑफर. टीज एंड सीज अप्लाई. फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स.
6: Oakland, तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए. Once upon a time with the legendary Rahat Fateh Ali Khan live in concert along with Shah Zaman Ali Khan. Saturday 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz. For sponsorships, call Karam Hundal on 027-514-6477.
7: Popeyes is turning two, but you get the presents. Their limited-time birthday box is packed with two drumsticks, six nuggets, and regular Cajun fries for just $11.90. Celebrate 2 years of world-famous Louisiana fried chicken at Popeyes.
8: Love that chicken from Popeyes.
9: The Drive Show with Sandy and Rusby.
10: Hamesha saath dene wale dost.
11: Brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
9: Super Se Ooper. Brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
12: Masti karenge, mauj katenge, garda paad denge.
13: 4:17, you are listening to The Drive Show with Sandy and Rizbe. Aaj Tuesday, 12 May.
14: A very good afternoon, Rizbe.
13: Good afternoon, Sandy. Kya hal chal aapke?
14: Badhiya, tum kaise ho?
13: Main bas yaar. कट रही है जिंदगी.
14: मुझे लगा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा, तुम बोल रहे हो
13: बस जी रहा हूँ.
14: ऐसा है. बाहर का मौसम कैसा है?
13: बाहर का मौसम बहुत ही बढ़िया है.
14: मतलब बारिश हो रही है, फूल के नहीं हो रही है.
13: बारिश नहीं हो रही बिल्कुल भी.
14: ओ अच्छा,
13: मतलब सिटी, हो गया सिटी में तो नहीं हो रही है बिल्कुल भी.
14: ओके
13: ठीक है. बट पता नहीं और कहीं पे अगर हो रही होगी तो आप बताइए हमें, अगर कहीं बारिश हो रही है तो.
14: हाँ, आपके इलाके में अगर बारिश हो रही है तो यहाँ पे बताइए आज. सो आज मैंने सवाल पूछा था कि कोई चाय या कॉफ़ी वाले गाने हैं तो हमें लिख के भेजिए. काफ़ी अच्छी लिस्ट आई है हमारे पास और ये लिस्ट हम डालने वाले हैं 6 से 7 के बीच में. तुम्हें कितने गाने पता है?
13: नहीं, गाने तो ठीक है. मैं बस ऐसे आज थोड़ा डीप नोट पे कुछ सोच रहा था. बट डू यू थिंक मैच्योरिटी इज अबाउट बींग एबल टू डील विद ट्रॉमाज इन अ फंक्शनल वे?
14: Maturity is about dealing the trauma in a very functional way. I don't think so.
13: You don't think so?
14: No. Okay. It's not maturity. It's like...
13: No, not maturity, but like living life, basically. Like as you get older. It's about living... It is about dealing with traumas in a functional way. देखो कितना ये बहुत सोचो इसके बारे में.
14: तुम ये कह रहे हो बेसिकली, ताकि मैं सही समझ रही हूँ, कि जैसे जैसे हमारे लाइफ के फेजेस बढ़ते जाते हैं तो कोई ट्रॉमा अगर लाइफ में होता है तो उनको बहुत ही फंक्शनल वे से डील करते हैं.
13: नहीं नहीं, इट इज ऑल अबाउट लिविंग. मतलब जैसे आप जिंदगी जी रहे हो, आपको एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे ट्रॉमाज आपके सामने आते रहेंगे. मतलब नए ट्रॉमाज जो हम यूजुअली लाइक एट द एज ऑफ लेट्स से इफ यू आर इन 20

0: 30s or teens.
1: तब realize नहीं होता
0: है. तभी हमें ऐसे कुछ लगता नहीं है.
1: After 30s you start realizing.
0: Suddenly तुम्हें ऐसे लगता है ना कि भाई ये क्या हो रहा है भाई ये भी आ रहा है ये भी हो रहा है.
1: It's a phase and मेरी actually में इसके बारे में किसी से बात हो रही थी पहले and interestingly क्या होता है ना कि हमारे parents भी जब उस age में थे तो वो भी शायद वो सारी चीजें face कर रहे थे. एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है. इसमें करियर को लेके आता है, पर्सनल लाइफ को लेके आता है, किसी का चले जाना दुनिया से,
0: फैमिली
1: किसी का
0: को
1: हाँ फैमिली को लेके, किसी का ठीक नहीं होना, वो भी चीज़ें देख रहे थे. लेकिन हम बहुत छोटे थे उन चीज़ों को समझने के लिए एंड मे बी हम तक वो चीज़ें आती भी रही थी. वेरी केयरफ्री अबाउट ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ.
0: अबाउट बीइंग अडल्टिंग, लाइक अडल्टिंग, यू स्टार्ट सीइंग ऑल दीस थिंग्स
1: 100%. अडल्टिंग में क्या होता है कि हमारे आसपास हमारे सर्कल को लेके, हमारी फैमिली को लेके बहुत सारी चीज़ें होती है एंड जो आपने कभी सोची नहीं होती कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में भी होगी एक दिन. वो सब कुछ होता है. आई हैव एक्सपीरियंस माई सेल्फ इन लास्ट 2 years बहुत कुछ. तो वो बाद में आपको जब उस फेज में होते हो आपको समझ में आता है एंड अनजाने कोई ताकत मिलती है आपको. आई थिंक इट्स अ पेरेंट्स वॉचिंग या कुछ भी, एनी वन वॉचिंग, जिसको भी आप मानते हो, वो आपको ताकत देती है चीज़ उस चीज़ को डील करने के लिए.
0: एंड यू कैन गेट थ्रू इट,
1: यू कैन गेट थ्रू इट. एंड आई थिंक वो आपको अपनी लाइफ में सिखाते भी है थ्रू एग्जांपल्स हाउ टू डील विद इट
0: एंड हाउ टू बी फंक्शनल इन ऑल दिस.
1: हाउ टू बी फंक्शनल इन ऑल दिस, एग्जैक्टली. ऐसा नहीं वो होती है चीज़ें, बट यू स्टार्ट being functional because life goes on
0: exactly,
1: it never stops.
0: Yeah, that was our learning for the day today.
1: Yeah, life goes on in 3 words. Hollywood's most wanted, gundi khad jao ya seedha andar aao main lau apna A game, brought to you by Indelible Homes, build your dreams.

0: अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज, और ये बहुत ही प्यारा सा गाना तू ही दिसदा फ्रॉम भूत बंगला.
1: या फ्रॉम भूत बंगला, नॉट कॉकटेल टू. सो आज अर्ली मॉर्निंग वेस्ट टॉकलर में एक किस्सा भी हुआ था रूस में.
0: किस्सा हम सुनेंगे, बताइए सैंडी.
1: सो एक ड्राइवर जिसको पुलिस ने पकड़ा, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ये बंदा मोटरवे पे जा रहा था, लेकिन उससे पहले इसके पीछे पड़े हुए थे. ये बंदा रुका एक जगह पे, उसने सिग्नल किया कि वो रुक गया है, एंड जैसे पुलिस दिख ली उसको पकड़ने के लिए ये भाग गया.
0: ओह, मस्त आइडिया लगा इसने. ये जो वीडियो देखते हैं हम लोग ना काफी बार,
1: वही किया इसने.
0: मैसी में हुआ ये, 2:20 AM. यार मेरे को ना एक्चुअली में बहुत दिक्कत होती है ये वेस्ट ऑकलैंड में, एटलीस्ट ये हेलीकॉप्टर बहुत घूमता है यार ऊपर.
1: एक तो वो कुछ कंस्ट्रक्शन जहाँ पे चल रही है, समथिंग सम वर्क इज गोइंग ऑन, वहाँ पे भी रहता है.
0: दिन में होता है वो, रात को नहीं घूमता है ये, तो रात को ईगल घूमता है.
1: रात को ईगल,
0: ईगल हेलीकॉप्टर पुलिस का
1: जैसे, इसके इसको भी ईगल ही पकड़ा है ना.
0: हाँ बहुत घूमता है लेकिन ये, आपने नोटिस किया है क्या?
1: मैंने भी नोटिस किया, मुझे लगा कि कुछ ऐसा ड्रिल वगैरह कुछ होगा, समथिंग लाइक
0: रोज रात को ड्रिल कर रहे लोग.
1: या
0: भाई यहाँ पे पेट्रोल नहीं है लोगों के पास यार, कम करो ड्रिल.
1: या वेस्ट चॉकलेट में मैंने ये काफी नोटिस किया है.
0: मुझे लगता है कि थोड़ा अभी वो हो जाना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, और ड्रोन उड़ाने चाहिए रादर देन हेलीकॉप्टर. इट विल बी इकोनॉमिकल
1: पकड़ने के लिए.
0: आपको पता है मेरे को किसी ने बोला, जो रिसेंटली चाइना गए थे, उन्होंने बोला कि चाइना में यू डोंट बिलीव, लेकिन आप जैसे उबर ईट्स से कुछ ऑर्डर करते हो ना, तो वो ड्रोन आके डिलीवर करता है.
1: ओह वाओ,
0: दैट्स सो क्रेजी ना.
1: इट इज क्रेजी. या मैंने एक्चुअली में एक वीडियो देखी है, इस बंदे ने ड्रोन तो नहीं यूज किया, लेकिन ड्रोन तुम ले लो सड़क पे चल रहा है बेसिकली, वैसा वाला कुछ यूज किया उसने. ड्रोन तो उड़ता है ना, तो जो सड़क पे चलता है ड्रोन टाइप ही है, तो उस पर उसकी आवाज भी जाती है. तो वो एक शॉप, तो वो कैमरा के साथ उसको मैनेज कर रहा है, एंड वो चलता चलता एक शॉप के पास जाता है, तो वहां पे ऑर्डर देता है वो कि मुझे ये चाहिए यहाँ से, और वो शॉपकीपर वाले हंसना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उसके बास्केट में वो ऑर्डर रखते हैं, एंड देन वो वापस आ जाता है. इट्स लाइक अ ड्रोन, मतलब उसमें पैसा निकालते हैं, उसमें पैसे मिलते हैं उसको. ज्यादा दूर का रिस्क नहीं ले रहा है वो, पास. अच्छा, का रिस्क ले रहा है. बट इंडिया की वीडियो है ये,
0: इंडिया की वीडियो है,
1: इंडिया की वीडियो है.
0: नाइस,
1: वेरी इंटरेस्टिंग. सो चलने वाला ड्रोन के साथ वो बंदा काफी एक्सपेरिमेंट करता है.
0: आजकल काफी अलग अलग चीजों में लोग अभी एक्सपेरिमेंट करने लग गए. बट या इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग यार टू सी वेयर द फ्यूचर लाइज. ये देखो अभी एक प्रशांत का मैसेज आया, फ्यू मोर कंट्रीज हैव ड्रोन उबर सर्विस. फ्यू मोर कंट्रीज है जिनके पास है ये ड्रोन वाली उबर सर्विस.
1: नाइस
0: नाइस. वेल एनीवे, देखते हैं न्यूजीलैंड में ये सब कब पहुंचने वाला है.
1: नॉट इन विंटर.

0: The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: Hamesha saath dene wale dost.
2: Brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
0: Throwback.
3: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. आज थोड़ा तूफानी करने का कुछ मन कर रहा है तो तूफानी करे क्या सैंडी?
4: या तूफानी करते हैं.
3: As long as the ACD approves.
4: इसमें कुछ खास होगा नहीं है ये. So basically क्या है guys कि चांद मेरा दिल ये एक मूवी आने वाली है जिसमें अनन्या पांडेयन लक्ष्य है. So इन दोनों
3: लक्ष्य वो है जिसको बैड्स ऑफ बॉलीवुड में आपने देखा था
4: हीरो के रोल में.
3: फिर वो एक और मूवी थी राघव के साथ उसकी मूवी.
4: यस
3: बहुत क्रेजी मूवी थी वो वाली तो किल
4: किल किल, किल. मूवी का नाम ही किल
3: किल था ना.
4: या
3: अरे बहुत क्रेजी वो बहुत बढ़िया मूवी थी. सो ऑल इन ऑल इट्स लक्ष्य ने बहुत बढ़िया काम किया है. अनन्या पांडे ने भी बहुत बढ़िया काम किया है. उसकी कुछ मूवीज में मेरे को उसकी एक्टिंग बहुत फैबुलस लगती है.
4: मुझे भी अनन्या पांडे वैसे भी एज अ पर्सन भी अच्छी लगती है, उसकी मूवीज भी अच्छी लगती है. सो इन दोनों की एक्चुअली में मूवी आने वाली है. इंटेंस लव स्टोरी बताया जा रहा है इस मूवी के बारे में.
3: इन सिनेमास 22nd में बस 10 दिन प्रमोट कर रही है मूवी को.
4: अभी तुमने नोटिस किया है प्रमोशन का टाइम बहुत कम हो चुका है हर एक मूवी का,
3: क्योंकि वो जितना ज्यादा प्रमोशन कर रहे हैं उतना लोगों को पता चल जाता है कि हग्गू मूवी है. So they are now going anti-promotion kind of
4: anti-promotion हो चुका है. So ये जो मूवी है इसका ट्रेलर अभी हम प्ले करने वाले हैं. अगर आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा है तो यहाँ पे आप सुन सकते हैं.
3: हमें एक्चुअली में पता नहीं है कि ये ट्रेलर अप्रोप्रिएट रेडियो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, बट वी आर खतरों के खिलाड़ी.
4: So let's do it.
3: So we'll try and play it. Please माफ कर दीजिए हमें अगर आप कुछ ऐसे शब्द सुने जो
4: क्या कहते हैं अभद्र शब्द अगर आप सुनते हैं ऐसा कुछ बोलते हैं ना.
3: यस
5: सॉरी चांदी सॉरी. सुन मेरी बात सुन चांद मेरी बात सुन.
3: फुल मारा मारी चल रही है. मेरे को लग रहा है इसने चीटिंग वीटिंग की है.
5: मेरी लग रही है चांदी. सॉरी यार प्लीज सुन गलती हो गई यार प्लीज ओपन द डोर यार प्लीज चांदी सुन दरवाजा खोल यार.
3: धर्मा प्रोडक्शन
6: रेगुलर है यार वो इसलिए पसंद है मुझे.
4: गाने अच्छे लग रहे हैं.
3: डॉक्टर का वो कोट पहन के इंजीनियरिंग वाला काम कर रहे ऐसा लग रहा है.
5: तेरे इतने बड़े फ्यूचर में मेरे लिए कोई जगह है भी या नहीं? तू रह लेगी मेरे बिना? पर मैं नहीं रह पाऊंगा यार. ऐसा फ्यूचर जिसमें तू ना हो नहीं चाहिए मुझे.
3: बोल बोल बच्चन.
4: रोमांटिक कहते हैं इसको.
5: चांदनी है
6: ब्लू चांदनी. और यहाँ तो स्ट्रेस धुआं भी नहीं हो सकता.
5: किसी का गला खराब हो रहा था मेरी वजह से तो पूरा ही ठीक कर देते हैं.
6: मतलब
5: हमेशा के लिए.
6: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई.
5: लेजेंडरी लव स्टोरीज की तो एंडिंग ट्रेजिक होती है.
3: फुल मारा मारी भाई.
6: मेरा भाई नहीं होता ना तो शायद मैं भी तुझे माफ नहीं करती.
3: ये एक्टर बहुत बढ़िया लेकिन ना
4: लक्ष्य रहा या
7: क्या करूं मुझको
4: चिल्लाना थोड़ा ज्यादा हो गया है.
3: हाँ हाँ बट ठीक है यार गाने अच्छे हैं.
5: गलती की उसके लिए माफी मांग चुका हूँ मैं. आज भी मांग रहा हूँ और मांगता रहूंगा.
6: और कितनी गलतियाँ करोगे आरव?
8: मौका देना चाहती है क्योंकि तू अब भी उससे प्यार करती है.
6: हाँ लेकिन इज्जत प्यार से बड़ी होती है.
3: इज्जत का इज्जत पे बात आ गई भाई.
4: रिस्पेक्ट वर्सेस लव लग रहा है.

0: एक ही प्रॉब्लम लग रही है इसमें. बहुत ही डीप.
1: सच में चांद है यार, नूर भी,
0: दाग भी,
1: गुरूर भी और दूर भी.
0: ओहो, और दाग भी.
2: So intense love story. You know, मेरे को ये फील दे रही है जैसे वो मूवी का ट्रेलर आया था तेरे इश्क में.
0: मुझे लग रहा है इस मूवी को देखने के बाद जेंजी का बहुत बुरा हाल होने वाला है, वो बहुत रोने वाले.
2: जैसे 11 के बाद रोए थे,
0: 11 के बाद रोए थे ना सलाइन वाले. मुझे लग रहा है ये आई थिंक ये दौर है ऐसे ट्रेजिक मूवीज और ये सब का. मुझे
2: वापस आ चुका है ये दौर. वंस अपॉन अ टाइम ये दौर था, अभी आई थिंक इट्स बैक.
0: बिकॉज वो रोमांटिक रोमकॉम्स वो सब कम हो गए, अभी वो आती नहीं है ना,
2: चलते नहीं है.
0: लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग रोमकॉम्स की अगर बात करें तो कितनी बढ़िया, लाइक हम तुम वाज अ वेरी नाइस रोमकॉम. इमोशनल भी थी वो, बट इट वाज अ
2: नाइस
0: रोमकॉम मूवी. और कौन सी ऐसी रोमकॉम मूवीज है?
2: सैफ अली खान की फ्यू मूवीज जो की रोमांटिक रोल में चली है, क्योंकि सैफ अली खान जब से वो ओमकारा के बाद उनका जो इमेज चेंज हुआ है, लाइक डिफरेंट सैफ अली खान, वो लोगों ने ज्यादा पसंद किया है.
0: हाँ, लेकिन मेरे को सैफ अली खान की तारा रमपम, सलाम नमस्ते तारा रमपम, हम तुम सैफ अली खान का मेरे को ये सारे बहुत सही लगते थे मूवी.
2: एक्चुअली मैं गूफी रोल में रहा है वो,
0: गूफी रोल बहुत सही करता है वो. दिल चाहता है क्या था उसका, तो गूफी रोल.
2: कहो ना प्यार है,
0: कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है नहीं यार, कल होना हो,
2: सॉरी कल होना हो. या एनीवे, आपको सैफ अली खान का कौन सा रोल बहुत अच्छा लगता है, ऐसा गूफी वाला या फिर आफ्टर ओमकारा जो उनकी ये जो इमेज है, कभी इंस्पेक्टर की, कभी वो सारी क्रिमिनल वाली, ऐसे वाले रोल आपको पसंद है?
0: एंड टॉकिंग अबाउट कल होना हो, दिस इज अ सॉन्ग फ्रॉम कल होना हो.

0: May month is NZ Music Month. Ye sirf music nahi, ye hai emotion, passion aur thoda sa desi swag. Presenting Back Your Backyard Beats, jahan har gali, har corner se nikalta hai ek naya superstar. Aaj ka local artist, kal ka global sensation. To kyun na aaj se hi unka saath de? Tune in karo aur apne Backyard Beats ko do full support. Back Your Backyard Beats, brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today and Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love.
1: Hum, accurate traffic.
2: Trust the experts at Alloy Wheel Repair.
3: Partly cloudy around Auckland for the evening, down to 11 degrees tonight. The southernmost way looking busy in patches at the moment. Green Lane out to Papakura, 50 minutes to get to Manukau from the city. And on the northern, a similar time up to Silverdale. It's a bit heavy getting out of Albany. The northwestern has traffic all the way to Tauratu, 35 minutes to Massey, and a similar time to the airport on the southwestern.
2: Curbed your wheel? Restore it to factory finish today. Search Alloy Wheel Repair.
4: Whatever your morning looks like, own it with Up and Go Liquid Breakfast. Braving the bus or carving away, battling rush hour or feeling the rush of your favourite trail. Fueled with the protein, fibre and vitamins you need to get up and go.
5: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
6: हाँ, अच्छा?
5: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस, साड़ा कुछ नहीं।
6: मिसेस सिंह।
7: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
8: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
9: For KiwiSaver portfolios, one approach won't suit everyone. With the Invest Now KiwiSaver scheme, you can choose funds from a range of different investment managers. You can build a portfolio that suits you across different managers, styles, and markets without being locked into just one approach. Of course, all investments carry risk, and returns can go up or down. The issuer and manager of the Invest Now KiwiSaver scheme is Fundrock NZ Limited. To learn more and read the product disclosure statement, visit investnow.co.nz.
10: South Auckland Motors' biggest sale ever is on now. Save thousands on new, demo and used cars with big deals, big choices and big savings. On now but ends Sunday at South Auckland Motors, Manukau, Botany and Pukekohe.
0: Hum, time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
11: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 5. The government insists it's not letting businesses off the hook from meeting climate targets. It's changing the law so firms can't be sued for climate change damage from greenhouse gas emissions. Justice Minister Paul Goldsmith says there are still obligations under the emissions trading scheme.
12: This change simply maintains the coherence of the regulatory system and to deliver consistent obligation for greenhouse gas emitters.
11: The Police Association isn't satisfied with the latest pay offer, saying it's effectively a 0.6% rise. The proposal was in response to the union's recently launched bargaining campaign. President Steve Watt says the dangers that officers face are being overlooked.
13: And it's really a key element of policing, and we need people to understand that, recognise it, and repay that risk.
11: Police are issuing warnings over dating apps after two serious assaults in Invercargill. In both incidents, the victims were lured to the Queen's Park area late at night. One person is in critical care and the other has serious injuries. MediaWorks News understands they were set up through Grindr. To rugby with Shift 4, the All Blacks management has been inviting sporting legends to help in deciding on a captain. Coach Dave Rennie has sought a range of opinion, mainly from rugby, although NBA star Stephen Adams has been consulted on leadership. And speaking of basketball, the NBA Conference Semis, Game 4 in the best of seven series, the Lakers just ahead of the Thunder in the final quarter. The Cavaliers-Pistons series is locked at 2-2.
1: Sports News.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Draw Skill. The beat of Bollywood.
14: World's best, hamari koi brands nahi hai.
0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
15: आज बस थोड़ी बारिश की संभावना थी कुछ कुछ जगहों पे, लेकिन ओवरऑल दिस वीक इज क्वाइट ब्राइट, ब्यूटीफुल, सनी एंड कोल्ड एज वेल, क्योंकि इट्स गोइंग टू गो एज लो एज 7 डिग्रीज ड्यूरिंग द वीक. आज का टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा, 10 डिग्रीज का लो रहेगा आज, फील्स लाइक 15 राइट नाउ, एंड अभी 5:26 को सनसेट होगा.
0: ड्राइव शो विद सैंडी एंड रिस्पी.
16: हमेशा साथ देने वाले दोस्त.
17: Brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe with Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449 and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
18: Power Drive at 5.
19: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
20: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
15: 5:03. Good evening. You are listening to The Drive Show with Sandy and Rizbe. Hi, Sandy.
21: A very very good evening, Rusbe. And आज हम character guess ये game खेलने वाले हैं.
15: जी character.
21: थोड़े rules समझा दो सबसे पहले.
15: Character guess में देखो अभी we are evolving. This new segment अभी नए नए हमने शुरू किए हैं. तो पहले तो आपको सुनाते हैं character guess है क्या.
19: Character guess.
15: Well, इसमें तो सिर्फ कैरेक्टर कैसे पता चला आपको, लेकिन एक ब्यूटीफुल आवाज में जब आप सुनोगे तो आपके रजिस्टर होगा ना कि हम क्या खेल रहे हैं, इसलिए हम ये सुनाते हैं आपको. मेक सेंस राइट. अब मैं बोलूं, सैंडी बोले और ये बोले, अलग ही बात है ना.
21: अलग ही बात है. तो अभी बताओ सबसे पहले तो रूल बताओ.
15: रूल चेंज कर दिया मैंने अभी. अभी आज ऐसा हो गया, आज सैंडी मेरे अगेंस्ट खेल रही है. वी आर नॉट एज इन वन टीम एंड यू कैन सपोर्ट सैंडी. You can be in Sandy's team.
21: So you it's and me versus I, all. हम दोनों जो है, मतलब हम दोनों listeners और I, हम एक team है और रुज़बे एक team है, अलग team है. So we are playing together to guess a character.
15: Yeah. अभी मैं इस character के बारे में आपको कुछ hints दूंगा. Okay. मैं 5 hints दूंगा इस character के बारे में.
21: Okay.
15: And you have 3 guesses to make.
21: ना जरूरी नहीं है, तीन तो बहुत कम हो गए.
15: यू हैव टू मेक, यू हैव टू मेक 3 गेसेस.
21: आई हैव टू मेक 3 गेसेस.
15: आपको लिसनर्स आपको कॉल करके आपको हिंट दे सकते हैं या आपको मदद कर सकते हैं आपकी.
21: ओके.
15: बट एट द एंड इट विल बी योर कॉल वेदर टू एक्सेप्ट दैट और नॉट.
21: सो गाइस फिर से समझाती हूँ. 5 हिंट रुज़बे देगा इस करेक्टर के बारे में.
15: वो लगातार नहीं दूंगा मैं. मैं आपको देते रहूंगा, आप कभी भी बीच में गेस कर सकते हो.
21: ओके. और मैं 3 गेस में गेस करना है मुझे किस करेक्टर के बारे में ये बात कर रहा है. और आपको मेरी हेल्प करनी है यहाँ पे कॉल करके 0800 00 हम पर. यू हैव टू हेल्प मी और मुझे सजेस्ट करना है कि ये सवाल पूछा जाना चाहिए जिससे हमें पता चलेगा इस करेक्टर के बारे में. राइट
15: जी.
21: ओके. सो यू कैन स्टार्ट.
15: सो फर्स्ट हिंट ऑफ दिस कैरेक्टर, अबाउट दिस कैरेक्टर. इस कैरेक्टर को वैसे तो ये एकदम ही क्या बोलते हैं उसको, हसमुख एंड सुंदर सुशील टाइप का नौजवान है. लेकिन इसको अगर गुस्सा दिलाया, कोई इसको अगर ट्रिगर किया तो फिर ये फोड़ देता है.
21: ये करैक्टर है.
15: ये करैक्टर है,
21: मतलब सो गाइस ही इज टॉकिंग अबाउट अ करैक्टर. एक मूवी के जैसे करैक्टर होते हैं ना, रोल्स होते हैं, वैसा वाला करैक्टर के बारे में. जस्ट टू बी प्रिसाइज हम वो बात कर रहे हैं.
15: हाँ. okay. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ.
21: जैसे राज हो गया DDLJ का करैक्टर.
15: हाँ, वो एक करैक्टर है.
21: शाहरुख खान का नाम था राज. राज इज अ करैक्टर.
15: या वैसा.
21: या
15: तो अभी ये गेस करना चाह रहे हैं. हाय.
22: हेलो
15: जी.
22: हेलो
21: जी बताइए.
22: हाय सैंडी. हाय रुस्ते. हाउ आर यू.
21: गुड. क्या नाम है आपका.
22: ऋषि.
15: ऋषि बोलिए. ऋषि
22: सैंडी को हिंट देना है राइट.
21: मुझे
15: सैंडी
21: मुझे
15: को हिंट हाँ. देना है या फिर आप सैंडी की मदद कर सकते हो अगर कोई सवाल आपको और है कुछ.
21: तुमने
15: है.
21: क्या बोला है रुस्बे इस करेक्टर के बारे में.
15: मैंने एक ही बोला है अब तक सिर्फ.
21: क्या बोला तुमने.
15: मैंने बोला कि वैसे तो ये एकदम
22: स्वीट. मैं स्वीट हूँ, स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का.
15: हाँ, लेकिन
22: बड़े बड़े हरामी टाइप का.
15: नहीं नहीं वैसा नहीं बोला
21: मतलब
15: मैं.
21: वो डायलॉग वाला करेक्टर नहीं है ये. मैं तो आपको बता दूं ठीक है.
15: मैं बस यूज कर रहा हूँ बॉलीवुड रेफरेंसेस.
21: मुझे पता है आप वरुण धवन समझ रहे हैं ना. हाँ नहीं नहीं नहीं तो ये ना डायलॉग वो वाला यूज कर रहा है लेकिन अपने करेक्टर को डिफाइन कर रहा है.
15: डिफाइन कर रहा हूँ मैं यूजिंग बॉलीवुड टर्मिनोलॉजीज. तो ये है स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का लेकिन अगर इसको गुस्सा दिला दिया तो ये हो जाता है दबंग टाइप का.
21: और ये याद रखना है ये बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बोलेगा जिससे हम थोड़े भटकेंगे.
15: हाँ.
21: जैसे इसने दबंग बोला इसका मतलब ये नहीं है सलमान खान का कोई करेक्टर है.
15: अच्छा दूसरी.
21: तो ये आप समझ जाओ रुस्बे के बारे में.
15: एक और हिंट देता हूँ सलमान खान की आपने बात की है तो एक और हिंट देता हूँ. तो सलमान खान को आप मूवीज में शर्टलेस देख लेते हो बट इसको आप हमेशा एक ही यूनिफॉर्म में देखोगे.
21: ओके. Yes. इसको फुल मूवी में हमने एक ही यूनिफॉर्म में देखा
15: मैंने
21: है।
15: ये सब नहीं कहा
21: तुमने यही बोला मैंने है अभी मैंने है ये ना रोशीन
15: मैंने नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि सलमान खान को आप शर्टलेस भी देख लेते हो बट इसको जब भी देखोगे इसको ये एक ही यूनिफॉर्म में रहेगा
21: ये करेक्टर एक ही यूनिफॉर्म में रहेगा टू बी प्रिसाइज ठीक है
15: दैट्स राइट यस दैट्स राइट
21: मतलब बेसिकली इस मूवी में ये करेक्टर फुल मूवी में एक ही यूनिफॉर्म में है
15: ऋषि सोचिए इसके बारे में तब तक हम एक और को मौका देते हैं यहाँ पे बात करने का हाय
22: हाय कैसे हो
15: बहुत ही बढ़िया भाई बताओ
22: मूवी का नाम लेना है
15: नहीं कैरेक्टर आज कैरेक्टर गेस कर रहे हैं
21: कैरेक्टर गेस करना है ये कौन सा कैरेक्टर का नाम क्या है ये
22: तो देखो एक्टर का नाम लिया तो चलेगा ना
21: हाँ मुझे मुझे मुझसे मुझे बताओ है फास क्या सोच रहे हो
22: मुझे पता है यहाँ तक बात सलमान खान की हो रही है क्योंकि उसका एक ऐसा मूवी है जिसमें उसका कैरेक्टर में वो वैसे ही सेम यूनिफॉर्म में ये रहता है
21: कौन से वाला
22: एक मूवी है उसका जिसमें वो यूनिफॉर्म में वैसे सेम यूनिफॉर्म में होता है और वो मूवी नाम नहीं बताना है ना
21: नहीं बोल सकते हो मुझसे तो बोल सकते हो कोई बात नहीं
22: बॉडीगार्ड
15: नहीं मुझे
21: लगता नहीं है
15: तो
21: वो
15: ये
21: है।
15: ले लो ये
21: नहीं
15: अरे यार मैंने
21: ये नहीं है
22: दूसरा सोचना पड़ेगा यार
21: और सोचो
15: कोई नहीं तो अभी तक दो हिंट मिले हैं आपको
21: अभी दो हिंट मिले अभी तीन हिंट हमारे बाकी है फाज रुको
15: तीन हिंट बाकी है आपको एक और यहाँ पे आया है जो काफी क्लोज हो सकता है भाई
21: पहले हम तीन हिंट सुनेंगे उसके बाद अपने तीन देंगे यहाँ पे हिंट बातें सबकी सुनूंगी मैं
15: अच्छा एक और हिंट चाहिए आपको सो बेसिकली ये जो कैरेक्टर है ये हमेशा एक लव ट्रायंगल में इन्वॉल्व रहे हैं
21: ये कैरेक्टर हमेशा मतलब कैरेक्टर तो एक मूवी का हुआ ना
15: ऐसा जरूरी नहीं है ना कैरेक्टर है ये वही तो आप सोचो थिंक आउटसाइड द स्क्वायर
21: आउटसाइड द स्क्वायर
15: आउटसाइड द सर्कल
21: तो तुम कह रहे हो कि ये जो करेक्टर है करेक्टर बेसिकली इस मूवी के रोल के बारे में बात कर रहा है ये ठीक है गाइस और ये जो करेक्टर है ये कह रहा है
15: आप क्यों कंफ्यूज कर रहे हो आप मैं जो बोल रहा हूं उसका उल्टा ही बोल रहे हो आप
21: उल्टा नहीं बोल रही मैं करेक्टर एक मूवी में तो होता है
15: नहीं जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है हो सकता है
21: हाँ
15: लेकिन जरूरी नहीं है
21: तो तुम कह रहे हो कि ये जो करेक्टर है जिस एक्टर ने प्ले किया है यूजली ये लव ट्रायंगल्स के रोल करता है
15: मैंने कभी बोला ही नहीं ये सब तो आप गलत ही बोल रहे हो मैंने एक्टर का तो नाम ही नहीं लिया है
21: तो
15: मैं
21: क्या बोला तुमने अभी
15: ले रहा हूं।
21: क्या बोला तुमने
15: मैं
21: अभी
15: कैरेक्टर के बारे आपने क्या पूछा कैरेक्टर गेस है गेम का नाम मैं आपको सुना देता हूं क्या गेम का नाम क्या है
18: कैरेक्टर
15: गेस राइट मैंने कैरेक्टर
21: तो ये तीसरा हिंट बोलो अपना
15: मैं तीसरा हिंट बोल दिया ना आपको
21: हां वही एक बार दोबारा
15: ये लव ट्रायंगल में होता है ये कैरेक्टर हमेशा
21: लव ट्रायंगल में होता है हमेशा
15: अटका है लाइफ लॉन्ग लव ट्रायंगल में अटका है
21: ओके तो किसी को तो कुछ हिट हो रहा होगा ना गाइस कम ऑन कॉल 0800 हम पर सो फार जो हमें हिंट मिले है ना कि ये इनोसेंट भी है करेक्टर लेकिन अगर इसको गुस्सा आ जाए तो बहुत गुस्सा आता है सेकंड हिंट इज कि ये फुल टाइम एक ही तरह के कपड़े में है एक ही यूनिफॉर्म में है ये
15: हाँ.
21: एक ही तरह के क्लोथिंग्स में ये बंदे को हम फुल टाइम देखते हैं तीसरा ये लव ट्रायंगल में स्टक है लव ट्रायंगल में ये स्टक
15: चलो इनसे भी बात कर लेते हैं हाय
2: नमस्ते
15: नमस्ते नमस्ते नमस्ते कैसे हो आप
2: जी बिल्कुल ठीक है सर मेरे ख्याल से इसका जवाब है अमिताभ बच्चन क्योंकि वो बहुत सुंदर है गुस्से भी बहुत हो जाते हैं एंग्री यंग मैन थे और इटरनल लव ट्रायंगल में तो
21: वो तो रियल लाइफ पे आ गए
15: यार ये बहुत ही गलत बात है
2: कैरेक्टर बोल रहे हैं आप वो भी एक कैरेक्टर है
15: वो भी एक
21: वो तो फुल कैरेक्टर
15: सही सही बोल रहे हैं आप कैरेक्टर तो है सही है नो कमेंट्स नो कमेंट्स
21: काफी लोगों ने वैसे यहाँ पे अजय देवगन का नाम लिखा है सतीश ने बोला है अजय देवगन काफी लोगों ने एक्चुअली में एली ने तो बोला है कि
15: इनसे फिर से
21: सेड
15: हाँ बोलो ना एक गेस तो करो एक हाँ एफएस बोलो
21: हाँ बोलो एफएस
22: रणबीर कपूर
15: आपको बोलना है भाई
21: मुझे रणबीर कपूर आपको लग रहा है ये
22: रणबीर ट्रायंगल में वैसे रियल लाइफ में भी फंसा है, उसकी मूवी में भी फंसा है, और उसमें उसका एक यूनिफॉर्म,
21: लेकिन आपके कोई उसकी कौन सी मूवी में वो एक ही यूनिफॉर्म में थे?
22: अजब प्रेम की गजब कहानी में नहीं, वो प्रेसिडेंट वाली यूनिफॉर्म पहन के रहता था हमेशा से, और उसमें लव ट्रायंगल भी था ना वो मूवी में।
21: एफआर तुम डुबोगे मुझे मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है
22: ऐसा
21: और सोचो अच्छा,
15: सोच
21: मैं
15: बता
21: अभी अच्छा मेरे को ये बताओ मैं अपना पहला, मेरे पास तीन है ना, तो पहला मैं यूज करना चाहती हूँ।
15: प्लीज यूज करो।
21: पहला गैस मेरा ये है कि जिस करेक्टर के बारे में तुम बात कर रहे हो, क्या ये करेक्टर पुलिस ऑफिसर के रोल में है?
15: एक मिनट, ये गैस कैसे हुआ? ये
21: गेस क्या?
15: ये क्वेश्चन है मतलब?
21: हाँ क्वेश्चन, तीन मेरे पास है ना क्वेश्चन।
15: क्वेश्चन पूछ सकते हो आप? तीन?
21: हाँ तीन क्वेश्चन है ना मेरे
15: तीन
21: पास।
15: आप गेस कर, ओके चलो ये आपका पहला क्वेश्चन है ना।
21: हाँ
15: क्या पूछा आपने? पुलिस वाले के रोल
21: के,
15: में
21: क्या ये जो करेक्टर है पुलिस ऑफिसर के रोल में है?
15: नहीं।
21: चलो गया तो मेरा बाजीराव सिंघम। जिल्लू गोरे अजय देवगन लिख के भेजा है ना, सब कैंसिल।
15: हाँ बाजीराव सिंघम इज या मे बी इट्स बट या नो नो नो पुलिस वाला,
21: नो पुलिस वाला गाइस, एक ही यूनिफॉर्म में है लेकिन पुलिस वाला नहीं है। क्या सोच रही है?
15: चलो एक और, एक और हिंट दे देता हूँ। इसके ऊपर आप काफी सारे टैटूज देखोगे और एक पर्टिकुलर टाइप के टैटू देखोगे।
21: ये गजनी के बारे में बात तो नहीं कर रहे हैं कहीं?
15: और ये आपका गेस है?
21: नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा सोच रही हूँ आउट लाउड।
15: एंड बेसिकली यू कुड से दैट ही इज गॉट मोर एंकर्स ऑन हिज स्किन देन पोर्ट्स ऑफ ऑकलैंड टर्मिनल।
21: क्या बात कर रहे हो?
15: हाँ।
21: बॉलीवुड का ही करेक्टर पकड़ा है ना
15: मैंने
21: तुमने?
15: नहीं बॉलीवुड का पकड़ा, मैं ऐसा बोला ही नहीं कुछ बॉलीवुड का कैरेक्टर। कैरेक्टर गेस फिर से सुनाओ क्या आपको? मैं
21: नहीं,
15: अब भी
21: नहीं,
15: सुना
21: नहीं,
15: कैरेक्टर गेस लिखा है क्या बॉलीवुड का कैरेक्टर?
21: तो मतलब और सोचना चाहेंगे गाइज, आप भी सोचिए सो फार जितने हिंट मिले कि टैटूज है इसकी बॉडी में बहुत सारे। जो टैटूज मुझे याद है आमिर खान की ऐसे बॉडी भी हमने देखी है मूवीज की अगर हम बात करें। अब वो काइंड ऑफ एक ही यूनिफॉर्म में वो बंदा रहता है फुल मूवी में ये भी अगर देखा जाए। एंड क्या बोला था वो, इनोसेंट भी है लेकिन वो यस एक्चुअली मैं गजनी में वो इनोसेंट भी था लेकिन अगर जरूरत पड़े तो वो वैसा भी
15: इन
21: था।
15: इनसे भी बात कर लेते। हाय
22: हाय ऋषि हियर अगेन।
15: ऋषि
21: बताइए।
15: ऋषि इज इन्वेस्टेड नाउ
22: आई थिंक ही इज टॉकिंग अबाउट पायरेट्स ऑफ कैरिबियन।
21: जैक्स उसके बारे में।

0: अच्छा एक मिनट, हाँ एक मिनट होल्ड कीजिए रुशिया,
1: होल्ड करो।
0: आप भी बताइए। हाय
1: I didn't hear, क्या था? मैंने नहीं सुना।
0: Popeye the Sailor Man।
1: ओ Popeye the Sailor Man, नहीं वो नहीं पता है मुझे।
0: क्या क्या नाम है आपका?
2: चार। उसके हाथ पे टैटू रहता है एंकर का,
1: प्लस ही इज ऑलवेज वेयरिंग द सेलर यूनिफॉर्म। ओके ओके, नहीं चारू मुझे लगता नहीं है वो है। मुझे नहीं लगता है वो है।
0: अच्छा,
1: वो नहीं होगा।
0: वेरी नाइस चारू, गुड वन यार, वेरी गुड वन,
1: सच अ क्रिएटिव
0: वन, बट एटलीस्ट दिस वाज थिंकिंग आउटसाइड द स्क्वायर।
1: एग्जैक्टली,
0: सो ग्रेट स्टफ यार, ग्रेट स्टफ चारू।
1: इवन जैक स्पैरो विद द जैक स्पाई, एक और ने वैसे पोपॉय बोला है, तो जैक स्पैरो पोपॉय ये भी यहाँ पे आ रहा है।
0: राइट,
1: Knowing Ruzbin, नहीं।
0: अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि मैंने बचपन में कार्टून नहीं देखा, हाँ इसलिए। How judgmental, seriously man.
1: Knowing Ruzbin, ये कोई अपना बॉलीवुड का है।
0: अच्छा,
1: इतना मैं आपको बोल देती हूँ, ये आउट ऑफ बॉलीवुड नहीं है। तो हम ऐसे करते हैं,
0: लास्ट हिंट दे दूँ,
1: लास्ट हिंट तब तक तुम दे दो।
0: लास्ट हिंट मैं देता हूँ, इस कैरेक्टर ने बच्चों को पालक खाना सिखाया।
1: इस करेक्टर ने बच्चों को पालक खाना सिखाया
0: जी।
1: ऑन दिस नोट हम एक गाना सुनना चाहेंगे, आप सोचिए।

0: Sono Nico Masiscor. Drive Show with Sandy and Rizbe. You're listening to the Drive Show with Sandy and Rizbe. और आज character guests आपके साथ खेल रहे, बहुत मजा आ रहा है मुझे तो. Sandy full confused हो गई है.
1: मैं full confused.

0: So, क्योंकि अभी जरा इतने सारे मैसेजेस जो आ चुके हैं पोपोए द सेलर के आ चुके हैं,
1: हाँ, तो
0: क्योंकि वो पालक वाला हिंट दिया ना तुमने,
1: शायद
0: अभी
1: पालक से लोग को लग रहा है।
0: सो फार जो रुजबे ने यहाँ पे हिंट दिए हैं ना, तो मैं आपको हिंट बताती हूँ। पहला हिंट रुजबे ने यहाँ पे दिया है कि ये जो करेक्टर है वैसे इनोसेंट है, लेकिन अगर इसको गुस्सा आए तो बहुत तेज गुस्सा आता है,
1: दबंग हो जाता है,
0: दबंग हो जाता है वो। सेकंड हिंट रुजबे ने दिया कि ये फुल टाइम एक ही यूनिफॉर्म में है,
1: एक यूनिफॉर्म में होता है।
0: एक्चुअली मेक सेंस, दिस इज नॉट अ बॉलीवुड कैरेक्टर, अगर फुल टाइम कोई एक ही यूनिफॉर्म में है, इट्स अ कार्टून सीरीज।
1: अच्छा, ओके
0: ओके, ठीक है। थर्ड हिंट है
1: लव ट्रायंगल,
0: लव ट्रायंगल में रहता है ये, एंड वो यार लव ट्रायंगल है तो सीरीज है ना, मूवी नहीं है।
1: अच्छा,
0: अगर लव ट्रायंगल में हमेशा रहता है तो मींस सीरीज
1: नहीं, मूवी भी हो सकते हैं ना, ऐसा मल्टीपल मूवीज बने हैं और हमेशा लव ट्रायंगल में रहे, ऐसा भी हो सकता है ना,
0: ऐसा भी हो सकता है। देन द नेक्स्ट वन इज कि उसने बचपन में पालक खाना सिखाया सबको।
1: हाँ,
0: काफी लोगों ने यहाँ पे भेजा है, सो आई विल रीड द आंसर्स फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो हमारे पास आए हैं। गोविंदा आया है, वरुण धवन आया है, जैक स्पैरो
1: आया है, जैक स्पैरो।
0: फ्रांसिना ने बोला है सैंडी सीम्स लाइक पपोया द सेलर एज ही इज ऑलवेज इन वन आउटफिट, एंकर टैटू, और रुजबे ने बोला था टैटूज भी है, एंड ऑलवेज हैड अ इश्यू विद अदर फेलाज, बोथ लाइक वन गर्ल। सो फ्रांसिना ने भेजा है, शरीना ने भेजा है जॉनी ब्रेवो।
1: वाओ, नाइस
0: नाइस, एंड ही लव्स स्पिनच टू। ओके, रेशमा ने भेजा है पपोया द सेलर, जो कार्टून करेक्टर है, ये होगा। एक बड़ा सही आंसर है यार, आई विश ये सही आंसर होता।
1: क्या क्या बोलो?
0: क्राइम मास्टर गोगो, शक्ति कपूर।
1: आंखें निकल के गोटियां खेल दूंगा।
0: तो गाइज, अभी सबसे ज्यादा वोट यहाँ पे आ रही है, तो मैंने तीन गेस यूज करने थे। पहला मैंने क्वेश्चन पूछा, दूसरा मैं क्वेश्चन ही पूछूंगी। इज इट पपोया द सेलर?
1: आप पूछ रहे हो अभी?
0: हाँ।
1: Are you sure?
0: Yeah. इसके बाद एक और लाइफलाइन बाकी है हमारी। हाँ बोलो।
1: तो ये इसमें आप ये लेना चाह रहे हो? हाँ?
0: क्या लेना? मतलब
1: ये आप यूज करना चाह रहे हो?
0: हाँ, सेकंड वन इज इट द पपोया द सेलर?
1: पपोया द सेलर मैन, एंड यस दैट इज द राइट आंसर। यस यस, यू गॉट इट राइट। जिन जिन लोगों ने गेस किया यहाँ पे, परफेक्ट गेस किया।
0: मैंने नहीं ज्यादा ये कार्टून देखा तो मैं अकेले नहीं कर पाती एक्चुअली में, तो जिन लोगों ने देखा है वो कर पाए। अगर आपने भी पालक खाना सीखा है ये देखने के बाद।
1: एक्चुअली बहुत लोगों ने पहले ही गेस कर लिया था ये।
0: हाँ,
1: मतलब
0: अपूर्वा ने किया था।
1: हाँ,
0: अपूर्वा ने किया था, एंड कुछ और लोगों ने भी किया था जैक स्पैरो के बाद।
1: जी, सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। आप लोगों ने यहाँ पे सही गेस किया, जिन जिन लोगों ने सही गेस किया। एंड अगर आपको कोई फीडबैक है इस गेम को लेकर तो हमें बताइए, क्योंकि नेक्स्ट वीक हम फिर से कोशिश करेंगे।
0: नेक्स्ट वीक भी हम ये गेम आपके साथ खेलने वाले हैं, जहाँ पे वन ऑफ द पर्सन विल गिव द हिंट्स, अदर पर्सन विल प्ले विद यू टू गेस the character.
1: Next week Sandy ka turn hai.
0: Yay.
1: To bring a character, and it's going to be a difficult one.
0: Yeah, aur character nice mein guys kuch bhi ho sakta hai. Anything. Like
1: jaise aaj maine kiya na, pop
0: cartoon character ho gaya, koi real life ka ya jise aap jante hain, koi bhi ho sakta hai, anything.
1: Well, now is the time. Aaj 12th of May, and in this month of May, we are celebrating our local artists, local talents. And New Zealand Music Month mein, aaj hum Back Your Backyard Beats mein shout out dene wale hain hamare aaj ke local star ko.
2: Celebrating local artists.
3: Back Your Backyard Beats.
1: आज जो हमारे लोकल आर्टिस्ट है, इनका नाम है जसराज बसरा।
0: जसराज बसरा जो कि ऑकलैंड बेस्ड आर्टिस्ट ही है। सो इन्होंने अपना पंजाबी गाना जो है ये इसी साल निकाला रुजबे, एंड बहुत ही फ्रेश एनर्जेटिक साउंड ये हमेशा लेके आते हैं ऑकलैंड बेस्ड। इनका कहना है कि ये एक बड़ा नाम धीरे धीरे कमाना चाहते हैं, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने शुरू किया है, और एक फुल फ्लेज गाना इन्होंने ये वाला रिलीज किया है।
1: सो चलो
0: नचदा,
1: जग नचदा, जसराज बसरा की आवाज में सुनते हैं आपके लिए, ओनली ऑन हम राइट नाउ। अगर आपको पसंद आया ये गाना तो जरूर यहाँ पे मैसेज कीजिएगा 5599 पे,
0: MM कीवर्ड के साथ,
1: MM कीवर्ड के साथ यहाँ पे मैसेज कीजिए, बिकॉज वी नीड योर सपोर्ट एंड दे नीड योर लव।
0: एंड ऑल्सो गाइज, डोंट फॉरगेट फ्लाई अवे फ्रेंजी का कोड अभी तक हमने दिया नहीं है।
1: कब देना है वो?
0: स्टे ट्यून्ड।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएं।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब क्या मैसेज कर रहा
3: हूँ? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ में नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
4: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून।
0: वीकडेज 6 to 10 AM.
4: Hum, accurate traffic.
5: Morning fresh, cuts through Greece.
6: Partly cloudy tonight with a low of 11. Taking a look first at the southern motorway. The slow patches all the way from Market Road out to Papakura, 45 minutes to Monaco from the CBD. And on the northern, about the same time to Silverdale, it's heavy from the bridge to Esmond. The northwestern is slow in patches right the way out to Te Atatū. And on the southwestern, it's heavy south from Walmsley Road.
5: For sparkling clean dishes, use Morning Fresh Ultra Concentrate with superior grease cutting power.
7: Join the Great Big Balance Check at New World. Check your balance in the New World app or ask a checkout to spend your New World dollars today. Only with Club Card. Only at New World. T's and C's apply.
8: At IKEA, turn clutter into calm. With our wide range of storage solutions. Because behind every mess, every avalanche of toys is a new possibility. Shop in store or at IKEA.co.nz.
9: IKEA.
10: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
11: Tiger Bar and Restaurant in Soho Hotel Mount Roskill. Aaye aur enjoy kare inka sophisticated dining experience jahan par aapko tarah tarah ke flavors milenge. Creative Asian fusion dishes se lekar zesty seafood tak, saath mein refreshing cocktails, sab kuch ek bahut hi elegant aur stylish andaaz mein. Ye open hai for breakfast, lunch and dinner. Close to Auckland CBD and minutes away from the airport. Tiger Restaurant Bar in Soho Hotel, Stodart Road, Mount Roskill. Visit Tiger at soho.co.nz.
12: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
13: क्यों, क्या हुआ?
12: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
4: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
14: Introducing Pizza Hut's new Tikka and Paneer range. Rich tikka base, creamy paneer, bold flavor. Get the first taste from $10.99 pickup at Pizza Hut. Limited time only. T's and C's apply.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby.
15: हमेशा साथ देने वाले दोस्त.
4: Brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe with Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from $4.49 and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
16: Power Drive at 5.
0: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Bollywood's most wanted.
17: Gundi khad jao ya seedha andar aao.
18: Main laun apna A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पे एंड एक आर्टिकल हाथ लगा है जिसके बारे में थोड़ी बहुत बातें हम करना चाहेंगे आपके साथ और आपसे पूछना चाहेंगे आपका टेक इसके ऊपर पहले.
1: ओके.
0: तो काफ़ी बार ये होता है कि यहाँ पे पेड़ पे बहुत बढ़िया बढ़िया फ्रूट्स आते हैं काफ़ी बार, जैसे प्लम आते हैं, लेमन, एप्पल,
1: लेमन, या
0: फिजुआ,
1: मैंड्रिन्स,
0: मैंड्रिन्स, जस्ट ब्यूटीफुल फ्रूट्स. Is it appropriate to pluck fruits from other trees? अगर वो रास्ते पे लटक रहा है, let's say for example, आप चल रहे हो और आप रास्ते पे आपने देखा कि एक पेड़, क्योंकि पेड़ उगता है, थोड़ा रास्ते पे भी आता है ना, तो पब्लिक एरिया में अगर उसका कोई ब्रांच आया है और कोई फ्रूट आया है, तो is it appropriate to pick that fruit?
1: मुझे लगता है कि should be okay. अगर कोई ब्रांच उसकी उस एरिया में है जो कि पब्लिक के एक्सेस में है, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि, मुझे नहीं पता रूल क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे, क्योंकि एप्पल ट्रीज के साथ ऐसा होता है कई बार, ये काफ़ी जगह पे ऐसे एप्पल ट्री बड़े बड़े होते हैं, तो यूजली कई लोग वहाँ से अगर बाहर की ओर है तो प्लग कर लेते हैं, बिकॉज अगर ओनर्स को प्रॉब्लम ना हो तो वो फिर ऐसा कुछ फेंसिंग शायद उस वे से करते हैं या फिर कवर कर लेते हैं, ऐसी चीजें भी करते हैं ना कई बार.
0: काफी फिजुआ काफी होते हैं, मतलब
1: फिजुआ तो बहुत ज्यादा होते हैं,
0: बहुत ज्यादा फिजुआ भी आते हैं. प्लम्स काफी बार आते हैं जो बाहर प्रॉपर्टी के बाहर भी काफी उगते हैं. सो या
1: रूल क्या है इसका, कोई रूल है क्या?
0: देखो रूल एज सच नहीं है, बट एक आर्टिकल जो मेरे हाथ लगा है उसमें लिखा है कि अगर फुटपाथ पे फ्रूट गिरता है देन इट इज ओके फॉर यू टू टेक दैट फ्रूट, बट उसमें भी इट्स लाइक अ थिन लाइन कि मतलब वो ओनर्स के साथ कंसल्ट करना इज ऑलवेज बेटर.
1: काफ़ी ओनर्स तो ये भी करते हैं ना, वो बास्केट में रख देते हैं फ्रूट्स एंड कईयों ने ऐसा साइन भी लगाया होता है कि इट्स ओके टू टेक दिस फ्रूट्स, कईयों ने ये भी किया होता है.
0: हाँ, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई ब्रांच तोड़ा जो बाहर भी है वो नॉट परमिटेड है. You can't break a branch or anything of a tree, of a privately owned tree, जो private property पे है.
1: हाँ, branch आप ऐसे नहीं तोड़ सकते हो. हाँ, वो cutting हो गया ना, basically आप cut कर रहे हो.
0: आप cut कर रहे हो वो. So yeah, it is quite an interesting one. क्या आपने कभी यहाँ पे fruit तोड़ा है किसी और के पेड़ से?
1: मैंने नहीं अभी तक तोड़ा है.
0: मैंने बहुत तोड़े.
1: हाँ.
0: तो मेरे अंकल के जो घर, मतलब उनका जो parking है वहाँ पे neighbor के पूरे plums आते हैं. तो वो तो बहुत ब्यूटीफुल प्लम्स होते हैं और भाई नेक्स्ट लेवल, बट वो बहुत एक्सेस होते हैं, तो वो हमारे यहाँ पे मतलब उनके यहाँ पे गिरते पूरे, गंदा करता है ड्राइव वे, तो उससे अच्छा पेट में जाए किसी के.
1: पॉइंट है, बिल्कुल
0: लगता है कि बाहर से लोग आके तोड़ के जाते हैं.
1: ओके.
0: हाँ, मतलब फुटपाथ पे लोग चल रहे हैं वो अंदर एंटर करके तोड़ के हुए जाते हैं. काफी बार ऐसे भी होता है.
1: सो आप क्या करते हैं, आपने कभी ऐसे किया? ओके. सो न्यूज देख लो भाई, अगर आप कर रहे हैं तो, अगर अगर जिसके घर से आप तोड़ रहे हो वो आपके साथ फ्रेंडली नहीं है तो वो आपके लिए इलीगल हो सकता है
0: जी. और
1: अगर परमिशन नहीं है तो
0: परमिशन लेना इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा वो आर्टिकल में भी लिखा है. बट हाँ, आप अगर कोई शेयर करना चाहो किससे तो जरूर शेयर कीजिए. यहाँ पे 800-004-866 इज द नंबर फॉर यू टू कॉल.

0: I know.
1: तू कमाल है।
0: अरे बस्कर पगले रुलाएगा क्या? राघव चैतन्य की आवाज में सुन रहे थे आप ये मस्त सा गाना। ड्राइव शो जा रही है आपके लिए, नाउ इज द टाइम जिसका इंतजार आपको सभी को होता है काफी टाइम तक।
2: फ्लाई वे फ्रेंजी का स्पेशल कोड के लिए
0: बताओ, इस कोड के द्वारा आपका नाम हो सकता है शामिल टू विन अ रिटर्न एयर टिकट फॉर फिजी। तो आज का जो वर्ड है जो अभी आपको हम दे रहे हैं, एंड इट्स गोइंग टू बी वैलिड अंटिल 6:50 PM, इस वर्ड है रीफ, REEF, रीफ।
2: क्यों? नहीं,
0: अरे सॉरी गलती हो गई, नुक्कू है, नुक्कू आज का वर्ड।
2: यस, नुक्कू है आज का वर्ड, NUKU।
0: या NUKU, दैट्स राइट,
2: NUKU।
0: हाँ गलती है, अभी बात रीफ मत लिखना, नुक्कू लिखना, ठीक है?
2: हाँ प्लीज, NUKU आपको लिखना है। तुम्हें पता है नुक्कू क्या होता है?
0: नहीं मुझे नहीं
2: जो
0: पता।
2: मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, नुक्कू का मतलब है सैंड और सैंडी।
0: क्या बात कर रहे हो?
2: जो गूगल मेरे को बता रहा है,
0: ड्राइव शो विद नुक्कू एंड्रूज।
2: सो बताओ, कोई अगर सुन रहा है कि नुक्कू का मतलब रियली ही होता है सैंड और सैंडी होता है, इसका मतलब या और कुछ होता है? बेसिकली सैंडी बीच, ड्यून्स, इस सबको लेके रेफरेंस पे नुक्कू को यूज किया जाता है। अगर इसे नुक्कू ही कहते हैं, ये टोंगन वर्ड भी है बेसिकली, टोंगा टोंग, हाँ वहाँ पे भी यूज किया जाता है। सो बहुत सारे आइलैंड्स में इस वर्ड को यूज किया जाता है, जैसे नुक्कू रीफ है, नुक्कू रिजॉर्ट भी है, सो काफी कुछ है नुक्कू के नाम से।
0: नुक्कू, अच्छा, ग्रेट।
2: कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में इट्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ कोस्टल विलेज। या
0: तुम्हारा
2: नुक्कू,
0: तुम्हारा नुक्कू कौन कौन सा?
2: हाँ
0: कोस्टल विलेज कौन सा है तुम्हारा नुक्कू? पता नहीं कैसे यूज होता है टर्म, लेकिन अगर आप यूज करते हो तो हमें जरूर बताइए, यहाँ पे आप कॉल करके बता सकते हो। बट आज ट्रेंड मेकर्स में क्या होने वाला है सैंडी?
2: ट्रेंड मेकर्स में हम चाय और कॉफी के ऊपर गाने आज आपके लिए प्ले करने वाले हैं। ऐसे गाने जिसमें चाय आता है, ऐसे गाने जिसमें कॉफी आता है, ये वर्ड आना जरूरी है पूरे गाने में, कॉन्टेक्स्ट में, बाकी सारे और कुछ भी चल रहा है लेकिन गाने में चाय और
0: या कॉफी का मेंशन होना चाहिए,
2: चाय या कॉफी इन दोनों का मेंशन होना चाहिए डिफरेंट सॉन्ग्स में।
0: या एंड मे बी ये गाना सुन के आपको, मतलब गाने सुनकर आपको मन हो कि यार एक कटिंग चाय हो जाए या एक कप कॉफी हो जाए। सो या एंजॉय दिस आज का प्लेलिस्ट, 6 से 7 के बीच चाय कॉफी स्पेशल है आज का प्लेलिस्ट।

0: Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
1: Accurate traffic.
2: Win 135 grand in prizes from Moody.
3: Partly cloudy tonight, a low of 11 degrees. Out of Auckland City on the northwestern motorway, it's pretty slow to R2 with just a bit of a break after St. Luke's. Half an hour to get to Massey from the city. A similar time out to Constellation Drive. The northern congested from the bridge to Esmond Road. The southern has slow patches, Newmarket out to Papakura. It's about 40 minutes to get to Manukau.
2: Golden tickets are hidden in Moody plant protein balls in supermarkets. T's and C's apply.
4: The bell has gone, but is the day really over? Between sports meetups, play dates, homework, and late shifts, you need to be putting in the right stuff. Packed with calcium, vitamins, and protein, grab some Anchor. Real milk, real good.
5: Whiteware Super Sale is on now at Noel Leeming. Get up to 25% off whiteware and cookware. Plus, check out our finance options available. Conditions and exclusions apply. Whiteware Super Sale ends Tuesday, 12th May. Only at Noel Leeming.
6: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
7: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
6: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today.
7: Available at selected branches. T's and C's apply.
8: Trade Depot brings you MyDia, the world's number one air conditioning company. Introducing the MyDia Inverter Heat Pump. It looks elegant and sophisticated, features innovative smart technology, and superb energy efficiency. Shop now for your MyDia Inverter Heat Pump, including installation anywhere in New Zealand, from only $1,299 with Trade Depot. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
0: Time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
9: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 6. Labor denies any responsibility for a troll Instagram account targeting the government. It has been revealed the person behind luxury Marmite sandwich previously worked for the party. Leader Chris Hipkins won't weigh in on whether the posts go too far.
10: It also refers to the Prime Minister as a and I'm not going to say it. But C word, is that acceptable?
11: This is a private citizen. It's not someone who I'm responsible for.
9: The police union says constabulary staff were left gutted after effectively being offered a 0.6% pay rise. President Steve Watt says it's tough as conditions don't allow them to strike.
12: We're hopeful that we'll be able to resolve this through mediation without going to final offer arbitration.
9: Police have moved quickly to save a pet at the centre of a family harm situation in Christchurch. Concerns were raised in court about the dog, which had been used to manipulate the victim. Within 40 minutes, officers found the wee pooch, who had been left alone for 2 days. More details are being released about the first ever concert at Christchurch's new stadium this Saturday. Country artist Kayleigh Bell will take the stage from 6:50, followed by 6:60 at 8 p.m. and Symphony from 9. There are also going to be pop-ups around the city this week, including a replica of the 6:60 Castle Street flat where the band was formed. To rugby league with Machinery House, Luke Metcalf is almost certain to leave the Warriors at the end of the season. The club has confirmed that Metcalf's management has been given permission to seek a new home from next year. And to basketball, the NBA Conference Semis, Game 4 in the best of 7 series. The Thunder sweeping the Lakers with a 115-110 win. The Pistons and the Cavaliers are locked at 2-all.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
13: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशन.
14: स्वर्गीय रमेश चंद्र की पत्नी प्रेम कृष्ण और सरिता गाउंडर की माँ नांदी भूतपूर्व की नांदी फीजी की भूतपूर्व निवासी वन ट्री हिल की ऐश्वर्यमा चंद्र की मृत्यु हो गई. अंतिम संस्कार बुधवार 13 मई को दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 48 स्टेलेटा कोर्ट रैंडविक जा सकते हैं या प्रेम को 0213 0212382 412 पर कॉल कर सकते हैं. स्वर्गीय रमेश चंद्र की पत्नी प्रेम कृष्ण और सरिता काउंडर की माँ नांदी फीजी की भूतपूर्व निवासी वन ट्री हिल की ऐश्वर्यमा चंद्र की मृत्यु हो गई. अंतिम संस्कार बुधवार वेनसडे 13 मई को दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 48 स्टिलेटा कोर्ट रैनविक जा सकते हैं या प्रेम को 021-2382-412 पर कॉल कर सकते हैं। सूचित किया जाता है, बलवंत मिस्त्री, अरविंद वल्लभ, मधुबेन मिस्त्री और जयाबेन मिस्त्री की माँ, फिजी में नाउआ सेंट्रल स्टोर के मालिक स्वर्गीय वनमली भाई वल्लभ की पत्नी, जशुबेन मिस्त्री की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार शुक्रवार 15 मई को दोपहर 4 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा। बलवंत मिस्त्री, अरविंद वल्लभ, मधुबेन मिस्त्री और जयाबेन मिस्त्री की माँ, फिजी में नाउआ सेंट्रल स्टोर के मालिक स्वर्गीय वनमली भाई वल्लभ की पत्नी, जशुबेन मिस्त्री की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार शुक्रवार 15 मई को दोपहर 4 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा।
13: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
0: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
15: शिद्दत के साथ करते हैं।
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। The Drive Show with Sandy and Rusby.
16: हमेशा साथ देने वाले दोस्त.
17: Brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from $449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
18: Let's go! 3, 2, 1.
0: Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rusby.
19: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
3: बजकर 4 मिनट, यू आर लिसनिंग टू द ड्राइव शो ट्रेंड मेकर्स में आपका स्वागत है। एंड हाय सैंडी, गुड इवनिंग।
20: अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। और ये जो आवर है ना आज, चाय और कॉफी लोगों के लिए।
3: ये आवर शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी यार, मेरे को यहाँ पे एक मैसेज भी आया है, माई एंट्री बिकेम इनवैलिड बिकॉज ऑफ यू। उन्होंने गलत वहाँ पे कोड डाल दिया क्योंकि मैंने गलत कोड बताया।
20: उसे बोला आई एम गोइंग टू सॉब इन अ कॉर्नर नाउ।
3: मुझे माफ करना प्लीज। But yeah, yeah. I owe you a coffee.
20: और a chai.
3: और a chai, whatever your preferences. And that is what we want to know. आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए चाय कॉफी स्पेशल, जहाँ पे गाने रहेंगे, या तो उसमें चाय का जिक्र होगा या कॉफी का जिक्र होगा।
20: So, ऐसे गाने जिसमें चाय के बारे में बात की गई है, कॉफी के बारे में बात की है, चाहे एक वर्ड में एक लाइन में की है, लेकिन की है बात।
3: की तो है।
20: और आज हम आपसे भी जानना चाहेंगे, Are you a coffee person or are you a chai person?
3: Let's split the radio up.
20: Or are you a chai person converted into a coffee person?
3: We want to know your story.
20: Yeah.
3: आप यहाँ पे call कर सकते हो।
20: Vice versa.
3: 0800-004866 is the number. Give us a call right now and let's have a chat, यार, quickly. कि भाई आपको chai person, coffee person, what is your preference?
20: मेरे सामने अगर चाय, sorry, चाय और कॉफी की ऑप्शन हो, I will always select chai.
3: बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ना कि कैसे टाइप की चाय है।
20: हाँ, अगर तो वो डिप वाली चाय है, इंग्लिश टी है, अगर इट्स अ टी, इट्स नॉट चाय।
3: नहीं नहीं, दैट इज नहीं, लाइक चाय में मैं बोल रहा हूँ चाय में कैसे टाइप है, नॉट टी, बट चाय में भी दो टाइप होते हैं। एक होता है जो होती है पानी वाली चाय, एक होती है जो होती है दूध वाली चाय,
20: और एक मिक्सचर वाली भी होती है, एक राइट मिक्स होता है रुस्बे।
3: वही राइट मिक्स, हाँ, मतलब यार। ओके, एनीवे, हाय, कैसे हो आप?
21: हेलो हेलो,
3: बताइए चाय की कॉफी?
21: अरे चाय, सुबह एक कप चाय नहीं मिले तो दिन नहीं शुरू होता यार।
3: दिन नहीं शुरू होता ना, काफी लोगों को हेडेक होता है चाय नहीं पिया तो सुबह सुबह। आप भी हो क्या उसमें?
21: हाँ, मेरे को भी होता है, मेरे को भी होता है।
20: तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके
21: साइकोलॉजिकल
3: हो जाता है?
20: क्योंकि मैंने छोड़ी ना बीच में तैनाज, मुझे ऐसा लगता था कि चाय के बिना। हाँ
3: बात सही, फिर
21: बट मुझे बहुत ऐसे टायर्ड सा फील होता है, कुछ एक्टिवनेस नहीं लगता है, लाइक यू नो, काम पे भी ऐसे लगता है सो जाऊं।
3: या
21: जब तक चाय नहीं पीती, कितनी भी कॉफी पीऊं मुझे वो एनर्जी नहीं आती जब तक वो सुबह वाली एक चाय नहीं मिल जाती।
3: चाय तो चाहिए, काफी लोगों को
21: मसाले वाली चाय। हाँ,
3: काफी लोगों को चाय की जरूरत होती है सुबह सुबह फॉर प्रेशर ऑल्सो।
20: या लाइक या मैंने छोड़ी, बीच में जरूरत नहीं पड़ी थी रुस्बे टू आंसर इट।
3: या चाय क्या, कॉफी भी काफी लोग लेते हैं, कॉफी से वेरी नाइस।
21: उनको गर्म पानी का टेक्निक नहीं पता होगा ना, इसलिए।
3: हाँ, मतलब
20: वो गर्म पानी के अंदर मिक्सचर चाहिए ना चीजों का, और कुछ नहीं।
3: या एनीवे
14: थैंक यू यार, थैंक्स आपके कॉल के लिए.
20: थैंक यू.
14: अभी यहाँ पे कॉल कर रहे हो, आप यहाँ पे कॉल आ रहा था लेकिन अभी आंसर नहीं कर
20: पाए. कॉल कीजिए 0800 00 हम पर. चाय पर्सन है आप या कॉफी पर्सन है? और अगर आप चाय या कॉफी पर्सन है तो कौन सी टाइप की चाय या कॉफी आपको पसंद है?
1: हाय
2: हाय,
14: बस रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए.
20: जी बढ़िया,
2: बस हो गया, बंद हो गया, बंद कर दिया.
14: हाँ, सही, याद रखिए चालू करना है फिर से.
2: नहीं नहीं, चालू तो होता ही है.
14: अच्छा
20: ठीक है, बताइए. अभी
2: तीसरी बार कॉल कर रहा हूँ इसलिए यार.
20: ओके,
14: गुजराती नंबर है ना 0800. मतलब गुजराती मानस बोल रहा है मेरे को, तीन बार मैं फ्री नंबर पे कॉल कर रहा हूँ और मेरे को सुना रहा है कि तीन बार कॉल कर रहा हूँ. नाइस. क्या नाम है आपका?
2: ऋषि.
14: ऋषि, हाँ ऋषि, आज तुम्हारा मूड है मतलब यहाँ पे.
20: ऋषि बताओ, चाय पर्सन हो?
2: चाय पर्सन हो.
20: और कैसी चाय आपको पसंद है? सिंपल चाय या काफी को होता है ना अदरक वाली चाय?
14: हाँ
2: अदरक वाली,
14: और थोड़ी दूध वाली होनी चाहिए ना.
2: इलायची अदरक वाली, अदरक इलायची वाला.
20: वो होता है ना कि चाय का भी तड़का होता है एक, कि फुल तड़का लगा के चाय का देन.
14: और मेरी चाय तो 45 मिनट्स गैस पे रहती है.
20: वाओ,
14: आपकी चाय कितने देर में बनती है?
2: 15-20 मिनट.
14: अच्छा,
20: 45 मिनट है यार.
14: मैं बहुत प्यार से उसको ऐसा वो करता हूं.
20: नहीं तुम भूल जाते हो.
14: वो भी है.
20: यहाँ इसे भूलना कहते हैं. 45 मिनट.
2: 5 मिनट तक भूलना कहते हैं. सही है.
14: थैंक यू ऋषि, थैंक्स फॉर योर कॉल.
20: थैंक यू.
14: वेल, आज आपके कॉल्स यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा. लेकिन आप मैसेज करके यहाँ पे बता सकते हो 5599 पे, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू? आर यू अ चाय पर्सन और आर यू अ कॉफी पर्सन? इफ यू आर अ चाय पर्सन, दिस सॉन्ग्स फॉर यू.

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. Trendmakers में आज competition चल रहा है चाय versus coffee.
1: Yes.
0: How many chai lovers, how many coffee lovers? And यहाँ पे काफी messages भी आ रहे हैं, काफी support for chai and a lot of support for coffee as well. मैंने सोचा नहीं था इतना coffee के लिए भी support आएगा.
1: लेकिन still 40% I will say coffee के लिए आया है, 60% chai के लिए. अगर percentage देखा जाए.
0: That's right. Yes, and it is.
1: Chai is still leading.
0: It was expected. I think I was expecting chai to lead.
1: Yeah.
0: But yeah. Anyway. आप यहाँ पे मैसेज करके हमें बता सकते हैं व्हाट इज योर फेवरेट. और हम आज ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आज का हमारा थीम ट्रेंड मेकर्स में है चाय एंड कॉफी रिलेटेड सॉन्ग्स.
1: एग्जैक्टली. और ये जो गाना आने वाला है ये शायद आपने पहले

0: और आज और भी ऐसे चाय भरे गाने और या कॉफी भरे गाने आपको हम सुनाएंगे। कोई ऐसे गाने हैं जो आपके जहन में आते हैं चाय और कॉफी को सुनते हुए
1: जो अभी तक आपने नहीं सुने हैं तो यहाँ पे लिख के भेजिए 555 पर।

या ये प्याला या तो मैं ही खुश नसीब हूँ, या तू बसी है इसमें है मेरे करीब तू, या ये रब का इशारा की है शरीक तू, या ये वो ही किस्सा रांझा मैं और हीर तू।

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: There's a reason the Big Ben six-pack is a go-to in Kiwi homes. Everyone gets hungry, just not at the same time. Someone's just walked in, starving. Someone's heading out, also starving. Someone said they weren't hungry, now they are. Someone's just eaten, and somehow hungry again. Waves of hunger just keep coming, but so do the pies. That's the genius of a Big Ben six-pack. So if hunger's a constant force at your place, grab a pack. Big Ben, feed your mission.
2: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
3: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
4: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
5: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
6: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक,
5: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
6: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी, कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
7: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई वेस्ट हो या कोई

0: चीप चीज तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे तमाकी तुरुकी ओल टुगेदर ओकलैंड।
1: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल।
2: With the Genesis app, LPG delivery feels easy. Switch to Genesis LPG and Power to get $15 credit per bottle delivered, plus 50 free Power Shout hours. Eligibility criteria and terms apply. Genesis, with you, for you.
3: The Drive Show with Sandy and Rusby.
4: Hamesha saath dene wale dost.
5: Brought to you by Beds R Us, Monaco and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from $449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
6: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. Trendmakers mein chai bhare gaane, chai aur coffee bhare gaane, aapko aaj hum suna rahe hain.
7: और ये जो कमिंग अप सॉन्ग है इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कम्युनिटी में क्या क्या हो रहा है।
6: वैसे भोजन मेला होने वाला है ऑन दिस वीकेंड संडे 17 मई को, ये होगा सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक। सपोर्ट करने के लिए लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेंपल प्रोजेक्ट, अभी पहुंच जाइए 378 आरा रिमू रोड रामा साउथ ऑकलैंड में, एक टेंपल बनने वाला है उसके लिए ये भोजन मेला ऑर्गेनाइज किया गया है, तो वो उसके लिए आप भी पहुंच सकते हैं। काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ वहां पे होंगे, फ्री एंट्री है।
7: गिरमिट रिमेम्बरेंस डे होने वाला है सैटरडे 16 मई को मलायोला कम्युनिटी सेंटर में। वैसे कृष्णी क्रिश जो है इसे होस्ट करने वाले हैं वहाँ पे। 4:30 PM to 8:30 PM डोर्स ओपन हो जाएंगे 4 PM, तो आप भी वहाँ पे जरूर पहुँच सकते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी देयर रुज़बे।
6: अरे क्या बात है।
7: या तो अगर आप भी आना चाहते हैं, फ्री एंट्री है वहाँ पे, सो इट्स अ गुड टाइम टू डू द नेटवर्किंग। टी एंड स्नैक्स भी वहाँ पे रहते हैं।
6: क्रिश इज ऑन फायर नाउडेज, मैं देख रहा हूँ उसका, एक से एक एमसीइंग कर रहा है, मतलब
7: ही इज बैक इन द गेम।
6: ही इज बैक, और उसने जैसे बोला था Sandy, I think he stuck to his word this time.
7: Because Krish ke saath aisa hota hai, wo bolte ke I will be, pichle saal usne bola I'm back in the game, aur wo aisa gayab raha most of the time, wo gayab raha,
6: aur 3 mahine ki chutti pe chala gaya.
7: Exactly, fir usko taana mara, bhai tu jab bhi bolta hai to aise hota hai. Is saal fir usne bola, maine bola I will wait and watch.
6: But he's proving it to himself, be right this time. Yeah. Matlab ye sahi hai ye baar. Very nice, yeah. Very, very proud of you, Krish.
7: Yeah, he's in more man. In the community now, which is good.
6: Yeah, and community events se ek aur event aa raha hai, Vibe Mix Events. Ye lekar aa rahe hai aapke liye the Grand Masti Night. Yahan pe bhi kafi renowned RJs from Fiji rehne wale hai. एंड उसके साथ साथ हमारे अपने केतन वहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं।
7: या केतन परफॉर्म करेगा वहाँ पे, टॉप डीजेस रहेंगे फ्रॉम फीजी, अमेजिंग मोंटो मोनिका विल बी परफॉर्मिंग, एंड एक ड्यूअल वॉइस सिंगर मनी डिसूजा ये भी रहने वाले हैं। टिकट्स खरीद लीजिए, यहाँ पे भी एवरी डे आपको चांस मिलता है टिकट्स जीतने का। एंड वैसे बता दें रुज़बे कि आज जो कॉफ़ी ब्रेक से शुरू किया था कंपटीशन यहाँ पे, कि आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल होगा जहाँ पे डबल पास आपके नाम हो सकता है। सो जो आज के हमारे विनर हैं इनका नाम है शबाना, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स है 0786, आपने ये डबल पास जीता है।
6: ओह कॉन्ग्रेचुलेशंस शबाना। तो ये पेड इवेंट है, मतलब इसमें
7: ये पेड इवेंट है।
6: अच्छा ओके।
7: या पेड इवेंट है जहाँ पे आप टिकट्स मेजर इंडियन आउटलेट से ले सकते हैं। नाउ कमिंग टू द चाय सॉन्ग, मुझे बिलाल सैयद का ये गाना ना बहुत पसंद है। बिलाल सैयद का
6: गाना, मैंने ये गाना तो सुना ही नहीं है।
7: मैंने एक टाइम पे ये गाना बहुत बार प्ले भी किया हुआ है रेडियो पे,
6: तो शायद सुना होगा फिर।
7: हाँ मैंने रेडियो पे एक टाइम पे बहुत बार प्ले किया था, एंड या यूज टू एंजॉय द रील्स ऑफ दिस सॉन्ग एज़ वेल। इस गाने की वीडियो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, सो या एंजॉय द गाना।
6: गाने का नाम है बारी, बिलाल सईद की आवाज में, एंजॉय कीजिए।

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. आज आपके साथ हम चाय कॉफी वाले गाने आपको सुना रहे हैं और ये जो गाना अभी आपने सुना ये बहुत ही बढ़िया गाना है. लव के लिए साला कुछ भी करेगा इस मूवी का ये गाना था.
1: इस मूवी का ये गाना आप यहाँ पे सुन रहे थे.
0: जॉनी लीवर के ऊपर फीचर्ड एक सॉन्ग
1: और मेरे को क्लासिक गाना है यार ये कैसा गाना है जिसमें वार्तालाप हो रही है
0: चीन की चटनी और ईरानी चाय
1: या वार्तालाप के बीच में इस गाने को यूज किया गया था. बट इंटरेस्टिंग हमारे पास काफी लोगों ने बताया है कि कैसी चाय उनको पसंद है, अदरक वाली चाय पसंद है, यू नो कौन सी चाय पसंद है, ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं. और उसमें अगर तुम्हें ऐसा मौका मिले कि अगले पूरे 2 महीने तुम सिर्फ चाय या कॉफी दोनों में से एक ही चीज सेलेक्ट कर सकते हो, तुम क्या सेलेक्ट करोगे?
0: चाय.
1: ओ, यू नॉट द कॉफी पर्सन एट ऑल.
0: आई मतलब अभी कॉफी मजबूरी में पीता हूँ मैं, लेकिन अगर चाय रहेगी तो चाय पीऊंगा मैं.
1: ओके,
0: ऑप्शन. आई थिंक आई लाइक कॉफी आल्सो. आई एम नॉट फसी सैंडी, आई एम अ वेरी इजी गोइंग पर्सन.
1: आप मेरे को जो सामने होगी मशीन,
0: आप मेरे को 2 महीना बोलो कुछ मत पी, मैं वो भी चलेगा मेरे को.
1: ओ सही में?
0: हां, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं सिर्फ पानी से ही गुजारा कर सकता हूं.
1: तो करेंगे गाइस कुछ
0: ऐसा. बस पानी पीना है मेरे को, बस वो इंपॉर्टेंट है.
1: यार
0: पानी नहीं पी रहा हूं मैं यार.
1: और तुम एक ही बार पियोगे पानी फिर पंगा होगा तुम्हारे सिस्टम के साथ.
0: क्यों एक ही बार पियोगे?
1: होता है ना कि तुम एक ही बार जो पानी पीते हो, तुम्हें तो बोला था तब बाढ़ आ जाती है तुम्हारे सिस्टम में तो फिर पंगा होता है
0: तो फिर पत्थर बाहर आ जाता है.
1: एनीवे, सो चाय के रिलेटेड नेक्स्ट गाना कौन सा है?
0: चाय के रिलेटेड नेक्स्ट गाना जो है, ये गाना मेरे को लग रहा है बचपन से हम सुनते आ रहे हैं.
1: ओ सारे गांव ने इसका रीमेक किया है.
0: एक रीमेक वर्जन आपके लिए लेकर आ रहे हैं इसका. बट दिस इज अ सॉन्ग विच इज बेसिकली काइंड ऑफ अ सॉन्ग दैट इज डिस्क्राइबिंग अरेंज मैरिज.
1: अरेंज मैरिज एंड आल्सो
0: लव मैरिज.
1: अगर
0: मीटिंग द फैमिली, मीटिंग द फैमिली,
1: चाय पे बुलाना, मतलब किसी को चाय पे बुलाना मतलब कि दे समथिंग इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. चलो चाय पे बुलाते हैं उसको.
0: इसीलिए मम्मी ने तुम्हें चाय
1: पे बुलाया है.
0: राइट,
1: सो देयर यू गो. ये गाना क्लासिक हम कैसे भूल सकते थे. यहाँ पे
0: एंजॉय करें,
2: गाइए हमारे गाने और भेजिए सारेगामा.com/openstage पर.

0: आप सुन रहे ट्रेंड मेकर्स और आज का थीम है चाय और कॉफी। वैसे चाय के गाने हमने काफी सुन लिए, सो कॉफी के थोड़े बहुत गाने आपको अब सुना रहे हैं हम। एंड ये जो लास्ट सॉन्ग है मतलब हमारे कल्टी मारने का टाइम आ गया है।
1: या ये जो गाना है कॉफी के ऊपर ही है और वन ऑफ द मोस्ट लव्ड सॉन्ग है ये।
0: मेरे को बहुत पसंद है ये गाना। अभिषेक बच्चन के ऊपर आई थिंक फीचर है ये गाना।
1: ओके
0: एंड वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग एक्चुअली।
1: तो इससे यार रियलाइजेशन हुई कि मुझे लगता है कि कॉफी के ऊपर ना और गाने बनने चाहिए बॉलीवुड में या एज इन की हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में। कम गाने हैं कॉफी के ऊपर, चाय के ऊपर भी अब नहीं बन रहे हैं। जो हमने गाने सुने ये बेसिकली कुछ एल्बम के गाने थे, कुछ पुराने गाने थे, लेकिन करंटली अभी चाय कॉफी को लेके नहीं गाने बन रहे जो बनने चाहिए।
0: क्योंकि मेरे को लग रहा है एक जमाने में ऐसा होता था कि चाय मतलब आई थिंक
1: इट्स अ फीलिंग।
0: चाय इज अ डिफरेंट फीलिंग। चाय इज अ फीलिंग वेयर यू लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन यू आस्क आउट समवन You always ask out for coffee.
1: Yeah, yeah.
0: आप चाय के लिए नहीं पूछते हो।
1: चाय होती है फ्रेंड्स के बीच में मुझे लगता है, कॉफी होती है लवर्स के बीच में।
0: हो सकता है ये भी।
1: जो हमने देखा है अभी तक, जो हमने सुना है अभी तक, जो स्लैंग्स है अभी तक।
0: But if you find someone who loves chai like you do, then that is match made in heaven.
1: वो बाद में होता है ना, कॉफी पे ले जाते हो और पूछते हो, are you a chai person or coffee person? वो बाद की बात होती है। बट देन चाय इज अ कंफर्ट आई गेस।
0: बट इफ दे आर चाय लाते पर्सन देन प्लीज लीव द रूम एएसएपी। नहीं जस्ट किडिंग है।
1: एनीवे गाइस थैंक यू सो मच आज हमें ज्वाइन करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। इसी नोट पे अभी हम आपको कहते हैं टाटा बाय बाय।
0: हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर इवनिंग। आज का ट्यूसडे वाला दिन, कल मिलेंगे अब वेडनेसडे 4 बजे से 7 बजे तक only on the drive show with Sandy and Rusbe. Hopefully कल हम थोड़ी जल्दी शुरू कर ले। बट या स्टे ट्यून्ड।

Happy Hour on Hum.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Dutch Wilco New Zealand Boat Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. Auckland Showgrounds, May 14 to 17. Tickets at boatshow.co.nz. We gotta go to the boat show. Home. Time check.
1: To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic. Good evening to you with the latest at 8. I'm Jeff Bryan. Judith Collins is officially calling time on more than two decades in the halls of power. The National MP has made her valedictory speech at Parliament, reflecting on her 24 years there. The last passengers and crew to leave the hantavirus-struck cruise ship, including a New Zealander, have landed in the Netherlands, where they're being quarantined. Two planes took around 28 people there from the Spanish island of Tenerife. Police are issuing warnings over dating apps after two serious assaults in Queen's Park, Invercargill. The victims were lured there late at night. One person is in critical care. The other has serious injuries. In sport, rugby league with Machinery House, four players return for the Warriors for this Sunday's Magic Round clash against the Broncos in Brisbane. Among them, Mitch Barnett at prop. Playmaker Luke Metcalf is not listed in the squad. And just who will captain the All Blacks under Dave Rennie? The All Blacks management has been inviting sporting legends to discuss leadership. Rennie has sought a range of opinions, mainly but not totally, from rugby. Kiwi NBA star Stephen Adams has also contributed his thoughts.
2: Sports News.
3: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
4: World's best. Hamari good brands bhi hai. Hum.
3: Night Cafe on Hum. Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
5: Good evening and welcome everyone. मैं क्रिश आ गया हूँ आपका साथ देने के लिए only on हम playing Bollywood's biggest hits और रात 12 तक हमारा साथ देगा रहेगा और मैं आपका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ क्योंकि आपके लिए एक से बढ़कर एक गाने लेकर आए हैं अलग अलग इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स लेकर आए हैं आज ट्यूजडे 12th मई और दिस वंडरफुल म्यूजिकल जर्नी आज हमारे साथ होगा और इनफैक्ट हफ्ते भर अंटिल थर्सडे मैं आपका साथ दूंगा 8 to midnight only on Night Cafe. फिलहाल आज ट्यूजडे है द मोस्ट अवेटेड सेगमेंट हमारा होता है The Coke Studio Reloaded, जो आपके लिए हम शुरू करने जा रहे हैं सुनते रहो हम मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ
3: ये है Coke Studio Reloaded on Hum.
5: All right, welcome everyone. Coke Studio Reloaded में आपका स्वागत है जहाँ पर Coke Studio भारत और Coke Studio पाकिस्तान के गाने मैं लेकर आता हूँ एक से बढ़कर एक प्यारे गाने हमारे साथ होते हैं और Coke Studio पर इन्फॉर्मेशन भी लेकर आऊँगा क्यों ये सॉन्ग्स बहुत स्पेशल है आज ये बताऊँगा फेमस सॉन्ग्स भारत Coke Studio के मैं बताऊँगा और क्यों ये पॉपुलर बने और सिंपल वे टू अंडरस्टैंड Coke Studio सॉन्ग्स इस पर भी मैं जानकारी आपको आज दूंगा फिलहाल सुनाते हैं आपको कुछ प्यारे Coke Studio सॉन्ग्स और फिर दो गाने के बाद मुलाकात होती है और भी वंडरफुल जानकारी के साथ मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ एंड वंस अगेन वेलकम टू Coke Studio Reloaded.

यू लिसनिंग टू कोक स्टूडियो रिलोडेड और मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ, एक से बढ़कर एक कोक स्टूडियो सॉन्ग्स मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ और जानकारी भी लेकर आ रहा हूँ। कोक स्टूडियो एक रिकॉर्डेड लाइव म्यूजिक फॉर्मेट होता है जो ग्लोबली जाना जाता है बाय द कोक स्टूडियो फ्रेंचाइज। इंडिया में इट हैज़ अपीयर्ड एज कोक स्टूडियो इंडिया MTV ईरा में और लेटर बिकेम कोक स्टूडियो भारत, और आर्टिस्ट यहाँ पर लाइव स्टाइल कोलेबोरेशन करते हैं और परफॉर्मेंस दिखाते हैं और टिपिकल बॉलीवुड प्लेबैक सॉन्ग्स नहीं होता है इसमें। और इसको क्या स्पेशल बनाता है, द फोकस इज ऑन फ्यूजन म्यूजिक जिसमें फोक और मॉडर्न बीट्स होते हैं, क्लासिकल भी इसमें शामिल किया जाता है और रियल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल होता है, लाइव म्यूजिशियंस होते हैं इन वन सेशन और सॉन्ग्स आर ऑफन रीइंटरप्रिटेशंस ओरिजिनल कंपोजिशंस होता है, और इसका एम्फेसिस खासतौर पर होता है रीजनल लैंग्वेजेस या कल्चरल साउंड्स पर, तब जाकर इतना खूबसूरत ये साउंड बनता है जो हम आपके लिए लेकर आते हैं ऑन ट्यूजडे नाइट्स 8 to 9 के बीच। एक और गाना सुनाते हैं, अरमान मलिक ने इस गाने को गाया है, मेमू अगामू, ये आप सुने कुक स्टूडियो भारत से हमने लिया है आपके लिए। एंजॉय दिस वन एवरीवन।

0: Cork Studio Reloaded on Hum. You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: वेलकम बैक एवरीवन. यू लिसनिंग टू कोक स्टूडियो रिलोडेड, जहां पर कोक स्टूडियो इंडिया और कोक स्टूडियो पाकिस्तान के गाने में पेश कर रहा हूं एक से एक बढ़कर. कुछ नए कोक स्टूडियो सॉन्ग्स को भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक एक करके आपके लिए, जो आप एंजॉय कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. फेमस सॉन्ग्स ऑफ कोक स्टूडियो भारत, उसमें रब्बा एक और गाना है, इमोशनल फ्यूजन ट्रैक है, बहुत बड़ा हिट था. कि बनू दुनिया दा पंजाबी फोक ड्यूएट है, ये भी बहुत मशहूर हुआ था. एक और गाना जो आप सुनते आए हैं हमारे प्रोग्राम में, आफरीन आफरीन, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मॉडर्न कवाली रेंडिशन ये रहा है, इसलिए ये बहुत ही फेमस हुआ है. नाउ व्हाई इट बिकेम सो पॉपुलर, इट फील्स मोर रॉ देन बॉलीवुड प्लेबैक म्यूजिक. काफ़ी फ्रेशनेस इसमें होता है. आर्टिस्ट फ्रॉम डिफरेंट जॉनर्स कोलैबोरेट करते हैं, अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशन होता है. और जब ये आर्टिस्ट साथ में आते हैं तो इनके जो क्रिएटिविटी और जो इनका कॉम्बिनेशन है वो और उभर के सामने आता है. और भी जानकारी मैं आपको दूंगा व्हाई इट बिकेम सो पॉपुलर और साथ में सिंपल वे टू अंडरस्टैंड कोक स्टूडियो सॉन्ग्स, इस पर जानकारी मैं आपको दूंगा बहुत ही जल्दी.

दर्द बहुत, कभी तू भी मिल, दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल, आज फिर आई ना तू, इंतजार रहा मुस्तकिल, तवील है गम की शाम, कहानी मोहब्बत की मुख्तसर, नजरसानी करो जरा।

0: Night Cafe on Hum.
1: Driving you home.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने.
5: वो भी आई लव यू वाला.
4: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ पे किसने बनाया. वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
5: अच्छा आप दिलजीत हो.
4: आए आए बताओगे यार.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Bedzaras Manukau and Pokekoi, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
6: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower. They call

0: Power Through Mess with Morning Fresh. The beat
1: of Bollywood. World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: Night Cafe on Hum. Legends, beats and soul.
3: Coke Studio Reloaded.
4: You're listening to number one, Hum playing Bollywood's biggest hits. Coke Studio Reloaded जारी है और ये final segment है. 9 तक ये चलता रहेगा आपके लिए. एक दो गाने और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ before we finish with tonight's segment of Coke Studio Reloaded. कुछ और बातें about Coke Studio songs. क्यों ये popular हुए हैं? क्योंकि वायरल सॉन्ग्स जैसे पसूरी और खलासी बहुत ग्लोबली स्प्रेड हो चुके थे, इसलिए इसका नाम और मशहूर हुआ. और स्ट्रॉन्ग फोकस इन गानों का होता है ऑन म्यूज़िक ऑथेंटिसिटी ओवर फिल्म स्टोरी टेलिंग, जो बॉलीवुड गाने में अक्सर पाए जाते हैं, लेकिन ऑथेंटिसिटी नहीं होता है जो कोक स्टूडियो सॉन्ग्स में होता है. नाउ सिंपल वे टू अंडरस्टैंड इट, ये एक लाइव जैम सेशन होता है बिटवीन इंडियाज बिगेस्ट सिंगर्स, जहाँ पर फोक म्यूज़िक मीट्स मॉडर्न बीट्स. और ये रिकॉर्ड होता है जस्ट लाइक अ परफॉर्मेंस, नॉट लाइक अ मूवी सॉन्ग जहां पर ट्रैक रिकॉर्डिंग होता है. यहां पर लाइव म्यूजिशियंस होते हैं, जैसे आई थिंक पुराने जमाने में जिस तरह से लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ गाने रिकॉर्ड किया जाता था, इम्प्रोवाइज वहीं पर होता था, तो ऐसा ही कुछ यहां पर कोक स्टूडियो का आइडिया है. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूं. कोक स्टूडियो रिलोडेड में आज के लिए बस इतना ही. सब्सक्राइब नाउ.

0: कहीं चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: From a change in geopolitics, to changes in the weather, to changes in the All Blacks, change is constant. And so is the news on this station, your source for everything changing. In association with RNZ News, change is in the air.
2: Don't put up with a damp, cold bathroom this winter. With a shower dome shower top, your bathroom will be warmer, drier, healthier. And now every shower dome comes with a lifetime guarantee. That'll give you the warm fuzzies. Showerdome.co.nz.
3: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Fly to Fiji from just $309 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations like Samoa from $305 one way, Tonga from $319, Tokyo from $635, Singapore from $699, and Hong Kong from $669 one way. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
4: Time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
5: Good evening to you with the latest at 9. I'm Jeff Bryan. Long-standing National MP Judith Collins has delivered her valedictory speech, saying Parliament is a different place to what it was when she started in 2002. Ms. Collins has held 18 portfolios and she's set to become President of the Law Commission. The Chief Executive of the accounting software company Xero, Sukhinder Singh Cassidy, says it does not tolerate sexual harassment or misconduct in the workplace. This comes amid allegations of misconduct and inappropriate behaviour from a number of women against company founder Sir Rod Dury. British Prime Minister Sir Keir Starmer is due to face a crunch cabinet meeting in the coming hours as he fights for his political survival. In Sport Rugby League with Machinery House, co-captain Mitchell Barnett heads a group of four who return to the Warriors squad for the NRL Magic Round encounter with the Broncos at Suncorp on Sunday. No place for Luke Metcalf. And in Auckland OFC Pro League football this evening at Eden Park, the North-South Kiwi Derby. Auckland FC had led South Island United 1-0 at halftime. Deep in the second half, Auckland leads 4-2.
4: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
6: Night Cafe on Hum.
4: Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
7: You are listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. रात 12 तक हमारा साथ रहेगा. और कोक स्टूडियो रिलोडेड के बाद न्यूज एंड स्पोर्ट्स आपने सुना और अभी शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूजिक, जहाँ पर आपके लिए एक के बाद एक प्यारे गाने हम लेकर आएंगे नॉन स्टॉप फॉर हाफ एन आवर. ये सेगमेंट मच अवेटेड सेगमेंट होता है क्योंकि बगैर कोई डिस्टर्बेंस के आप सुनते हैं आपके फेवरेट सॉन्ग्स, नए पुराने और कुछ बहुत नए, कुछ एकदम फ्रेश साउंड्स जो आप रिपीट पर सुनना चाहते हैं. तो कैसा रहेगा कि ये सारे गाने एक के बाद एक आपके लिए बजे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, हम बात नहीं ना करें इन बिटवीन. तो ऐसा ही कुछ सेगमेंट है आपके लिए, ये आप इन्जॉय करें. 30 मिनट्स के उस पार मिलते हैं विद मोर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत कुछ आपको आज बताना है नाइट कैफे में. बॉलीवुड न्यूज़ लेकर आए हैं, साथ ही में कुछ साइंस रिलेटेड जानकारी भी आपके साथ हम शेयर करेंगे. एन्जॉय.

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits. Events में क्या कुछ हो रहा है, charitable जो सामाजिक सूचनाएं हैं, community news में क्या कुछ हो रहा है, ये भी आपके लिए हम लेकर आते हैं. श्री वेंकटेश्वरा देवाष्टनम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा भोजन मेला की आयोजना की जा रही है, फूड कार्निवल. ये 17th मई को होने जा रहा है और 11 AM टू 4 PM ये होगा. और फीचर्स और अट्रैक्शंस की देखा जाए तो फ्री एंट्री है, फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स होगा, फ्री फूड बाय शिवानी रेस्टोरेंट एंड इडली सांबर यहाँ पर होगा, ज्वेलरी क्लोथिंग एंड अदर स्टॉल्स होंगे, हिना आर्टिस्ट फेस पेंटिंग, बाउंसी कासल भी रहेंगे. तो बच्चों के लिए भी खास प्रबंध यहाँ पर किया गया है. ये जो भोजन मेला रखा गया है टू सपोर्ट लॉर्ड वेंकटेश्वरस टेम्पल प्रोजेक्ट और 378 आरारिमू रोड रामारामा में ये होगा. और स्पॉन्सरशिप और स्टॉल्स के लिए आप शिवानी अरोरा को 2187-0012 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. इस थोड़ी देर में मैं आपको 147th गिरमिट रिमेम्बरेंस डे सेलिब्रेशन पर जानकारी दूंगा जो इसी सैटरडे 16th मई को होने जा रहा है मलयोला कम्युनिटी हॉल में. तो सुनते रहो क्योंकि कुछ गाने सुनाते हैं और जानकारी आपके साथ हम शेयर करेंगे. कृष का साथ है रात 12 तक नाइट कैफे में, मैं आपका साथ दूंगा.

0: बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: यू गेट मनी गेट कैश New Zealand's meanest word game is here. Think you're a Kiwi word wizard? Put it to the test with Turtle and be in to win $100 a day. Each day, guess a Kiwi word, saying or phrase. Every game equals one entry. And if you answer fast and avoid the hints, you'll score a bonus entry. With $7,000 up for grabs, the more days you play, the better your odds. So what are you waiting for? Jump in and have a crack. Only on Rover.
3: टाइगर बार एंड रेस्टोरेंट इन सोहो होटल माउंट रॉस्कल आए और इंजॉय करें इनका सोफिस्टिकेटेड डाइनिंग एक्सपीरियंस जहां पर आपको तरह तरह के फ्लेवर्स मिलेंगे क्रिएटिव एशियन फ्यूजन डिशेस से लेकर जेस्टी सी फूड तक साथ में रिफ्रेशिंग कॉकटेल्स सब कुछ एक बहुत ही एलिगेंट और स्टाइलिश अंदाज में ये ओपन है फॉर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर क्लोज टू ऑकलैंड सीबीडी एंड मिनट्स अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट टाइगर रेस्टोरेंट बार इन सोहो होटल स्टोरा रोड माउंट रॉस्कल विजिट टाइगर एट soho.co.nz
4: गाड़ी चलती रहे टेंशन बिल्कुल नहीं ऑकलैंड का ट्रस्टेड नाम RPS टायर्स कार SUV ट्रक या फोकलिफ्ट हर व्हीकल के लिए टॉप क्वालिटी टायर्स पार्ट्स एंड टूल्स डायरेक्ट इंपोर्टर्स ऑफ रोड वन एंड अदर क्वालिटी टायर्स विद अ सॉलिड प्राइस बीट गारंटी 4x26 ईस्ट तमाकी रोड पापा टोटोए प्लस 24 आवर मोबाइल सर्विस फॉर बल्क ऑर्डर्स कॉल रॉन ऑन 0221753941 और विजिट rpstyres.co.nz और देयर फेसबुक पेज RPS टायर्स ड्राइव सेफ ड्राइव स्मार्ट
0: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर
5: पूरे शहर पे कब्जा होगा राज होगा
0: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: हम
0: नाइट कैफे ऑन हम आपका मोमेंट क्रिश का मैजिक ओनली ऑन हम
6: You're listening to your favorite songs only on Hum playing Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hun. Lest we forget the sacrifices of our pioneer generation, ye suchna hai, ye message hai. Fiji Girmit Foundation dwara, Fiji Girmit Foundation New Zealand dwara, jo 147th Girmit Remembrance Day leke ra rahe hain, ek evening rahega of remembrance and recognition. Ye isi Saturday ko hone ja raha hai, 16th May ko, Maleola Community Center, 16 Wayokori Place, Mangri mein. 4:30 p.m. ये शुरू होगा 8:30 p.m. तक चलता रहेगा डोर्स ओपन एट 4 p.m. नेटवर्किंग टी और स्नैक्स रहेगा शार्प 4:30 फ्री एंट्री इवेंट है कैंडल कमेमोरेशन रहेगा आर्टिफैक्ट डिस्प्ले होगा सीनियर्स रिकॉग्निशन अवार्ड रहेगा कल्चरल परफॉर्मेंसेस लाइव सिंगिंग रोल प्ले क्विजेस स्पॉट प्राइजेस स्पीचेस और बहुत कुछ यहां पर रहेगा इफ यू वुड लाइक टू बी अ वॉलंटियर तो इनको आप जरूर मैसेज करें ईमेल करें fijigirmitnz@gmail.com पर मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं और रात 12 तक हमारा साथ रहेगा ऑन नाइट कैफे

0: ब्रो लुक एट यू, ब्लू लाइट स्क्रीन को इतना घूर रहा है जैसे वो तुझे प्रमोशन दे देगा। और ये कॉफी ल्यूक वार्म, और टेस्ट बिल्कुल हार्ट ब्रेक जैसा। प्लीज सर, तू क्यूबिकल के लिए नहीं बनाए, तू बीच के लिए बनाए, तू लाइफ को एंजॉय करने के लिए बनाए।
1: Listen to Hum on Rover every weekday at 8 AM, 11 AM, 1 PM and 5 PM. Hum denge ek special code word. You've got 60 minutes to enter it in the Rover app and go in the draw to win a trip to Fiji. So what are you waiting for? Download the Rover app now. Win a trip to Fiji. Only on Hum on Rover. T's and C's apply.
2: Hum. Time check. Brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
3: Good evening to you with the latest at 10. I'm Jeff Bryan. Judith Collins has delivered her valedictory speech to Parliament. After 24 years, she's standing down as an MP to become President of the Law Commission. All sides gave her a standing ovation. The last passengers and crew to leave the hantavirus-struck cruise ship, including a New Zealander, have landed in the Netherlands, where they're being quarantined. The New Zealander, along with five Australians, is expected to fly to Perth on an Australian government flight. More details are being released about the first ever concert at Christchurch's new stadium this Saturday. Country artist Kayleigh Bell will take the stage from 10 to 7, followed by 6:60 at 8 o'clock and Symphony from 9. In sports, some welcome returns for the Warriors for Sunday's Magic Round clash against the Broncos in Brisbane, including co-captain Mitch Barnett at prop. Not in the squad is playmaker Luke Metcalf. And football updates brought to you by Hisense in Auckland, OFC Pro League this evening at Eden Park. Auckland FC had led South Island United 1-0 at half-time, then went 2-1 down and came back to win it 5-2.
1: Sports News.
2: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
1: Playing Bollywood's biggest hits.
4: Put your head to Gandhi.
2: Hum. Night Cafe. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
5: बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, दैट्स व्हाट वी प्ले फॉर यू ऑन हम। और सिर्फ हिट और हॉट गाने लेकर आते हैं आपके लिए, और नाइट कैफे जारी है। वेलकम बैक एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका। आज 12th मई है और ट्यूसडे नाइट है, और वेंसडे और थर्सडे भी मैं आपका साथ दूंगा। प्यारे प्यारे गाने मैं एक एक करके आपके लिए लेकर आऊँगा, तो ऐसे में आप भी हमारा साथ देते रहे। इस घंटे पर चर्डल पर जानकारी देंगे, और बैक योर बैकयार्ड बीट्स जो लोकल आर्टिस्ट को सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके गाने आप सुनते हैं हम पर, इस पर भी कुछ बातें करेंगे। तो बहुत कुछ आपको बताने के लिए है, कुछ साइंस रिलेटेड और बॉलीवुड रिलेटेड न्यूज भी है जो आपके साथ शेयर करेंगे। बट फर्स्ट अप ऑन दिस आवर, लेट्स एंजॉय बैक टू बैक सॉन्ग्स जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं, आप ये एंजॉय करें। और जो फर्स्ट जो सेकंड सॉन्ग है अभी जो मैं पेश करूँगा इस सेगमेंट में, वो हमारे लोकल आर्टिस्ट ने गाया है, जग नजता, जसराज बसरा की आवाज़ में आप सुन पाएंगे बैक योर बैकयार्ड बीट्स के द्वारा। ये आपके लिए रहेगा the second song on this hour. Main Krish aapka saath de raha hu, enjoy.

लाओ, जिसको नाचना है ना चाहो, मेरे साथ शर्त लगाओ, ये करके दिखाओ।

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: Welcome back, everyone. You're listening to number one. I'm playing Bollywood's biggest hits. Hope you enjoyed the 30 minutes of non-stop music. एक के बाद एक आपके सारे फेवरेट गाने हमने पेश किए, नए पुराने, कुछ जो रिपीट पर बजता है आपके लिए, तो कुछ कम जो बजाया जाता है, वो सभी कुछ एक के बाद एक हम लाए थे. अभी चैडल कंपटीशन के बारे में तो आपने सुना होगा. रोवर पर ये उपलब्ध है आपके लिए कॉम्पिटिशन. रोवर यूजर्स प्लीज़ गेट ऑन टू रोवर टू पार्टिसिपेट. की विजिट अगर आप है, वर्ड विजिट है, तो आप अपने नॉलेज और जो अपना जो टैलेंट को यू कैन पुट इट टू टेस्ट और विन कैश विथ चर्डल. ईच डे आपको कोई कीवी वर्ड सेइंग या फ्रेज गेस करना होगा. यू हैव टू क्रैक इट और यू गॉट एन एंट्री इनटू द ड्रॉ. और $7,000 टू बी वन है. $100 अ डे जीतने का मौका रहेगा. जल्दी और शापा अगर आप होते हैं तो बेटर योर स्कोर्स आर, चांसेस ऑफ विनिंग भी बढ़ जाता है. एवरी डे यू प्ले यू इन द ड्रॉ टू विन $100. एक गेम इक्वल्स वन एंट्री. तो जल्दी से आपको जल्दी से रोवर डाउनलोड करना होगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है. अब तक तो काफ़ी लोगों के पास होना चाहिए. अगर नहीं है फॉर सम रीज़न तो आप ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि एक और कॉम्पिटिशन भी रोवर के ज़रिए आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जिसमें रिटर्न एयर फ्लाइट टू फीजी जीतने का मौका रहेगा. और इस पर जानकारी बहुत ही जल्दी मैं आपको दूंगा. फिलहाल क्रिश के साथ है, रात 12 तक हमारा साथ रहेगा.

0: month is NZ Music Month. Ye sirf music nahi, ye hai emotion, passion aur thoda sa desi swag. Presenting Back Your Backyard Beats, jahan har gali, har corner se nikalta hai ek naya superstar. Aaj ka local artist, kal ka global sensation. To kyun na aaj se hi unka saath de? Tune in karo aur apne Backyard Beats ko do full support. Back Your Backyard Beats, brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today and Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love.
1: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279499 और विजिट legalassociates.co.nz.
4: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
5: अच्छा,
4: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं.
5: मिसेस सिंह,
6: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
7: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहूहू. कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
8: नाइट कैफे, आपका मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम.
9: नाइट कैफे जारी और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. जितने भी हमारे प्यारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, ऑनलाइन लिसनर्स खासतौर पर, अगर आपका जन्मदिन है, जितने भी हमारे प्यारे लिसनर्स यहाँ पर ओकलैंड में है, न्यूजीलैंड में है, अगर आपका जन्मदिन है, वेरी हैप्पी बर्थडे आपको विश करना चाहेंगे. 12th मई है, इट्स नॉट टू लेट टू विश यू, क्योंकि अभी भी 12th मई ही जारी है, 12 तक हमारे पास पूरा मौका होगा. लेकिन बेटर लेट देन नेवर, आपके लिए हैप्पी बर्थडे विशेज हम भेज रहे हैं यहाँ से, बहुत सारा प्यार और मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू वंस Again, a very happy birthday, everyone. तो आगे बढ़ते हुए एक और प्यारा गाना आपके लिए लेकर आए हैं. इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि रितेश देशमुख ने शट डाउन किया 100 करोड़ बजट रूमर्स जो अभी ऑनलाइन सर्क्यूलेट हो रहा है, और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और क्या कहा अपने फिल्म राजा शिवाजी के बारे में, इस पर जानकारी मैं आपको बहुत ही जल्दी दूंगा. फिलहाल मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ रात 12 तक.

0: Beyonce on Hum.
1: Breakfast show with Vijay and Pooja.
2: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत यहाँ से ले जाएंगे।
3: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या मैसेज
4: कर रहा है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
3: मेरे को समझ भी नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
4: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
5: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
6: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
7: क्यों, क्या हुआ?
6: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
5: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
8: The Hutch Wilco New Zealand Boat Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. Auckland Showgrounds, May 14 to 17. Tickets at boatshow.co.nz.
0: You gotta go to the boat show. Hum. Time check. Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
9: Good evening to you with the latest at 10. I'm Jeff Bryan. Judith Collins has delivered her valedictory speech to Parliament. After 24 years, she's standing down as an MP to become President of the Law Commission. All sides gave her a standing ovation. The last passengers and crew to leave the hantavirus-struck cruise ship, including a New Zealander, have landed in the Netherlands, where they're being quarantined. The New Zealander, along with five Australians, is expected to fly to Perth on an Australian government flight. More details are being released about the first ever concert at Christchurch's new stadium this Saturday. Country artist Kaylee Bell will take the stage from 10 to 7, followed by 6:60 at 8 o'clock and Symphony from 9. In sports, some welcome returns for the Warriors for Sunday's Magic Round clash against the Broncos in Brisbane, including co-captain Mitch Barnett at prop. Not in the squad is playmaker Luke Metcalf. And football updates brought to you by Hisense in Auckland. OFC Pro League this evening at Eden Park. Auckland FC had led South Island United 1-0 at half-time, then went 2-1 down and came back to win it 5-2.
0: Sports News. Brought to you by

0: Murphy on Hum. Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
1: वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज आवर फाइनल आवर और आपका खास स्वागत करते हैं. आज 12th मई है, नाइट कैफे जारी है और एक के बाद एक आपके फेवरेट सॉन्ग्स हम लेकर आते हैं इस घंटे पर. इनफैक्ट हमारे पास समय रहेगा आपको बताने के लिए अबाउट रितेश देशमुख का स्टेटमेंट जो इन्होंने दिया है टू शट डाउन दोज जो अभी स्पेकुलेशंस फैला रहे हैं ऑनलाइन कि इनका फिल्म का बजट इज 100 करोड़. इस पर जानकारी मैं आपको दूंगा. साथ ही में फ्लाई अवे फ्रेंजी पर बातें होगी और बैक योर बैकयार्ड बीट्स पर भी बातें करेंगे. तो बहुत कुछ बताने के लिए इस घंटे पर आपके लिए. आप बस हमारा साथ देते रहे. रिटर्न एयर टिकट टू फीजी जीतने का मौका है आपके पास. इस पर जानकारी थोड़ी ही देर में. फिलहाल बैक टू बैक सॉन्ग्स आपको सुनाते हैं फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स.

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: All my people just be rolling up on this vibe.

0: Flight on Hum. हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: द बीट ऑफ बॉलीवुड
2: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: Night Flight on Hum.
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं। ये मैं नहीं, ये वो दोनों कहते थे और कहते क्या थे, करते थे और ऐसा करते थे जैसा ना किसी ने किया और ना शायद कोई कर पाएगा।

0: अब दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Playing Bollywood's biggest hits. Night Flight.

Unfiltered with Sandy and Rusby. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई

0: driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत तो
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Bollywood ka asli blockbuster.
5: Pure shehar pe kabza hoga, raj hoga.
4: Playing Bollywood's biggest hits. Huh. Night Flight.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएं।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब
3: क्या है अपनी पत्नी से रमन?
2: मेरे को समझ में नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 AM.
5: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
6: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
5: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
7: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड। Night Flight.

0: या बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी've got the spotlight for your brand. Call me Kashika on 021-769-755. Media Works. Media that works.
1: गाड़ी चलती रहे, टेंशन

0: मंथ इज एनजेड म्यूजिक मंथ. ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, ये है इमोशन, पैशन और थोड़ा सा देसी स्वैग. प्रेजेंटिंग बैक योर बैकयार्ड बीट्स, जहां हर गली हर कॉर्नर से निकलता है एक नया सुपरस्टार. आज का लोकल आर्टिस्ट कल का ग्लोबल सेंसेशन, तो क्यों ना आज से ही उनका साथ दे. ट्यून इन करो और अपने बैकयार्ड बीट्स को दो फुल सपोर्ट. बैक योर बैकयार्ड बीट्स ब्रॉट टू यू बाय PFSL, प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 इयर्स. गूगल PFSL टुडे एंड अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव.
1: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ. बोली, बस मेरा फोकस है.
2: हाँ. अच्छा
1: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं.
2: मिसेस सिंह.
3: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
4: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
5: South Auckland Motors' biggest sale ever is on now. Save thousands on new, demo and used cars. With big deals, big choices and big savings. On now, but ends Sunday at South Auckland Motors, Manukau, Botany and Pukekohe.
6: Reliance Ventilation System.
7: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
6: Moisture और ventilation का problem लगता है.
7: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
6: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
8: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
9: The Hutch Wilco New Zealand Boat Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. Auckland Showgrounds, May 14 to 17. Tickets at boatshow.co.nz.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या मैसेज कर रहा
3: है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ भी नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा
4: है। 6 to 10 AM।
5: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
6: South Auckland Motors' biggest sale ever is on now. Save thousands on new, demo and used cars. With big deals, big choices and big savings. On now but ends Sunday at South Auckland Motors, Monaco, Botany and Pukekohe.
7: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
8: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
9: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994 39 और विजिट legalassociates.co.nz।
10: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट, squirrel.co.nz।
0: हम टाइम चेक, हम न्यूज, ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड, चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक।
11: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. The country's economy is expected to remain under the pump. Westpac's latest overview points to a lift in inflation and a possible hike to mortgage rates. Chief Economist Kelly Eckold says New Zealand has been knocked off course.
12: Some of the biggest shocks that have probably happened in our history have happened because of things coming from outside our shores, and we are very much the collateral damage in this conflict.
11: Judith Collins is celebrating some of her greatest hits. After a 24-year career in politics, the former National Party leader is taking on a role at the Law Commission. She says she is incredibly proud of banning smoking in prisons.
13: I really did not have the support of the government. It was, as our campaign director told me at the time, a, quote, courageous decision.
11: A Dutch hospital has quarantined 12 staff members who failed to observe strict protocols when dealing with a hantavirus patient. They have to isolate for 6 weeks. Texas is suing Netflix. Attorney General Ken Paxton claims the streaming platform collects data, including of children, and uses addictive designs to keep people hooked. Netflix rejects the claims. In sport and to Rugby League with Machinery House, where Luke Metcalf's likely split from the Warriors has stunned the NRL world. The Warriors have given the halfback permission to look for a new club for next year onwards. NRL 360 host Bray Thanasta suspects Metcalf's unwillingness to play standoff may be why, via Sky Sport.
14: You're not putting the team first here and you're not willing to even give it a crack after we've put a lot of time, effort and money into you, then you're probably not the right man for the club.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Draw Skill.
5: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं Anne's Funeral Home and On-site Cremations.
15: सूचित किया जाता है कि स्वर्गीय रमेश चंद्रा की पत्नी यानी प्रेम कृष्णा और सरिता गाउंडर की मां नांदी फिजी की भूतपूर्व निवासी वन ट्री हिल की ईश्वरियम्मा चंद्रा की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार आज 1 बजे एन्स फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रोमेशंस 11 बोल्डवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप 48 स्टेलाटा कोर्ट रेनविक पार्क जा सकते हैं या 021-2382-412 पर संपर्क कर सकते हैं। स्वर्गीय रमेश चंद्रा की पत्नी यानी प्रेम कृष्णा और सरिता गाउंडर की मां नांदी फिजी की भूतपूर्व निवासी वन ट्री हिल की ईश्वरियम्मा चंद्रा की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार आज 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रमेशंस 11 बोल्ड आउट प्लेस वीरी में किया जाएगा। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप 48 स्टेलाटा कोर्ट रेनविक पार्क जा सकते हैं या 021-2382-412 पर संपर्क कर सकते हैं। बलवंत मिस्त्री अरविंद वल्लभ, मधुबेन मिस्त्री और जयाबेन मिस्त्री की मां यानी नावुआ सेंट्रल स्टोर के मालिक स्वर्गीय वनमाली भाई वल्लभ की पत्नी जसुबेन मिस्त्री की मृत्यु मिडलमोर अस्पताल में हो गई। अंतिम संस्कार शुक्रवार को 4 बजे एम्स फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रमेशंस 11 बोल्ड आउट प्लेस वीरी में किया जाएगा। बलवंत मिस्त्री अरविंद वल्लभ, मधुबेन मिस्त्री और जयाबेन मिस्त्री की मां यानी नावुआ सेंट्रल स्टोर के मालिक स्वर्गीय वनमाली भाई वल्लभ की पत्नी जसुबेन मिस्त्री की मृत्यु मिडलमोर अस्पताल में हो गई। अंतिम संस्कार शुक्रवार को 4 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रमेशंस 11 बोल्ड आउट प्लेस वीरी में किया जाएगा।
5: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
4: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800-462626.
15: 11.5 degrees temperature Auckland में अभी आप feel कर रहे हैं आज का high 18 overnight कम से कम 8 degrees रहेगा। मौसम की शुरुआत आज अच्छे मौसम के साथ होगी। शाम के वक्त कुछ बादल छाए रहेंगे। Sunset आज का 5:25 PM पर होगा।
0: Show with Vijay and Pooja.
16: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Breakfast catch up.
15: 5 मिनट हो रहे हैं 6 बजकर। नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। आज वेंसडे है, 18th of May। आज की ये सुबह आप सभी को बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो। आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग और आप सभी को भी अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज की सुबह की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपको वेलकम बैक।
15: ओह या, थैंक यू सो मच।
2: वो पता चल रहा है कि आज आपका वेलकम बैक डे है, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। आज फाइनली हम दोनों एक साथ आपके लिए इस सफर को लेकर आने वाले हैं ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। वैसे ब्रेकफास्ट कैचअप के साथ तो कर रहे हैं शुरुआत डेफिनेटली, लेकिन आज इसके साथ साथ आपके लिए और भी चीजें जो है ये हम लेकर आने वाले हैं।
15: बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में बातें जो हैं ये हम बारी बारी से करते रहेंगे। आज अगर देखें 18th of May हो चुका है, अब आज कल और परसों 3 ही दिन बाकी रह गए हैं हम फ्लाई अवे फ्रेंजी को खत्म होने में।
2: यस, आई हैव बीन रिमाइंडिंग यू गाइस सिंस मंडे कि दिस इज द फाइनल वीक, दिस इज द फाइनल वीक। सो ये आखिरी सप्ताह है जहाँ पर आप फ्लाई अवे फ्रेंजी में पार्ट ले सकते हैं और अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं बीइंग अ विनर एक रिटर्न या टिकट टू फिजी।
15: और भी कई चीजें हैं जिनके बारे में बारी बारी से डिटेल्स आज ऑन द शो हम आपको देते रहेंगे। थोड़ी देर में आज की हमारी सनी साइड अप स्टोरी ये आपके लिए हम लेकर आएंगे ऑन द ब्रेकफास्ट शो।

0: Sunny Side Up.
1: अभी 14 मिनट हो रहे हैं 6:00 और आज की कहानी जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी की कहानी है जहां पर एक ग्रेजुएशन जो है ये रिसेंटली हुआ था ऑफ अ पर्सन नेम्ड एलियस। तो जब ये अपने ग्रेजुएशन के लिए स्टेज पर जा रहे थे अपना डिप्लोमा रिसीव करने के लिए, फ्रंट रो में एक सीट खाली था जिस पर एक येलो रोज रखा हुआ था। एंड जैसे ही एलियास जो है ये पोडियम पर पहुंचे, उनका जो पूरा ग्रेजुएटिंग क्लास है ओवर 400 स्टूडेंट्स, दे ऑल स्टूड अप इन साइलेंस और अपने हाथों को अपने दिल पर रख लिया। एंड साथ ही में ये भी पता चला वहां पर ग्रेजुएशन के दौरान कि दीज 400 स्टूडेंट्स जो है ऑल चिप्ड इन यानी कॉन्ट्रीब्यूटेड सीक्रेटली टू पे ऑफ हिज फाइनल रिमेनिंग हाउस डेट, ताकि वो एकदम क्लीन स्लेट के साथ ग्रेजुएट हो सके। तो इनका जो होम लोन है उन 400 स्टूडेंट्स ने पे ऑफ कर दिया अपनी हेल्प से। फिर जब ये खबर सामने आई तो कुछ लोग सोचने लगे कि फ्रंट रो में एक सीट खाली जिस पर वो सीट उसकी माँ के लिए थी। उसकी माँ जो है 3-3 क्लीनिंग जॉब्स करती थी ताकि वो उसके ट्यूशन के लिए पैसे जो है ये इकट्ठा कर सके, फीस भर सके। लेकिन उनका ग्रेजुएशन पूरा होने से 6 महीने पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। एंड आउट ऑफ दैट रेस्पेक्ट फॉर द मम एंड द लाइफ दैट द सन एंड मम वेंट थ्रू, सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है उन्होंने खड़े होकर उसको सम्मान दिया और उसका होम लोन भरने में भी उनको हेल्प आउट किया।
2: दैट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग टू डू। बट आज का जो सनी साइड अप है ये थोड़ा इमोशनल भी है, बट इट एक्चुअली हेल्प्स यू लर्न अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। हमारे आसपास जो लोग स्पेशली होते हैं ना, कभी कभी उनकी लाइफ में भी बहुत सी चीजें चल रही होती है और जब हम एकजुट होकर उनकी हेल्प करते हैं then you would not understand कि हमने उनके लिए क्या किया है, but the person who receives that help उनको ही समझ में आता है ना।
1: बिल्कुल, ऐसी कहानियां हर दिन on the breakfast show हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो कहीं ना कहीं कोशिश ये होती है कि inspiration हमें मिले to do something good अपने लिए और औरों के लिए भी। अभी 17 मिनट हो रहे हैं 6:00, थोड़ी देर बाद ग्लोबल हेडलाइंस हम आपके लिए लेकर आएंगे।
3: The breakfast show with Vijay and Pooja.
4: May month is NZ Music Month. ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, ये है इमोशन, पैशन और थोड़ा सा देसी स्वैग। Presenting Back Your Backyard Beats, जहां हर गली हर कॉर्नर से निकलता है एक नया सुपरस्टार। आज का लोकल आर्टिस्ट कल का ग्लोबल सेंसेशन, तो क्यों ना आज से ही उनका साथ दे। ट्यून इन करो और अपने बैकयार्ड बीट्स को दो फुल सपोर्ट। Back Your Backyard Beats, brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today and Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love.
5: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
6: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
5: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
6: Available at selected branches. T's and C's apply.
3: Auckland, तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए. Once upon a time with the legendary Rahat Fateh Ali Khan live in concert along with Shah Zaman Ali Khan. Saturday, 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz. For sponsorships, call Karam Hundal on 027-514-6477.
7: Schools use fiber to study in virtual reality, whereas Kim used it to study her family's genealogy to discover she has a long-lost relative in Taupo who streams true crime podcasts about missing people that often begin with an ad from Chorus saying New Zealand runs on fiber.
8: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
9: The beat of Bollywood.
0: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
4: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
6: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. Global Headlines.
1: आज सुबह ग्लोबल हेडलाइंस में यूएस ईरान वो का खर्चा अब तक $29 बिलियन पहुंच गया है, जो पेंटागन के पहले अंदाजे से काफी ज्यादा है। और अब ट्रंप कॉम्बैट ऑपरेशंस दोबारा शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के काउंटर प्रपोजल को रिजेक्ट करते हुए ट्रंप ने कहा कि सीज फायर लाइफ सपोर्ट पर है। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर देगा। ग्लोबल ऑयल मार्केट में मची तबाही के बीच सऊदी ऑयल जायंट ने वार्न किया है कि रास्ता ना खुलने के हालात नहीं सुधरेंगे, जिसके लिए यूएस ने इमरजेंसी रिजर्व से 53.3 मिलियन बैरल्स तेल रिलीज किए हैं। भारत में जनवरी से मार्च 2026 के बीच नौजवानों में बेरोजगारी काफी बढ़ गई है और फाइनेंशियल ईयर के आखिरी महीनों में ये ग्राफ लगातार ऊपर गया है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक सर्वे में अप्रैल 2025 में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 13.8% था, जो बीच में थोड़ा कम होने के बाद मार्च 2026 तक फिर से बढ़कर 15.2% पहुंच गया है। फिजी में 28 ईयर ओल्ड एक ऑस्ट्रेलियन फ्लाइट अटेंडेंट की मौत की इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने पूरी कर ली है और अब ये फाइल एडवाइस के लिए डीपीपी ऑफिस भेज दी गई है। पीजी विलेज की एक रिपोर्ट के अनुसार इन्वेस्टिगेशंस में पता चला है कि मार्च 28 को मार्टिनटार में एक टैक्सी दूसरी गाड़ी से टकराकर रोड से बाहर हो गई थी, जिसकी वजह से रोड साइड पर खड़ी इस एयर होस्टेस को चोट लगी थी। पुलिस अब आगे की कार्रवाई से पहले डीपीपी के ऑफिस से सलाह का इंतजार करेगी। आईपीएल के एक मैच में आज सुबह गुजरात टाइटंस की जीत सनराइज हैदराबाद के खिलाफ हुई। गुजरात टाइटंस ने अपने इनिंग्स में 5 खिलाड़ी खोकर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद के सभी खिलाड़ी 14.5 ओवर्स में 86 रन पर ही बाहर हो गए। कल सुबह एक मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलेगा। ये रहे सुबह के ग्लोबल हेडलाइंस।
9: सीधा अंदर आऊं
10: मैं लाऊं अपना ए गेम।
4: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: अरिजीत सिंह ने हक की आवाजें रही आपके लिए ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, जिसके साथ अब 29 मिनट रह गए हैं 7 बजने में। और 16 इयर्स तक इंडिया में रहने के बाद एक एक्ट्रेस जो है हैज नाउ डिसाइडेड टू लीव इंडिया।
1: अच्छा, ये कौन है?
0: इनका नाम है मंदना करीमी। अभी हाल ही में इंस्टा पर जाकर उन्होंने अपना जो डिसीशन है ये शेयर किया। और फिर किसी ने पूछा, हैव यू लेफ्ट मुंबई फॉर गुड, डू यू मिस द सिटी, इस पर इंक्वायरी करते हुए उन्होंने एयरपोर्ट से एक वीडियो जो है ये अपना बनाकर अपलोड किया और कहा कि आई कुड नेवर इमेजिन और बिलीव दैट आई कुड से बट गुड बाय इंडिया। एंड उन्होंने कहा कि ये काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि 16 सालों तक ये इंडिया में रही हैं एंड शी इज़ फाइनली लिविंग बिहाइंड हर सेकेंड होम और एक नए देश में जा रही हैं, सब कुछ नया शुरू करने जा रही हैं, ये उनका कहना है। उन्होंने पहले कंफर्म किया था कि वो प्लान कर रही थी इंडिया छोड़ने का ड्यू टू सिक्योरिटी कॉन्सर्न्स। अभी उसके पीछे और क्या कहानी है ये तो पता नहीं, लेकिन आई थिंक अ कपल ऑफ मंथ्स बैक उन्होंने ये कहा था कि शी विल नॉट गो बैक टू ईरान, क्योंकि लगभग 10 साल पहले ही उनको वहाँ पर बैन कर दिया गया था।
1: तो आप कहाँ जाएंगी?
0: अभी पता नहीं कि वो कहाँ गई हैं या कहाँ जा रही हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में उतने डिटेल्स जो हैं ये रिवील नहीं किए गए हैं। बट इतना है कि ना, वो पली बड़ी हैं ईरान में एंड देन मूव टू इंडिया इन अर्ली 20s अपने मॉडलिंग एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए एंड देन शी स्टेप्ड इनटू बॉलीवुड। आई थिंक भाग जोनी के साथ उन्होंने अपना जो करियर है बॉलीवुड का ये शुरू किया था। एंड देन बिग बॉस 9th सीजन, उसमें भी ये थी, शी वॉज द सेकेंड रन अप इन द 2015 सीजन। और उसके बाद लॉकअप 2022 में भी ये नजर आई थी। लास्ट इनकी जो फिल्म आई थी वॉज अराउंड 3 years अगो नेटफ्लिक्स पर, अनिल कपूर और हर्षवर्धन कपूर के साथ जो फिल्म थी थार, उसमें इन्होंने काम किया था।
1: तो लेट्स सी अब आगे क्या कुछ अपडेट जो है इस मामले में आता है एंड इफ शी इज फाइनली मूव्ड ऑन। लेट्स विश हर ऑल द वेरी बेस्ट, व्हाटएवर रीजंस की वजह से इन्होंने ये फैसला किया है, इट्स डेफिनेटली अ चॉइस दैट शी हैड टू मेक एंड शी मेड इट। दूसरी ओर चलिए आपके लिए और एक अपडेट जो है हम लेकर आए हैं एंड दिस इज अबाउट कृति सेनन। इनका ये कहना है कि कृति सेनन जिन्होंने कहा कि जब इन्होंने मिमी के लिए, फिल्म मिमी के लिए इन्होंने नेशनल अवार्ड जो है ये जीता था, दैट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ हर करियर, लेकिन इसकी वजह से कुछ लोगों का वहम जो है ये भी टूटा था। नाउ शी हैज नॉट रिवील्ड कि ये कुछ लोग जिनको ये इंडिकेट कर रही वो कौन है, शी हैज नॉट डिस आई मीन शी हैज डिसाइडेड नॉट टू रिवील इट, लेकिन इनका ये कहना कि आई फेल्ट लाइक सम नोशंस people heard about me, it was broken and they were not ready to see me like that. So I think the audience was too in that situation jahan par unhone shayad unko thoda underestimate kiya ho in certain ways. So over the last 2 years Kriti Sanon ne bahut se different projects mein kaam kiya hai and she says she's absolutely proud of it, jisme teri baaton mein aisa ulja jiya film crew do patti tere ishq mein jaise kuch film mein shamil hai and now she's all geared up for her next movie Cocktail 2.
0: तो लेट्स सी कब तक ये फिल्म आती है और इसके बारे में और डिटेल्स जैसे हमारे हाथ लगेंगे ये हम आपके लिए हम पर जरूर लेकर आएंगे।
2: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
3: डोंट माइंड, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है।
4: ब्रो लुक एट यू, ब्लू लाइट स्क्रीन को इतना घूर रहा है जैसे वो तुझे प्रमोशन दे देगा, और ये कॉफी ल्यूक वार्म, टेस्ट बिल्कुल हार्ट ब्रेक जैसा। प्लीज सर, तो क्यूबिकल के लिए नहीं बनाए, तो बीच के लिए बनाए, तो लाइफ को एंजॉय करने के लिए बनाए।
5: लिसन टू हम ऑन रोवा एवरी वीकडे एट 8 AM, 11 AM, 1 PM एंड 5 PM। हम देंगे एक स्पेशल कोड वर्ड, यू गॉट 60 मिनट्स टू एंटर इट इन द रोवा ऐप एंड गो इन द ड्रॉ टू विन अ ट्रिप टू फिजी। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, डाउनलोड द रोवा ऐप नाउ, विन अ ट्रिप टू फिजी ओनली ऑन हम ऑन रोवा। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई। accurate traffic.
4: Club Rebel.
6: Fine today, but quite cloudy, a high of 19 degrees. And on the southern motorway, we're pretty much A-OK, but quite heavy around Drury. Got a crash blocking the right lane just after Drury between there and Papakura. Yeah, very heavy section. Fine though, all the way in past there. Drive time's not an issue. Northwestern 26 in from Massey, slow there, and from Grey Lynn. Northern 22 from Constellation, patchy from Greville.
4: Club Rebel. Shop and be in the draw to win ultimate VIP sports experiences. T's and C's apply.
5: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Fly to Fiji from just $309 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations like Samoa from $305 one way, Tonga from $319, Tokyo from $635, Singapore from $699, and Hong Kong from $669 one way. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
7: Wo Indelible Homes wali kahani sunao na.
8: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
9: And award goes to Indelible Homes.
8: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite master builder.
10: Kahani of Indelible Homes.
11: The Hutch Wilco New Zealand Boat Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. Auckland Showgrounds, May 14 to 17. Tickets at boatshow.co.nz.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: 22 मिनट रह गए हैं अभी 7 बजने में. आज 13th ऑफ मे आपका बर्थडे है, शादी की सालगिरह है, कुछ भी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, डू लेट अस नो. 7:30 बजे के बाद आज हम आपको विश करने वाले हैं, तो ज़रूरी है कि आपके मैसेजेस जो हैं ये समय से पहले हमें मिल जाएं.
3: 5599 पर अपना मैसेज आप हमारे पास भेज सकते हैं और अगले घंटे जबकि हम आपको विश करेंगे तो तैयार भी रहिएगा अपने विशेष जो है अपनों तक पहुंचाने के लिए. फिलहाल चलिए बारी है कि अब इस घंटे सफर में आपके लिए कुछ और भी दिलचस्प जानकारियां जो ये हम जरूर लेकर आए दे. सो मेनी थिंग्स जो हमारे आसपास होती रहती है इनके बारे में हम आपसे बातें करते रहते हैं, पर कमाल की बात ये है, आई गॉट टू नो अबाउट दिस यस्टरडे एंड आई वाज लाइक कि रियली मतलब ये पॉसिबल है क्या, ऐसा होता है क्या, बट इट एक्चुअली इज हैपनिंग. एंड व्हाट इज दिस, स्विट्जरलैंड की एक खबर है. स्विट्जरलैंड के बारे में बताया गया है कि वहां पर कुछ ऐसे सिनेमाज हैं स्विट्जरलैंड में जिन्होंने वहां के सिनेमाज के वॉशरूम में जो फ्लो है वहां पर भी स्क्रीन लगाई हुई है ताकि जो मूवी आप देखने गए हैं और अगर आप इन बिटवीन वॉचिंग दैट मूवी यू टेक अ टॉयलेट ब्रेक, तो व्हाइल यू आर इन द टॉयलेट यू कैन वॉच द मूवी एज वेल, वो कंटिन्यू होगा. इट इज डिजाइन सो व्यूअर्स डोंट मिस द की सीन्स, और जो फिल्म है वो कंटिन्यू होता रहे इन रियल टाइम व्हाइल यू आर अवे फ्रॉम योर सीट. वैसे इसके बारे में बताया जा रहा है कि अ लॉट ऑफ पीपल आफ्टर इट केम ऑनलाइन कि ऐसा कुछ स्विट्जरलैंड के सिनेमाज में है, अ लॉट ऑफ पीपल वेंट अहेड एंड सेड कि यार हमारी कंट्री में भी होना चाहिए ऐसा.
2: आई डोंट नो
3: व्हाई यू हैव योर डाउट्स अबाउट इट.
2: नहीं, आई डोंट हैव डाउट्स, इट्स गुड ना कि अब लोग फिल्म देखने जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, तो दे डू नॉट वांट टू मिस. लेकिन नेचर कॉल्स तो आप उस पर कंट्रोल भी नहीं कर सकते,
3: वो कंट्रोल भी नहीं होता और वो किसी को बताकर भी नहीं आता, वो अलग बात है.
2: हाँ, तो
3: आई थिंक शायद फ्लोर से ज्यादा बेहतर आइडिया होता एट द बैक ऑफ द डोर, यू नो इफ समवन इज यूजिंग द वॉशरूम, तो जिस भी क्यूबिकल में वो है अपने वहां पे जो दरवाजा है उसके पीछे, दैट वुड हैव बीन लाइक अ बेटर आइडिया.
2: I don't know, शायद उन्होंने कुछ रिसर्च किया हो जिसमें ये पाया हो कि लोग ज्यादा
3: देखते हैं,
2: फ्लो की ओर ज्यादा देखते हैं,
3: वॉशरूम इस्तेमाल करते समय.
2: could be एनीथिंग इज पॉसिबल. बट गुड मॉर्निंग के भी कुछ मैसेजेस आए हैं. सबसे पहले राम राम, जय सिया राम, हैप्पी वेंसडे एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे. मिस्टर माटा माटा आपको अ वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच आपके टाइम और मैसेज के लिए.
3: मैंडी की ओर से भी अ वेरी गुड मॉर्निंग मैसेज आया है, थैंक यू सो मच मैंडी, विशिंग यू अ वंडरफुल डे अहेड, थैंक यू आपके साथ के लिए.
2: गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा, हैव अ वंडरफुल डे टुडे. रोहिणी अपाहट से थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, आपको भी इस दिन इस सुबह की बहुत सारी शुभकामनाएं.
3: और बॉबी मान जी की ओर से भी आज का गुड मॉर्निंग मैसेज हमारे पास आ चुका है, उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग पूजा एंड विजय, हैव एन ऑसम डे, गणेशा'स ब्लेसिंग्स, थैंक यू सो मच बॉबी जी आपके साथ के लिए, आपके मैसेज के लिए. Have a wonderful day ahead.
2: जय श्री राम विजय और पूजा, हैव अ ग्रेट डे. परमा महाराज जी की ओर से मैसेज आए हैं, आपको भी परमा जी आपके समय के लिए और आपके मैसेज के लिए इस दिन के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chup ho ja, papi ho. Chup ho ja.
2: You get money, get cash.
3: New Zealand's meanest word game is here. Think you're a Kiwi word wizard? Put it to the test with Turtle and be in to win $100 a day. Each day, guess a Kiwi word, saying or phrase. Every game equals one entry. And if you answer fast and avoid the hints, you'll score a bonus entry. With $7,000 up for grabs, the more days you play, the better your odds. So what are you waiting for? Jump in and have a crack. Only on Rover. Accurate traffic.
4: FlixEven, you're skipping a bag.
5: A high of 19, fine and cloudy today. Southern motorway, a crash blocking the right lane between Drury and Papakura. Heavy joining at Drury, slow Papakura to Takanini and Monaco to Mount Wellington. Half an hour Monaco to the city, 52 minutes from Drury. If you're heading to the airport, bit heavy on George Bolt heading to the terminal. Northwestern 26 in from Massey, slow patches on and off. Northern 25 from Constellation, slow from Greville.
4: Visit flixeven.co.nz for stockists, TCs and collection areas.
6: Trade Depot brings you MyDia, the world's number one air conditioning company. Introducing the MyDia Inverter Heat Pump. It looks elegant and sophisticated, features innovative smart technology, and superb energy efficiency. Shop now for your MyDia Inverter Heat Pump, including installation anywhere in New Zealand, from only $1,299 with Trade Depot. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
7: At IKEA, turn clutter into calm. With our wide range of storage solutions. Because behind every mess, every avalanche of toys is a new possibility. Shop in store or at IKEA.co.nz.
8: IKEA.
9: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Breakfast Catch Up. Throwback.
10: ग्यारह मिनट रह गए हैं अभी सात बजने में 11 मिनटों के बाद न्यूज इन स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए होगा इस प्रोग्राम में वैसे गुड मॉर्निंग टू ऑल राज आरवी प्रकाश ट्रांसपोर्ट से आपको राज थैंक यू सो मच मैसेज के लिए एंड यू टू हैव अ वंडरफुल डे
11: और इनके अलावा एक और एक मैसेज आया है फ्रॉम विमलेशन प्रिया गुड मॉर्निंग विजय जी पूजा जी विशिंग यू वंडरफुल डे टुडे जय श्री गणेश थैंक यू सो मच आप दोनों के साथ के लिए
10: और कई अन्य स्टोरीज जो हैं ये भी हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं इस प्रोग्राम में और एक महिला हैं इनकी उम्र 28 ईयर्स हैं और इनकी स्टोरी अभी काफ़ी चर्चे में आ रही है क्योंकि इनको अरेस्ट किया गया एट अ स्कूल कैंपस और इन पर चार्जेस लगाए गए विद एंडेंजरिंग द वेलफेयर ऑफ अ चाइल्ड ट्रेस पासिंग क्रिमिनल इम्पर्सनेशन इन सभी के चार्जेस जो है ये इन पर लगाए गए क्योंकि वो एनरोल हुई थी इस कैंपस में एज अ 16 ईयर ओल्ड गर्ल अंडर अ फेक नेम
11: ओके
10: पिछले महीने ये जो 28 ईयर ओल्ड लेडी है वेस्टचेस्टर स्क्वायर एकेडमी जो है वहाँ पर ये इन्होंने अपना एनरोलमेंट करवाया एज शमारा रशाद जिनका जन्म 2010 में हुआ था who had just moved to New York from Ohio अपनी बहन के साथ दो हफ्तों तक उन्होंने अब क्लासेस भी अटेंड किए और उनको स्कूल आईडी जो है ये भी दे दिया गया विद अ फेक नेम एंड एज लेकिन बाद में किसी ने इनके सोशल मीडिया प्रोफाइल से इनको डिस्कवर कर लिया
11: अच्छा
10: वहां से पता चल गया कि भाई ये कोई 16 ईयर ओल्ड नहीं है हाँ। लेकिन 28 ईयर्स इनकी उम्र है हालांकि इन पर ये चार्जेस जो हैं ये लगाए गए हैं और इन्होंने इम्पर्सनेट किया 16 साल की एक लड़की को जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि ये जो महिला है शी नेवर बॉदर्ड डिलीटिंग हर सोशल मीडिया पोस्ट और इवन मेक देम प्राइवेट एंड दे इवेंचुअली रीच जो एकेडमी है और उनके अधिकारियों तक ये बात पहुंची और तब जाकर इनको अरेस्ट किया गया
11: आई वंडर कि जब इतना ये गलत कर ही रही थी और इनको पता है और हो सकता है ये चीज, तो इनको ये भी पता है कि सोशल मीडिया ऐसे कितनी आसानी से लोग जो है ये ट्रैक हो जाते हैं. So I wonder why she didn't do that. Like, what was the reason that इन्होंने फैसला किया कि ये नहीं उसे प्राइवेट रखेंगी या नहीं छिपाएंगी या उसमें कुछ चेंजेस नहीं करेंगी टू लुक लाइक अ 16-year-old.
10: शायद उन्होंने रियलाइज नहीं किया हो. पुलिस का कहना है कि वो शायद किसी तरह के बेनिफिट स्कीम का फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डिटेल्स अभी नहीं दिए गए हैं. उन पर चार्जेस जो है ये लगा दिए गए हैं एंड शी इज एक्सपेक्टेड बैक इन कोर्ट नेक्स्ट मंथ, जहां पर जो अदालती कार्रवाई है इनके खिलाफ शुरू होनी है. तब जाकर और खबरें जो हैं डेफिनेटली सामने आएंगी. बट भाई आई वंडर 16-year-old बनकर वहाँ पर जाने के
11: 20-year-old कैसे खुद को 16-year-old प्रेजेंट कर सकते हैं?
10: 20 नहीं भाई, 28-year-old.
11: और 28-year-old.
10: हाँ, और पढ़ना ही था अगर.
11: हाँ.
10: तो आप यू नो ऐसा नहीं है कि उम्र की वजह से आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलता, आप किसी भी टाइम पर पढ़ाई कर सकते हैं.
11: पर बोला ना कि कुछ फ्री स्कीम वगैरह का फायदा उठा रही थी, प्रोबेबली उस एज में एज ग्रुप के लोगों को स्कीम मिलता. बट आई डोंट नो मैन, व्हाई डू पीपल डू दीस थिंग्स, क्यों ऐसा करते हैं. एंड एनीवेज है ऐसे लोग बहुत से हैं, तो डेफिनेटली ऐसी खबरें भी आती रहेंगी और आपके लिए अपडेट्स भी इन पर हम लेकर आते रहेंगे. फिलहाल समय की ओर देखें तो 8 मिनट बाकी हैं समय हमारे स्टूडियोज में 7 बजने में. ठीक 7 पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए रहेगा.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 11.3 डिग्री सेंटीग्रेड है अभी आज का हाई, 18 ओवरनाइट कम से कम 8 डिग्रीज रहेगा और आज जनरली मौसम ठीक ठाक रहेगा। शाम के वक्त कुछ बादल छाए रहेंगे। सनसेट आज का 5:25 PM पर होने को है।
0: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा ब्रॉट टू यू बाय

0: underscore.nz.
1: I'm playing Bollywood's biggest hits for aapke liye lekar aa rahe hain the breakfast show with Vijay and Pooja and on hum morning madness jab ki ab hum shuru karne ja rahe hain aapke sath. To chaliye is ghante humne kaha tha na ki aapko a very happy birthday bhi hum wish karenge. Ummeed hai ki aapne hamare paas apne apne jo birthday greetings hai ye send kar diye hain because this is the hour jahan par hum aapko wish karne wale hain.
2: तो अगर मैसेजेस आपने अभी तक नहीं भेजे हैं समय से पहले उसे आप हमारे पास भेज दें ताकि हम आपको विश कर सकें और आपके घर आपकी खुशियों में हम आ सकें. उसके अलावा आज सेलिब्रिटी अलार्म में एक और आवाज़ होगी.
1: बिल्कुल, और पहचानने की कोशिश आपको करनी होगी. तो लेट्स सी इफ यू कैन गेट दैट डन क्योंकि ये आपके लिए इसी घंटे हम लेकर आने वाले हैं. नाउ गेटिंग बैक टू मॉर्निंग मैडनेस दिस आवर जहां पर और भी तरह की चीजें आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं. तो वहीं पर रिमेंबर कि कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो है ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे. एंड बाय द वे लेट अस आल्सो रिमाइंड यू कि हमारा जो फ्लाई वे फ्रेंजी है ये भी आपके लिए रहेगा जिसका कोड वर्ड जो है ये हम आज बाद में चलकर रिवील करेंगे 8 टू 9 एएम के बीच में. एनी टाइम वी विल रिवील द कोड वर्ड. सो उम्मीद है कि आप तैयार हैं उसके लिए
2: क्योंकि हर दिन सुबह 8 बजे के बाद, दिन में 11 बजे के बाद, 1 बजे के बाद और शाम 5 बजे के बाद ये कोड वर्ड्स हम आपके लिए रिवील करते हैं. एंड एज़ सून एज़ दिस Words are revealed immediately या एक घंटे का टाइम आपके पास होता है टू विजिट रोवा और कोड वर्ड जो है वहां पर आप जाकर एंटर कर सकते हैं. तो इसका हिस्सा बनने के लिए जरूर तैयार रहिएगा एज़ सून एज़ द कोड वर्ड इज रिवील्ड.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chupo jao, papio. Chupo jao.
0: Rashi Vibes.
2: So here are your Rashi Vibes. सबसे पहले मेष यानी एरीज, आज आपके लिए कहा गया है कि ऑफिस में काम काफ़ी ज़्यादा होगा, आपके पास कोलीग्स शायद उतना सपोर्ट ना दे, जिसको लेकर आप टेंस रहेंगे। हेल्थ भी आज थोड़ा कमज़ोर रहेगा, ख्याल रखें जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें।
3: इसके बाद अगर देखा जाए तो वृष ने टोरस, आपके लिए आज बताया जा रहा है कि ये जो दिन है नौकरी के मामले में खास तौर पर आपके साथ आपके कलीग्स जो है वो बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, जिससे आपके काफी मुश्किल से मुश्किल काम आप आसानी से कर पाएंगे। यू विल बी एबल टू मीट योर डेडलाइंस एज वेल विद द हेल्प। बस एक सलाह दी जा रही है आपको कि कोई भी तरह का आपको अगर इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है, आज बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। आपके लिए ये भी वैसे आज बताया जा रहा है कि टुडे इज द डे जहाँ पर आपकी तबीयत जो है इस पर कुछ असर पड़ सकता है, इसीलिए हेल्थ पर ध्यान देना आपके लिए बहुत जरूरी है।
2: मिथुन यानी जेमिनी, बिजनेस से आपको फायदा होगा, ऐशो आराम और आराम के साधनों पर आप पैसे खर्च करेंगे, घर बाहर खुशियां होंगी और आज ऑफिस में कुछ चेंजेस पॉसिबल हैं आपके लिए।
3: करके ने कैंसर, आपके लिए कहा गया है कि आज जो भी प्लान आप बनाएंगे वो सफल हो सकता है, सही संगत का बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, पॉजिटिव सोच आपको सफलता जरूर दिलाएगी।
2: सिंह यानी लियो, बिजनेस अच्छा चलेगा, दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका आज आपको मिल सकता है, किसी भी अनजाने शख्स पर जरूरत से ज्यादा भरोसा ना करें।
3: कन्या यानी वर्गो, आपके लिए कहा जा रहा है कि आज रिस्क से जितना दूर रहे उतना आपके लिए अच्छा, जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान ही नुकसान, और पैसों के मामले में जो भी कोशिशें आप कर रहे हैं, यू ट्राइंग टू इन्वेस्ट एंड ग्रो योर मनी, तो डेफिनेटली ये हो सकता है, बट डू यू रिसर्च प्रॉपरली, आप ये पहले पता कर ले वेयर एवर यू इन्वेस्टिंग, इज इट अ गुड वे टू गेट अ गुड रिटर्न और नॉट।
2: तुला यानी लिब्रा, किसी जाने माने शख्स का काफी सपोर्ट आज आपको मिलेगा, इससे हो सकता है अगर बिजनेस आप करते हैं तो ये बढ़े या फिर पैसे आपको मिल सकते हैं, लेकिन ये भी ख्याल रखें कि किसी और के इन्फ्लुएंस में आप ना आए, किसी बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन बहुत इजीली आपको मिल जाएगा।
3: और इसके बाद वृश्चिक ने स्कॉर्पियो, आज आपके लिए कहा गया है कि घर और बाहर दोनों ही ओर प्रसन्नता रहेगी, हैप्पी रहेंगे आप, बस जल्दबाजी में कोई काम ना करें, किसी हैप्पी ओकेजन में भाग लेने का मौका भी मिलेगा, एंड इट विल मेक यू फील रियली वेरी हैप्पी।
2: धनु यानी सेजिटेरियस, भाग दौड़ की वजह से आज हेल्थ पर कुछ असर पड़ सकता है, बिजनेस अच्छा चलेगा, हो सके कोई रिस्क ना ले और झगड़ा झंझट को बेकार में बढ़ावा ना दे।
3: मकर यानी कैप्रिकॉन, आज आपके कम्युनिटी के मामले में काफी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, आप काफी ऐसे काम करेंगे जिसमें लोगों की हेल्प भी होगी आपकी कम्युनिटी में, इसकी वजह से आपका मान सम्मान जो है ये भी जरूर बढ़ेगा, समय का फायदा आपको मिलेगा, दोस्तों का सहयोग आपको मिलेगा, मौका भी ऐसा जहाँ पर आप जब इनसे फायदा उठाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट जो है ये हासिल होगा।
2: कुंभ यानी एक्वेरियस, कोई बड़ा काम करने का प्लान आप बनाएंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट आपका बना रहेगा, किसी फैमिली में कोई अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज हो सकता है, काफी समय से जिन दोस्तों से नहीं मिलना हुआ है उनसे भी आपकी मुलाकात हो सकती है और आज कोई एक्साइटिंग न्यूज भी आपको मिल सकती है।
3: और फाइनली आज मीन यानी पाइसेस, आपके लिए बताया जा रहा है कि आज ऐसा दिन है जहां पर किसी भी तरह का रिस्क उठाने के लिए आप में एक कमाल की हिम्मत जो है ये आएगी, एंड ये जो हिम्मत है इसकी वजह से आप डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें करेंगे जो शायद आपने लाइफ में पहले कभी नहीं किया, बस इस बात का ख्याल रखें कि जल्दबाजी ना करें और कोई भी बड़ा काम जो है ये आज करने का मन बनेगा, यू विल गेट गुड रिजल्ट्स, इट्स अ गुड डे फॉर यू टू मेक ऑल द डिसीजंस एज वेल।

0: के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: डिस्कवर द मैजिक एट गो बनानास चाइल्ड केयर, जहां आपके बच्चे सीखेंगे इन अ फन वे। विद 19 ब्रांचेस अक्रॉस ऑकलैंड एंड वाइकाटो, हम हमेशा आपके पास हैं।
2: गो बनानास चाइल्ड केयर इज नाउ ऑफरिंग 30 आवर्स फॉर जस्ट $10 पर वीक फॉर ऑल एजेस।
1: तो जल्दी ज्वाइन करें टू एंजॉय दी स्पेशल ऑफर्स। और सबसे खास बात, गो बनानास चाइल्ड केयर बीचलैंड्स इज नाउ ओपन एंड ऑफरिंग 12 मंथ्स कंप्लीटली फ्री फॉर अ लिमिटेड टाइम। तो देर मत कीजिए, कॉल 0800-46-26-26 टुडे।
2: अवेलेबल एट सिलेक्टेड ब्रांचेस। टीज एंड सीज अप्लाई।
3: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
4: क्यों, क्या हुआ?
3: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
2: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800-564-424।
0: टाइगर बार एंड रेस्टोरेंट इन सोहो होटल माउंट रॉस्कल। आए और इंजॉय करें इनका सोफिस्टिकेटेड डाइनिंग एक्सपीरियंस, जहां पर आपको तरह तरह के फ्लेवर्स मिलेंगे, क्रिएटिव एशियन फ्यूजन डिशेस से लेकर जेस्टी सी फूड तक, साथ में रिफ्रेशिंग कॉकटेल्स। सब कुछ एक बहुत ही एलिगेंट और स्टाइलिश अंदाज में। ये ओपन है फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, क्लोज टू ऑकलैंड सीबीडी एंड मिनट्स अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट। टाइगर रेस्टोरेंट बार इन सोहो होटल, स्टोरा रोड, माउंट रॉस्कल। विजिट टाइगर एट soho.co.nz।
5: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
6: brought to you by Fortune.

0: अलार्म।
1: भाई आज का हमारा सेलिब्रिटी अलार्म काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और आज इनफैक्ट एक फीमेल का वॉइस जो है ये आपको आइडेंटिफाई करना है।
2: ओके
1: तो पहले आप आवाज सुन ले उसके बाद और बातें हम करेंगे।
3: भैया आप बताइए आप यहाँ कैसे?
4: भाभी के हाथ का खाना खा के पक गए थे इसके लिए उसको जहर दे दिए।
1: तो फीमेल कौन है ये आपको आइडेंटिफाई करना है।
2: आई नो द वॉइस एंड आई थिंक आई नो कि आपने कहाँ से ये आवाज ली है, मुझे वो भी पता है। तो इट्स वेरी वेरी फन पीस जो आपने प्ले किया है, बट द होल शो आई वुड से शो जहाँ से ये छोटा सा ऑडियो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है।
1: तो लेट्स सी, अगर आपके लिए आसान है तो और लोगों के लिए भी शायद आसान हो। BF अपना आंसर और अपना नाम, बस फीमेल जो है इतना तो पता चल गया भाई कि ये एक्ट्रेस है।
2: तो obviously.
1: तो अब आप कोशिश करें बताएं कि ये आवाज किन की है आज सेलिब्रिटी अलार्म में।
0: Bollywood's most wanted.
5: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ।
6: मैं लाऊं अपना A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Go.nz.
1: News headlines.
2: सुबह के मुख्य समाचारों में इनवकागिल के क्वींस पार्क में डेटिंग ऐप के जरिए बुलाकर दो लोगों पर हमला किया गया है, जिसमें से एक शख्स अभी क्रिटिकल केयर में है और दूसरा गंभीर रूप से जख्मी है। पुलिस ने वार्न किया है कि हमलावर भरोसा जीतकर लोगों को सुनसान जगहों पर हमला करने के लिए बुला रहे हैं, इसीलिए किसी से भी मिलते वक्त सावधानी बरतें। इंस्पेक्टर मेल रॉबर्टसन ने लोगों को हिदायत दी है कि वो किसी अनजान से सिर्फ पब्लिक और रोशनी वाली जगह पर ही मिलें और अपने मिलने के प्लान के बारे में किसी भरोसेमंद को जरूर बताएं। ऑकलैंड में रात के वक्त एक सस्पेंडेड ड्राइवर ने पुलिस से बचने के लिए 200 किलोमीटर पे हवा की रफ्तार से गाड़ी भगाई, जिसे हाईवे कैमरेज की मदद से ट्रैक किया गया। मनोरेवा में रोड स्पाइक्स देखकर ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, जिसके बाद 21 या के इस युवक को गिरफ्तार किया गया और उसका लाइसेंस सस्पेंड करके गाड़ी इंपाउंड कर ली गई। आरोपी अगले हफ्ते वैताकरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश होगा, जहां उस पर डेंजरस ड्राइविंग और कैनबिस रखने के चार्जेस लगाए गए हैं। फीफा वर्ल्ड कप से पहले ऑल व्हाइट्स सॉकर टीम जो है कुछ फ्रेंडली इंटरनेशनल्स खेलने जा रही है। टीम का पहला मैच जो है ये 3 जून को

0: हाइटी के खिलाफ रहेगा। ये एक फ्रेंडली इंटरनेशनल होगा और उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप से पहले ऑल वाइट्स एक फ्रेंडली इंटरनेशनल में इंग्लैंड का भी सामना करेगी। इन मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हम जरूर लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
1: Breakfast show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
3: Driving you home.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby.
4: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
5: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने।
6: वो भी आई लव यू वाला।
5: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ पे किसने बनाया? वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
6: अच्छा आप दिलजीत हो?
5: आए आए बताओगे यार।
2: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. Accurate traffic.
7: You gotta go to the boat show.
8: Fine and cloudy today, a high of 19. Crash southbound on the southwestern. It's impacting the right lane between Onehunga and Mangere. Quite slow there. Southern, a crash past Drury cleared, but it's very heavy at Drury and then slow on and off from Takanini. 32 minutes in from Monaco. Northwestern, 40 in from Massey. Slow from there, heavy from Point Chev. Northern, 38 in from Constellation. Heavy, Greville to the bridge.
7: Don't miss the Hutch Wilco New Zealand Boat Show this Thursday to Sunday at Auckland Showgrounds.
9: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM Havel. Havel का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
10: Trade Depot brings you MyDia, the world's number one air conditioning company. Introducing the MyDia Inverter Heat Pump. It looks elegant and sophisticated, features innovative smart technology, and superb energy efficiency. Shop now for your MyDia Inverter Heat Pump, including installation anywhere in New Zealand, from only $1,299 with Trade Depot. T's and C's apply.
11: You're supporting the kids from the sports sideline, but the smell of a Barbie is clouding your mind. And when you see the sauce, you have to call time. It's what you should need.
12: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
13: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
14: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz.
15: South Auckland Motors' biggest sale ever is on now. Save thousands on new, demo and used cars. With big deals, big choices and big savings. On now but end Sunday at South Auckland Motors, Manukau, Botany and Pukekohe.
1: The beat of Bollywood.
16: World's best, hamari good brands me.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
1: Birthday greetings.
17: Iska birthday bhai?
18: Mera bhi birthday hai, chalo line mein aa jao.
17: Happy birthday to you.
0: Many many happy returns of the day. Aaj ka din aapko bahut bahut baat shubh aur mubarak ho. सबसे पहले रजिंदर कौर जी, पापाकुरा में आज आप अपनी सालगिरह मना रही हैं, इस दिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाइयां आपके जितने भी परिवार वाले हैं सभी शुभकामनाएं और बधाइयां दे रहे हैं, ईश्वर से आपकी लंबी उम्र की कामना और प्रार्थना कर रहे हैं। हम सभी की ओर से भी आज का ये खास दिन आपको अनेकों बार शुभ और मुबारक हो, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे आपको। उसके अलावा आज रितेश कुमार आप भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, विशिंग हिम ऑल द हैप्पीनेस एंड मे गॉड ब्लेस हिम ऑलवेज, लव एंड हग्स फ्रॉम अस। वाइफ विकाशनी हैं, बेटी करीना है और जितने भी परिवार वाले हैं, फ्रेंड्स हैं यहाँ न्यूजीलैंड में एंड अब्रॉड, सभी की ओर से आज बहुत सारी शुभकामनाएं आपको मिली हैं। और एक और मैसेज आया है, डियर वाइफी आवर मैरिज हैज ग्रोन इनटू सॉरी डियर वाइफी एनी आवर मैरिज हैज ग्रोन इनटू अ वंडरफुल रिलेशनशिप विद ईच ईयर दैट पासेस आई फॉल मोर इन लव विद यू टुडे एज वी सेलिब्रेट योर बर्थडे टुगेदर आई विश फॉर अ डे ऑफ रिलैक्सेशन अलोंग विद होप फॉर द ईयर अहेड लव एंड आशीर्वाद है आपके पेरेंट्स हैं मार्गरेट एंड लेटपा इन हेवन ससुर और सास हैं मिस्टर एंड मिसेस सदा सिवन मिस्टर एंड मिसेस शलेन एंड फैमिली और बच्चे हैं आपके फिनिक्स और अमायरा एंड पति हैं संजेश अंटा इन्होंने भी आज आपको बहुत सारा प्यार दिया है तो एनी जी आज सालगिरह आपको बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आपके साथ आज और भी जितने लोग जहां कहीं पर भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप सभी को इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं हम दे रहे हैं ईश्वर से आपकी लंबी उम्र की कामना और प्रार्थना कर रहे हैं आप भी अपना बर्थडे जो है ये सालों साल इसी तरह से मनाते रहें और आपकी सालगिरह की खुशियों में हम शामिल होते रहें यही हमारी कामना है यही हमारी तमन्ना है और अगर किसी वजह से आज आप अपना मैसेज जो है ये हमारे पास नहीं भेज पाए हैं कोई बात नहीं आपको हम याद कर रहे हैं और इस दिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाइयां दे रहे हैं।

0: RNZ.
1: अभी 25 मिनट रह गए हैं 8 बजने में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और भाई आप लोगों ने तो देखिए आज जो हमारे सेलिब्रिटी है अलार्म है, आई थिंक आज पहली मर्तबा है जब एक भी करेक्ट आंसर हमारे पास नहीं आया है. तो जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, अगर कोई भी सही जवाब नहीं देता है तो ये हम वापस कल आपको सुनाएंगे और मौका देंगे आपको कि आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें सेलिब्रिटी अलार्म में जो आवाज़ है ये किसकी है.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: थोड़ी देर बाद न्यूज इन स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए हम लेकर आएंगे, और अगले घंटे तो रिवील होना है आज का हमारा पहला कोड वर्ड हम फ्लाई अवे फ्रेंजी के लिए। जस्ट आज को ले ले तो तीन ही दिन, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, एंड देन इट ऑल कम्स टू एन एंड।
1: और आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है कम से कम कि आप अपने जो यू नो कोड वर्ड्स है ये एंटर करते हुए एटलीस्ट एक एंट्री पा सकते हैं, एटलीस्ट एक चांस पा सकते हैं इन विनिंग रिटर्न या टिकट टू फिजी।
0: और साथ ही में कई स्टोरीज भी हैं, यू नो बहुत सारे लोग जो हैं या फिर बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए ना, यो फिंगरप्रिंट्स एंड वो सारी चीज़ें। तो अब एक्सपर्ट्स ने वॉर्न किया है कि अगर आप ये जो वी वाला क्या बनाते हैं ऐसे फोटोज में, हाँ, जो पोज करते हैं, अगर आप वो हाई रेजोल्यूशन फोटोज में करते हैं, इट कुड लीड टू फिंगरप्रिंट थेफ्ट। कोई आपका फिंगरप्रिंट जो है वो चुरा सकता है, चाहे आप उसको इस्तेमाल करते हैं एज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री या वन ऑफ पीस जो है ये जो
1: बिकॉज़ यू आर एक्सपोजिंग दोस टू फिंगर्स एकदम क्लियरली,
0: हाँ, एंड यूजिंग इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर्स फेसिंग आउटवर्ड्स, ये काफी समय से चलता आ रहा है, लेकिन अभी हाई रिस्क कैमरास और एडवांस्ड AI पावर्ड सॉफ्टवेयर, इन सभी के आने के बाद जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि ये जेस्टर जो है ये एक्सपोज कर सकता है आपको टू हैविंग योर फिंगरप्रिंट्स कॉपीड एंड यूज्ड टू बायपास सिक्योरिटी बायोमेट्रिक सिक्योरिटी मेजर्स।
1: इंटरेस्टिंग। अरे यार मैं तो ये बहुत करती हूँ, लाइक इन एवरी फोटो आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू बट टू यू नो शो दैट साइन। अभी क्या ही करें, आता नहीं पोज करना, एंड पीपल गो लाइक अरे कुछ करो, कुछ पोज करो एंड ऑल, तो यही होता है मेरे से। You have to be a bit careful now.
0: Yeah, एक चाइनीज सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं ली चेंग, वो एक रियलिटी शो में आए थे पिछले महीने, और जहां पर उन्होंने एक सेलिब्रिटी की सेल्फी का एक एग्जांपल लिया और दिखाया कि कैसे फिंगर्स आर विजिबल इन अ वी फोटो, और किस तरह से ये फोटोज जो हैं उनसे जो बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन है इसको चुराया जा सकता है। उन्होंने शो पर आकर दिखाया भी लोगों को।
1: तो देयर यू गो, अभी आप जो भी ऑनलाइन डालते हैं, कोई भी फोटो डालते हैं, कोई भी वीडियो डालते हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अराउंड इट, और अच्छे से सोच समझ कर यार, यू नो कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें आप जितना ब्लर कर सके उतना अच्छा, इफ यू इवन इफ यू पोस्टिंग सर्टेन थिंग्स, बिकॉज दीज थिंग्स जो है ये आपके लिए काम आ सकती है, आई मीन आपके लिए काम नहीं आ सकती, मतलब जो स्कैमर्स है उनके काम आ सकती है और आपका नुकसान हो सकता है इस मामले में।
0: फिलहाल चलिए आज का अगला थ्रोबैक का वक्त अब हो चुका है, ये गाना आप एंजॉय करें, फिर न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट हम लेकर आएंगे।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 11 डिग्रीज टेम्परेचर अभी आप फील कर रहे हैं, आज का हाई 19, ओवरनाइट कम से कम 8 डिग्रीज रहेगा, अ फाइन डे, शाम के वक्त कुछ बादल भी छाए रहेंगे, सनसेट 5:25 पीएम पर आज होगा।
0: For show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: The Rush Hour, brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
1: वेलकम टू द रश आवर ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम और रोवर पर आप हमारे साथ दे रहे हैं, स्वागत हम आपका कर रहे हैं इस प्रोग्राम में इसी घंटे। तो किसी भी टाइम पर आज का हमारा पहला कोड वर्ड रिवील हो सकता है हम फ्लाई अवे फ्रेंजी के लिए, और देखेंगे कुछ देर बाद व्हाट्स योर टेक में आज किस चीज के बारे में हम बातें करेंगे।
3: तो आपके लिए स्टोरी हम जरूर लेकर आएंगे, इंतजार करते रहिएगा। बट बिफोर दैट, आज का हमारा ट्रेंड पेट्रोल, दिस गाय इज ट्रेंडिंग ऑन ऑनलाइन अगेन आफ्टर सो मेनी इयर्स, आफ्टर 20 इयर्स। और ये जो शख्स हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वायरल मोमेंट का हिस्सा बने थे जब बीबीसी पर गलती से इनका एक इंटरव्यू हुआ था। इनका नाम है गाय गोमा, ये कैंडिडेट थे फॉर अ जॉब एट द बीबीसी, लाइव ऑन एयर। इंस्टेड ऑफ इनको एक जॉब इंटरव्यू के लिए, गलती से उस इंटरव्यू रूम तक पहुंचा दिया जहां पर लाइव होने या एक इंटरव्यू चल रहा था ऑफ एन एडिटर ऑफ अ टेक मैगजीन कॉल्ड गाय केव ने। और इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जब ये वहां पर जाकर बैठे, इनको खुद नहीं मालूम था कि लाइव होने या जो है ये है प्रोग्राम, और जो सामने बैठी हैं वो इनका इंटरव्यू नहीं लेने वाली है फॉर द जॉब दैट ही हैज कम टू अप्लाई फॉर बीबीसी, लेकिन इनको किसी एक मैगजीन का एडिटर बनाकर उनका इंटरव्यू जो है ये लेने वाली है।
1: अच्छा।
3: So 20 years ago it happened on 8th of May 2006, और गोमा जो है he had arrived at BBC for a job interview, लेकिन after being mistaken for Kevne in reception, उनको क्योंकि जैसे कि मैंने बताया जो नाम है ना गाय, तो इनकी इसकी वजह से इनको अनएक्सपेक्टेडली जो लाइव स्टूडियो है बीबीसी न्यूज चैनल का वहां पहुंचा दिया गया। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि मतलब जो इंटरव्यू कर रही थी जो जर्नलिस्ट, जब इन्होंने ये कहा कि अच्छा ये है हमारे साथ और ये बताएंगे अपनी राय आज के इस बात मतलब सवाल पर, तो उनका पूरा एक्सप्रेशन जो ये लाइव टीवी पर कैप्चर हुआ था, एंड इट शोड क्लियरली कि वो थोड़ा कंफ्यूज है, थोड़ा वो कि लाइक ये क्या हो गया मेरे साथ। सो डिस्पाइट द कंफ्यूजन ही डिड नॉट शाय अवे फ्रॉम द मोमेंट, और उन्होंने जो प्रेजेंटर के क्वेश्चंस का आंसर दिया इवन विदाउट नोइंग कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। ही डिड नॉट गेट द जॉब ही हैड ओरिजिनली कम टू इंटरव्यू फॉर, लेकिन ये पूरा मोमेंट जो एक्सीडेंट ऑनलाइन सेलिब्रिटी बन गई है, उसके बाद चलकर यही वीडियो अब वापस से वायरल हो रहा है। एंड सिंस दिस इंसिडेंट, ये इनकी एक लास्टिंग मेमोरी है जहाँ पर 20 साल बाद इनसे ये सवाल भी किया गया कि कैसा था वो सिचुएशन, हाउ डिड इट गो, एंड ही लाइक ही रिमेंबर्स इट सो क्लियरली कि इन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू वापस से दिया एक्सप्लेनिंग द होल सिनेरियो।
1: चलो शायद सेलिब्रिटी बनने के बाद, टीवी पर आने के बाद कहीं और तो उन्हें नौकरी मिली गई होगी। ऐसी और भी ट्रेंडिंग स्टोरीज ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे।

0: download Backyard Beats.
1: तो न्यूजीलैंड म्यूजिक मंथ में आज आइए आपके लिए अपने एक और आर्टिस्ट को हम लेकर आए हैं, सेंसी प्रभाकर। इनके बारे में हम आपको बताएं, ये एक इंडियन R&B आर्टिस्ट हैं, यहीं साउथ ऑकलैंड से। एंड शी हैज रिटन ओवर 350 सॉन्ग्स, और उनके स्मूथ साउंड और इमोशनली ऑनेस्ट लिरिक्स के लिए ये बहुत ही पॉपुलर हैं। और टू टाइम फाइनलिस्ट भी रह चुकी हैं प्लेट स्ट्रेंज लायन फाउंडेशन सॉन्ग राइटिंग कॉन्टेस्ट में, और तीसरा स्थान भी हासिल किया सुर सम्राट सिडनी में। एंड शी इज़ द विनर ऑफ सुसो ई बेस्ट वोकल कॉम्पिटिशन। और उनके साथ हैं भास्कर, एक न्यूजीलैंड बेस्ड आर्टिस्ट जो नेपाल के हैं, बोर्न एंड रेज्ड इन इंडिया। और इनके गाने भी आज हम आपके लिए लेकर आएंगे, बट फर्स्ट अप आइए आज बैकयार्ड बीट्स में सेंसी प्रभाकर।

0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स पर द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए जारी है. आपको हम बताते आए हैं कि हम फ्लाई अवे फ्रेंड्स एंड फ्रेंजी इज इन टू द फाइनल वीक और फाइनल थ्री डेज में आज कल और परसों आपके पास मौका है टू सेंड इन योर कोड वर्ड्स फॉर योर चांस टू विन ए रिटर्न एयर टिकट टू फिजी.
1: और आज का कोड वर्ड अच्छे से सुन लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी हम इसे रिवील कर रहे हैं और अभी से 60 मिनट्स का टाइम आपके पास रहेगा टू एंटर इट. और जैसे ही आप इसे एंटर कर दोगे आपके पास अपॉर्चुनिटी है टू बी पार्ट ऑफ दिस ड्रॉ एंड टू विन रिटर्न एयर टिकट टू फिजी. तो आज का कोड वर्ड वेरी सिंपल, इट्स ओइले, ओ आई एल ई आई, ओइले. नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि ओइले कोई ऐसा वर्ड नहीं है, इट्स जस्ट एक्सप्रेशन. जैसे हम बोलते हैं ओ माय गॉड और ओ नो व्हाट्स दैट, लाइक यू नो ऐसे क्या रे ये क्या हो गया, हे भगवान, लाइक टाइप्स एक्सप्रेशन. तो दैट इज व्हाट ईतो की भाषा में ओइले होता है.
0: तो अभी आपके पास एक घंटे का वक्त है, आप विजिट करें रोवा hum.rova.nz या रोवा ऐप और जाकर कोड वर्ड वहां पर एंटर कर दें. एक घंटे का वक्त आपके पास होगा फॉर योर चांस टू गो इनटू द ड्रॉ जहां पर रिटर्न एयर टिकट टू फिजी जीतने का मौका है आपके पास. रिमेंबर ओइले आज का वर्ड और ये अब आप जाकर एंटर कर सकते हैं. थोड़ी देर में व्हाट्स योर टेक हम लेकर आएंगे.
2: मॉर्निंग्स मेड बेटर,
3: दो फ्रेंडा, चार टोस्ट, बटर जैम और एक स्पेशल चाय.
2: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
4: 80s के रेट्रो गाने.

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Oakland, तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए. Once upon a time with the legendary Rahat Fateh Ali Khan live in concert along with Shah Zaman Ali Khan. Saturday, 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz. For sponsorships, call Karam Hundal on 027-514-6477.
2: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई-वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें. पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए. oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे. तमाकी तुरुकी, All Together Oakland.
3: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले. जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट. squirrel.co.nz.
4: बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर. यार
5: क्यों, क्या हुआ?
4: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
6: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी. दैट्स 0800-564-424.
7: Jen didn't think she needed a DVS system.
8: Oh, I've got insulation in that.
7: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
8: Ah, yeah.
7: So Jen got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
9: Show with

0: Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
1: What's your take?
2: 17 मिनट हुए हैं, 8 बजकर वक्त है, व्हाट्स योर टेक, और आज आपसे हम जानना चाहेंगे समथिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस. एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं पढ़ रहा था एक इंडियन महिला की जो काफ़ी लंबे समय से फिनलैंड में रह रही थी, एंड उसके बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम शी वेंट बैक टू इंडिया. और उन्होंने जब वापस इंडिया में कदम रखा तो उन्हें एक रिवर्स कल्चर शॉक लगा. ये जो महिला हैं इनका नाम है आयुषी, और काफ़ी समय से अगर आप एक डिफरेंट लाइफस्टाइल जो है ये जीते हैं, व्हेन यू गो बैक एंड यू सी द रियलिटी, तो किस तरह का कल्चर शॉक उनको वहाँ पर लगा. एंड उन्होंने लिखा था अपने इस इंस्टा post ke caption mein, you lived in Finland for too long and forget that India runs on heat, honking and chaos. After every little struggle there is always one thought, aur inko India aana tha. Honestly my body is still operating on Finnish weather and silence. To Finland mein shayad bahut zyada silence hoga, uske tarah ki bhagdad jo hai ye dekhne ko nahi mili hogi. तो हमने सोचा कि चलो आज आपसे पूछते हैं कि काफ़ी लंबे समय के बाद जब आप जिस भी कंट्री से आए हो वहाँ वापस गए तो क्या देखकर आपको एक झटका लगा भाई कि ये क्या हो गया इस कंट्री में, वेदर फॉर गुड और फॉर बैड, कुछ भी हो जो आपको देखकर लगा हो कि ओह माय गॉड इतना सारा चेंजेस जो है ये देखने को मिल रहा है. गुड मॉर्निंग परविंदर.
3: गुड मॉर्निंग,
2: कैसी हैं आप? मैं भी अच्छा हूँ.
3: मैं तो भी रिसेंटली गई थी ना इंडिया दिसंबर में.
2: हाँ,
3: तो जैसे यहाँ के मॉल कैसे है ना, छोटे छोटे से.
2: अच्छा.
3: हाँ, मतलब मैं चंडीगढ़ से हूँ तो चंडीगढ़ में पहले भी मॉल अच्छे थे, बड़े बड़े.
2: हाँ,
3: और वो लेट तक खुले होते हैं रात को, वहाँ तो निकलते ही शाम को है ना, क्योंकि गर्मी धूप इतनी होती है. तो अब जब मैं गई थी तो मतलब चंडीगढ़ में तो मॉल बड़े बड़े थे ही, छोटे गांवों में भी इतने बड़े बड़े मॉल थे प्रॉपर.
2: अच्छा.
3: आउटलेट. हाँ, और मतलब वो क्रिसमस टाइम था, न्यू ईयर टाइम था ना, तो हमें मुझे लगता था कि यहाँ पे ज्यादा सेलिब्रेट होगा. और जब मैं इंडिया गई हूँ वहाँ पे मतलब चंडीगढ़ के तो मॉल वगैरह ऐसे डेकोरेट हुए पड़े हैं, मतलब अच्छे तरीके से, अच्छी फीलिंग आ रही थी.
2: हाँ.
3: वाह क्या माहौल है.
2: आपने शायद सोचा नहीं था कि भाई इस तरह से डेवलपमेंट वहाँ पर देखने को मिलेगा.
3: मुझे आइडिया था कि वहाँ पे करते हैं. हाँ. मतलब चंडीगढ़ में तो करते ही ऑब्वियसली, पर जैसे मेरा हस्बैंड बठिंडे का है और वो थोड़ा सब अंदर इनसाइड एरिया का है.
2: हाँ.
3: तो उसका कजिन ब्रदर मुझे लेके गया जब आउटलेट मॉल, तो मैं देख कर हैरान थी कि मतलब इतना बड़ा शहर नहीं है वो जहाँ पर मुझे लेके गया.
2: हाँ.
3: वहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड के आउटलेट स्टोर थे, मैं हैरान हो गई थी देख के. अच्छा
2: ये भी है यहाँ.
3: हाँ, ये भी है यहाँ. जो यहाँ पे नहीं, जो जैसे सफोरा यहाँ पे कुछ ही टाइम पहले खुला है, पर इंडिया में सफोरा काफी टाइम से है.
2: अच्छा, तो वो सारी चीजें आपको एक रिवर्स कल्चर शॉक में ले गई. थैंक यू परविंदर, थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए. तो आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या आपने देखा या क्या एक्सपीरियंस किया व्हेन यू वेंट बैक टू द कंट्री जहां से आप आए, जिसके बाद आपने बोला कि अरे ऐसा भी हो गया यहां पर, देखो ये भी हो गया, वहां तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ. वो सारी चीज़ें जो है जो आपको एक रिवर्स कल्चर शॉक देती हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम छोटे शहरों से निकल कर बाहर के देशों में जाते हैं तो और एक तो झटका हमें लगता है कि भाई ये है ओवरसीज, ये है अब्रोड, यहाँ का कल्चर ये है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है ये हो रही हैं, वहाँ तो गांव में हम थे, इधर से उधर भागना, दोस्तों के साथ खेलना, यहाँ तो कोई पूछता भी नहीं, वो सारी चीज़ें. अलग अलग लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, तो वो आज हम आपसे जानना चाहते हैं. जब आप वापस गए अब्रोड में रहने के बाद व्हेन यू वेंट बैक टू योर होम कंट्री क्या आपको ऐसा महसूस हुआ? किसी ने मैसेज किया है हमारे पास, मोर इनडिसिप्लिन्ड ट्रैफिक, मोर नॉइज पोल्यूशन, नो वन केयर्स नाउ इन इंडिया, आफ्टर 3 years आई वेंट टू इंडिया फ्रॉम न्यूजीलैंड. ये किसी ने हमारे पास मैसेज किया है. थैंक यू सो मच आपके मैसेज की खातिर. आप चाहे तो थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, आप कॉल कर सकते हैं. आओ 800-00-4866 ये हमारा नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी राय शेयर कर सकते हैं. और अगर टेक्स्ट करना चाहें तो 5599 हमारा नंबर है. गुड मॉर्निंग. हेलो हेलो.
1: Hi, how are you guys?
2: Good, good, good. How are you, ma'am?
1: Very good. It's me and Hazel. We listen to you every morning.
2: Thank you so much.
1: जब तक हम फोन करने के लिए सोचते हैं तब आप बोलते हैं कि अभी आप टेक्स्ट करो. तो आज हमें मौका मिला जब आपने बोला थोड़ा सा टाइम है.
2: Thank you so much for calling. जी बताइए.
1: तो मेरे लिए सबसे शॉकिंग मोमेंट था जब मैं इंडिया वापस गई तो एक बेगर आया. वो बोले कि प्लीज पैसे दे दो. तो आई डोंट हैव कैश. आई वाज़ लाइक ओह आई एम सॉरी आई डोंट हैव कैश. तो उसने अपना क्यूआर कोड निकाला तो बोला ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकते हो.
2: हाँ, ये मैंने सुना जरूर है. देखा तो नहीं, एक्सपीरियंस तो नहीं किया, बट सुना जरूर है कि ऐसा भी हो सकता है.
1: इंडिया इतना मॉडर्न हो गया इन टर्म्स ऑफ पेमेंट एंड स्टफ. सभी छोटी छोटी दुकानों पे भी उनके क्यूआर कोड वगैरह है, जैसे कि फोन पे करो एंड ऑल दैट. इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग दे आर वे अहेड. यहाँ पर तो अभी भी हम ऐसे सोचते हैं ना कि सरचार्ज

0: आज व्हाट्स योर टेक में रिवर्स कल्चर शॉक उसके बारे में हम बातें कर रहे हैं, जो शायद आपने एक्सपीरियंस किया हो, जो जिससे आप गुजरे हो, जो आपने देखा हो, अनुभव किया हो, और उसके बाद आपको लगा होगा कि भाई ये कहां से कहां, जिस कंट्री को हम छोड़कर गए थे वो कंट्री कहां से कहां पहुंच गई, या फिर जिस कंट्री को हम छोड़कर गए थे वो कहां से कहां पहुंच गए। भाई डिपेंड्स आप किस टोन में बोलना चाहते हैं, दोनों अप्लीकेबल हैं। कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं ये हमें निराश कर देती हैं। तो जो भी आपका वो एक्सपीरियंस हो वो आप हमें बता सकते हैं। अब वक्त है आपके पास, 5599 हमारा नंबर है जिस पर अपने टेक्स्ट मैसेजेस आप हमें भेज सकते हैं। नॉट ओनली इंडिया, आप और भी किसी कंट्री से आए हों उस कंट्री के बारे में भी हमें डेफिनेटली बताएं कि व्हाट इट वाज लाइक बिफोर, एंड अब कुछ समय यहाँ बिताने के बाद जब आप वापस गए हाउ थिंग्स चेंज्ड, और ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसे देख कर या एक्सपीरियंस करके आपको झटका लगा।
1: Hollywood's most wanted.
2: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ।
3: मैं लाऊं अपना ए गेम।
1: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: show with Vijay and Pooja.
1: Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
2: साढ़े आठ बज रहे हैं. वैसे गौरव, आपने भी मैसेज किया है. आपका कहना है कि समटाइम्स आई फील इंडिया इज मोर डेवलप्ड. थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. और आज रिवर्स कल्चर शॉक के बारे में कुछ बातें हो रही हैं. इफ यू गॉट समथिंग टू शेयर, 5599 हमारे नंबर है जिस पर आप मैसेज कर सकते हैं.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chup ho ja, papi ho. Chup ho ja.
2: Accurate traffic.
3: Sell or loan against your gold at Cash Converters.
4: Fine today, some cloud, a high of 19. Southwestern, a crash southbound between Onehunga and Mangere cleared. It's heavy from before Dominion though and a bit slow to the airport. Southern, 45 minutes in from Manukau, heavy at Drury, slow at Manurewa and Papatoetoe, heavy patches from Penrose. Northwestern, 50 from Massey, heavy on and off from there. Upper Harbour, quite slow northbound. Northern, 32 from Constellation, heavy from Greville.
3: Visit your local store and turn your gold into sold. Valid ID, lending criteria and terms apply.
5: Fuel ke daam roz badh rahe hain aur smart drivers ab switch kar rahe hain. Future hai efficient driving ka aur Vecity Omoda JQ ke saath ye shift aur bhi easy ho jata hai. Introducing the powerful J7. Super hybrid system, performance bhi, efficiency bhi, aur all electric J5 EV, zero emissions, maximum savings. Aaj hi Vecity Auto Group pahunche aur Jimmy Taylor aur unke expert team se mile. For more info, visit vecityautogroup.nz or search for Vecity Auto Group on socials.
6: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
7: क्यों, क्या हुआ?
6: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
8: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
9: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
10: हाँ, अच्छा
9: बताओ तुम्हारा फोकस. फोकस साडा कुछ नहीं.
10: मिसेस सिंह.
11: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
8: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु. कॉल 0928130 और विजिट focuskitchens.co.nz.
12: The Hutch Wilco New Zealand Boat Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. Auckland Showgrounds, May 14 to 17. Tickets at boatshow.co.nz.
13: It's cold outside and the couch is on your mind.

0: Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
2: The Rush Hour on Hum Playing Bollywood's Biggest Hits Breakfast Show par aapke liye hum lekar aa rahe with Vijay and Pooja. Aur aaj ek badi interesting cheez maine padhi. I don't know how many of you will agree with this, but let's see. So University of Cambridge jo hai, yahan par ek brain scan study jo hai ye ki gayi hai. Aur is brain scan study mein ye baat pata chali hai ki jo hamara brain hota hai, iska adolescent wiring pattern jo hai, ये तब तक हमारे ब्रेन में रहता है जब तक हम 32 इयर्स के नहीं हो जाते हैं. इसका मतलब ये है कि एनीवन स्टिल प्रिटेंडिंग टू हैव लाइफ टुगेदर इन देयर लेट 20s कैन नाउ बी लाइक साइंटिफिकली उनको ये बताया जा सकता है कि शायद ये उतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि द जिस्ट ऑफ इट इज बेसिकली योर ब्रेन इज स्टिल नॉट मैच्योर्ड इनफ अंटिल यू टर्न 32.
3: यो हां
2: अडल्टहुड यो क्या होता है अडल्टहुड बेसिकली स्टार्ट्स एट 32 ऐसा इस पर्टिकुलर ब्रेन स्कैन स्टडी में सामने आया है. तो इसके हिसाब से तो आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड माय अडल्टहुड.
3: भाई कई लोगों की तो शादियां हो जाती है 18-19 साल में, और पहले के जमाने में अगर आप देखें तो उससे पहले भी हो जाती थी.
2: एग्जैक्टली, बट आई डोंट नो कि हाउ शुड आई पुट दिस, पर मुझे ऐसा लगता है कि देयर वाज अ टाइम जब पहले कुछ लोग थोड़ा जल्दी ऐसे यू नो मैच्योर हो जाते थे. आई बिलीव लाइफ में एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो आपको सिखा देते कि कैसे आप यू नो मेंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो मेंटली कैसे आप बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं. पर आजकल शायद विद एज दैट थिंग इज नॉट हैपनिंग. लाइक एट अ यंग एज लोग शायद वो चीज़ नहीं करें, विच इज़ अ गुड थिंग. आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड थिंग. हर कोई को हर किसी को अपनी एबिलिटी या फिर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लाइफ जो जैसा होता है उस हिसाब से ही वो मेंटली ग्रो करते हैं. बट आई फील लाइक कि पहले बहुत जल्दी ये हो जाता था. प्रोबेबली अगर आप अभी से 20 इयर्स बैक जाए और 20 इयर्स बैक जो 5 साल के बच्चे होते थे वो किस तरह से रहते थे या क्या अंडरस्टैंडिंग होती थी, और अभी के 5 साल के बच्चों को अगर आप कंपेयर करें, देयर इज अ लाइक वास्ट डिफरेंस.
3: ऑब्वियसली समय के साथ काफ़ी कुछ बदलता रहता है, और ये स्टोरीज आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.

0: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
1: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
0: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यहीं अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
1: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Throwback.
4: दस मिनट रह गए हैं अभी 9 बजने में द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए जारी है और हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और स्टोरी में पढ़ रहा था म्यांमार की और खबरों के मुताबिक म्यांमार में 11,000 कैरेट का एक रूबी जो है ये मिला है आई थिंक लास्ट वीक ये मिला इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट एवर फाउंड इन द कंट्री और म्यांमार जो है अपने प्रेशियस जेम स्टोन्स के लिए ऑलरेडी बहुत पॉपुलर हैं और देश के जो लीडर हैं ये स्टेट रन एक न्यूज़पेपर में नज़र आए 2.2 केजी इस जेम स्टोन को इंस्पेक्ट करते हुए और ये मोगोक एरिया में मिला है और ये इस रूबी के बारे में कहा जाता है दैट ये एक्सेप्शनली बहुत ही लार्ज है रेयर है और बहुत मुश्किल से ऐसा मिलता है ये जायंट रूबी हैज़ अ पर्पलिश रेड कलर और येलोइश अंडरटोन्स और ऐसा माना जाता है कि इट हैज़ गॉट अ वेरी हाई क्वालिटी कलर ग्रेड While smaller than a similar 21,450 carat ruby found, उसी area में मिला था 1996 में ये अभी हाल ही में जो discover किया गया है is more valuable क्योंकि इसका जो color है और superior है और ज़्यादा clarity है और quality भी पहले से बेहतर है हालांकि अभी तक वहाँ की सरकार ने इसका कोई value जो है ये नहीं दिया है पहले के ज़माने में महाराजा जो थे वो लोग से और जो मोगोक एरिया है उस जगह को लेकर काफ़ी लड़ाई जो है ये भी हुई है क्योंकि यहाँ पर इस तरह के जेम स्टोन्स जो है बहुत पाए जाते थे मोगोक रूबीज़ के बारे में इट्स वेरी पॉपुलर कि दे आर द मोस्ट एक्सपेंसिव इन द वर्ल्ड विद द हाईएस्ट क्वालिटी ज्वेल्स और मल्टी मिलियन डॉलर प्राइसेस जो है ये इंडस्ट्री में हासिल करते हैं सो 11,000 कैरेट आई एम नॉट रियली श्योर इसका कॉस्ट कितना होगा या कितना पे करके लोग इसे हासिल करेंगे या फिर जो कोई भी इसे खरीदेगा बट इट मस्ट बी इनटू मल्टी मिलियन डॉलर्स ऐसी और भी कई इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जो हम आपके लिए बारी बारी से लेकर आते रहेंगे इस प्रोग्राम में फिलहाल अब अगले थ्रोबैक की बारी अब हो चुकी है और इस बार हम आपको वापस लेकर चल रहे हैं इन द ईयर 2009 आई थी फिल्म दे दनादन और इस फिल्म में गाने जो हैं काफ़ी पॉपुलर हुए थे जिनमें से एक ये गाना जो है मीका सिंह स्टाइल भाई और उनके साथियों से हम पेश कर रहे हैं इसे आप एंजॉय करें इसके बाद न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा अगले घंटे कम्युनिटी की खबरें वगैरह भी होंगी इस प्रोग्राम में

0: accurate traffic.
1: Kitchenmania.co.nz.
2: Cloudy patches on a fine day, 19 now high. Northern motorway not looking too bad, half an hour in from Constellation Drive, just heavy patches from Greville to the bridge. Northwestern under 40 minutes in from Massey now, we're slow from Te Aratu, heavy from the causeway to about Grey Lynn. Southern 40 in from Manukau, some slow patches up to East Tāmaki, heavy spots from there. Southwestern slow southbound through Mount Roskill.
1: Order your new Kitchen Mania kitchen and be in the draw for an island holiday. T's and C's apply.
3: It's easy for life admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunizations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider.
4: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
5: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे
6: चूड़ी कंगन पायल बाली झुमके और चोकर ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं समझे
5: सोना संसार पापा टोटो जहां था वहां अभी भी है शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स पापा टोटो
7: सोना संसार 138 ग्रेट साउथ रोड पापा टोटो सोना संसार यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड
8: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Beery. Call 24/7 on 0927-88600.
9: Home. Time check.
10: Good morning, it's Timothy Knowledge rahi hai.
9: To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
11: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. Homeowners are holding on to their properties for near record periods. Cotality found profit-making resales have hit the 10-year mark. Spokesperson Calvin Davidson says the current market is favourable to buyers.
12: A little bit tougher for property resellers at the moment. There's a bit more pain out there, a bit less gain than what there was in the past. So resellers are having to work just a little bit harder.
11: A person fatally struck by a vehicle on the Waikato Expressway was a Fulton Hogan worker helping a stranded vehicle. The company has confirmed one of its employees was killed yesterday morning. Fulton Hogan says its key focus at this time is to support those affected and provide full assistance to authorities. Experts are pushing for a faster response against a growing illicit tobacco trade. There has been a crackdown across the ditch, like on-the-spot fines for retailers. Associate Public Health Professor Andrew Waugh says the government could learn from them.
13: We've really got to look at what's happening over the ditch and learn from what's happening there and try and nip it in the bud before it becomes an even bigger issue.
11: And a captain at the Ports of Auckland is being honoured for more than 50 years' service. Murray McGeehan got to help name a new pilot vessel, Te Aihu, meaning the nose or the first point of contact. It will arrive in August to guide large ships through the harbour. To rugby with Shift 4, the Georgia Rugby Union has been heavily fined for a scheme to dodge anti-doping tests. It follows what World Rugby is calling the most extensive anti-doping investigation ever undertaken in rugby. Six players have received bans, as has the team doctor. Former captain Mirab Sharikadze has been banned for 11 years for supplying clean urine to some of his teammates who were taking recreational drugs.
9: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Ross. Skill. The beat of Bollywood.
14: World's best, hamari koi branch nahi hai.
9: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800-462626.
10: Almost 13 degrees temperature ho chuka hai. Aaj ka high 19. Overnight kam se kam 8 degrees rahega. Aur aaj subah ke waqt kuch badal chhaye rahenge. Baad mein chalkar mausam saaf ho jayega. Sunset aaj ka 5:25 PM par hoga.
9: Breakfast show with Vijay and Pooja.
15: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
16: What's going on? Kya bakte ho?
17: Are kehna kya chahte ho?
0: Alright, so aaj ka kya bakte ho is not just kya bakte ho, but it is actually a very shocking incident which happened. Mumbai ki ye kahani hai from India, jahan par this particular photo, video jo hai, it went viral on internet. Aur ye hua jab ek vyakti ko dekha gaya walking into a hospital, jabki unke sir par ek mishiti jo hai, yani ki jo badi si churi hoti hai, wo lodged thi. It was in his head. गड़ी हुई उसके सर के अंदर. और बेसिकली जब ये हुआ तो द वियर्ड थिंग दैट पीपल एक्चुअली थॉट कि अच्छा ये हो क्या रहा है वाज कि वो बड़े आराम से खड़े हुए थे. ही वाज नॉट पैनिकिंग, ही वाज नॉट मेकिंग अ फस, ही वाज नॉट सेइंग कि मुझे अभी देखो अभी देखो, जबकि द डॉक्टर्स डिडंट अटेंड हिम इमीडिएटली एज वेल. विजिबली उनको दिख रहा है कि क्या हो रहा है सिचुएशन में, बट हाँ उनको डायरेक्टली अटेंड नहीं किया गया था. बट व्हाइल ही वाज वेटिंग फॉर द डॉक्टर्स टू सी हिम, उनको देखा गया बड़े आराम से खड़े होकर अपने फोन पर कुछ कर रहे थे, वो बात कर रहे थे, फोन पर स्क्रॉल कर रहे थे. सो ये जो डिस्टर्बिंग विजुअल्स है, इट हैड लेफ्ट सोशल मीडिया यूजर्स एब्सोल्युटली स्टंड. और अकॉर्डिंग टू द मुंबई पुलिस, ये कहा गया कि ये इंसिडेंट जो है एक ब्रूटल असॉल्ट की वजह से हुआ. और इसकी वजह से ये जो शख्स है जिनके बारे में कहा गया है, कुछ पर्सनल राइवलरी के चलते इन पर हमला जो है ये किया गया था. एंड द गाय हैज बीन आइडेंटिफाइड एज रोहित नागनाथ पावर. और इनके बारे में कहा गया है कि जो हमला है ये इन पर हुआ इसी महीने की शुरुआत में इनफैक्ट. एंड डिस्पाइट सफरिंग सीवियर इंजरीज, रोहित रिपोर्टेडली मैनेज टू रीच द हॉस्पिटल अलाइव. जब डॉक्टर्स ने उनकी ट्रीटमेंट शुरू की तो सक्सेसफुली उनकी हेल्प की, उनको ट्रीट किया. और जब जैसे कि मैंने कहा वो वेट कर रहे थे टू बी सीन, जिस काम नेचर के साथ वो खड़े होकर अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे थे, उससे देखकर लोग थोड़ा हैरान हो गए. एंड एक्चुअली मैं जब मैंने भी ये फोटो देखी वॉज लाइक कि सीरियसली, लाइक हाउ कैन एनी वन स्टे काम इन दिस सिचुएशन, इतना काम. तो वो थोड़ा ऐसा था मेरे लिए
10: सरप्राइजिंग भाई. बट हो कुछ लोग, आई मीन हर किसी का अलग अंदाज होता है या अलग तरीके से सिचुएशन से वो डील करते हैं, तो शायद ये उनका तरीका हो. ऐसी और भी स्टोरीज जो है कि हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं. वैसे थोड़ी देर बाद देखेंगे हमारे आसपास हमारी कम्युनिटी में क्या कुछ हो रहा है, इसकी जानकारियां हम पर आपको हम ज़रूर देने वाले हैं.

असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा हो।

0: What's going on?
1: What's going on? आपके लिए जबकि हम लेकर आ रहे हैं on हम playing Bollywood's biggest hits, the breakfast show with Vijay and Pooja जारी है. And as you know, मई का महीना न्यूजीलैंड में होता है म्यूजिक मंथ और हम इसे हम पर भी सेलिब्रेट करते हैं. आज बैकियो बैकयार्ड बीट्स में हमने आज की जो आर्टिस्ट है ऑन द ब्रेकफास्ट शो इनका गाना आपको अराउंड 8 AM जो है ये सुनाया. सो रिमेम्बर अगर आपको इनका गाना ICU जो हमने प्ले किया था ये पसंद आया तो इनके लिए वोट आप जरूर कर सकते हैं. MM यानी म्यूजिक मंथ का शॉर्ट फॉर्म लिखना है, इनका नाम लिखना है और फिर 5599 पर आपको भेज देना है. एंड ऑनलाइन हमारे सोशल मीडिया पर भी जाकर आप वोटिंग जो है कर सकते हैं क्योंकि जो टॉप 3 वोटेड आर्टिस्ट्स होंगे उनके गाने फीचर होंगे ऑन रोवर ऐप और साथ में उनको इनाम जीतने का मौका भी मिलेगा. एंड ऑन द सेम नोट दिस मॉर्निंग आई हैव गॉट अ स्पेशल सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू क्योंकि जिस आर्टिस्ट के बारे में हम आपसे बातें कर रहे हैं यानी कि आज सुबह सुबह जिनका गाना हमने आपको सुनाया सेंसी प्रभाकर आज ये हमारे साथ लाइंस पर जुड़ चुकी हैं खुद अपनी जुबानी अपनी कहानी सुनाने के लिए. अ वेरी गुड मॉर्निंग सेंसी, कैसी हैं आप?
2: गुड मॉर्निंग, मैं बहुत अच्छी हूँ. हाउ आर यू?
1: ऑल गुड. आपसे बातें करने का इंतजार जो है ये हो रहा था ताकि आपके बारे में थोड़ी और चीजें जो है ये हम जाने और समझे. गाना तो आज हमने आपका सुना दिया और ऑफ कोर्स हमारे लिसनर्स को पसंद भी बहुत आया, पर आपकी ये जर्नी जो है द लव फॉर म्यूजिक ये कहाँ से शुरू हुई और कब शुरू हुई?
2: मेरी म्यूजिक की जर्नी आई थिंक बचपन से, क्योंकि माय डैड ही कम्स फ्रॉम अ वेरी म्यूजिकल फैमिली बट आई नेवर गॉट टू मीट माय ग्रैंड पेरेंट्स ऑन माय डैड साइड. उसके बाद मम्मी की फैमिली को भी लाइक म्यूजिक इन द सेंस ऑफ लाइक डांसिंग के लिए बहुत अच्छा लगता है और बचपन से मैं लिखती थी और बस मैं गाने सुनती रहती थी और तब से मेरे को समझ आया कि लाइक अगर मैं गा भी सकती हूँ और मैं राइट भी कर सकती हूँ तो मैं दोनों मिला के खुद के गाने क्यों नहीं लिख के गा सकती. तो आई थिंक मैं लाइक 8 की थी जब मैंने शुरू किया राइटिंग और एक बुक पब्लिश करवाई हमने, उसका नाम था पी बॉय. और उसके बाद से मैं बस लिखती रहती थी. फिर आई थिंक व्हेन आई वाज 10 आई स्टार्टेड राइटिंग माय ओन सॉन्ग्स एंड आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग देम. इट वाज वेरी सिंपल एट द स्टार्ट और फिर वहाँ से अब लोगों के साथ नेटवर्क कर करके लोगों से मिली, अपनी सिंगल्स रिकॉर्ड करवाए, रिलीज करवाए. तो हाँ,
1: सो एट अ वेरी यंग एज आपने कहा आपकी जो म्यूजिकल जर्नी ये शुरू हुई. आपने ये तो मेंशन किया कि आपके डैड जो है ये म्यूजिकल फैमिली को बिलोंग करते हैं, प्रोबेबली आपका इंस्पिरेशन आपकी इस जर्नी के लिए इफ आई एम नॉट मिस्टेकन वाज इट फ्रॉम हिम और देयर समवन इन योर लाइफ अपार्ट फ्रॉम योर डैड जिन्होंने आपको इंस्पायर किया कि दिस इज समथिंग इफ यू लव डूइंग इट व्हाई नॉट गो अहेड इन दिस?
2: आई थिंक कि पापा भी थे क्योंकि Dad always sung. He would always sing like little Arijit Singh songs, Kishore Kumar. Aur uske baad when we moved to New Zealand, I was 5 and I listened to an Ellie Goulding song for the first time. Uska naam tha Burn. Aur maine jab wo suna, mujhe aisa laga ki like, wow, like music is so powerful. And ever since then, I just knew that like music is what I want to do. That I love it.
1: That is interesting. अच्छा सेंसी, मैं आपसे एक बात पूछूं. आपने मेंशन किया कि आप खुद के गाने जो है कि आपने 10 साल की उम्र से लिखना शुरू किया. एंड व्हेन आई एम रीडिंग हियर योर बायो जिसमें आज हमने आपके बारे में बातें भी की थी, इसमें मेंशन है कि आपने ओवर 350 सॉन्ग्स लिखे हैं.
2: हाँ, ये सच है.
1: 350 से भी ज़्यादा गाने आपने लिखे. इट वुडन्ट बी फेयर बट आई एम स्टिल गोना आस्क दिस क्वेश्चन. इन सभी गानों में से आपको क्या लगता है आपका फेवरेट कॉम्पोजिशन जो आपने किया हो, जिस गाने को आपने लिखा, जिसका संगीत दिया, जिसको गाया, आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है?
2: ये मुश्किल सवाल है.
1: आई नो आई सेड इट्स अनफेयर बट आई हैव टू आस्क यू.
2: यार बहुत है क्योंकि लाइक हर गाना डिफरेंट इमोशन का लिखा गया है, पर आई थिंक मेरा गाना था वाई करके और आई थिंक मुझे वो वाला बहुत अच्छा लगता है. और एक और मेरा है जो इट्स अनरिलीज्ड पर वो बेसिकली इंडियंस के बारे में गाना है कि हमारे कल्चर को सब लाइक लेना चाहते हैं. एवरीबॉडी वांट्स टू बी अस बट नो वन वांट्स टू लाइक अप्रिशिएट अस. सो या
1: something we could relate to in today's time, I guess. But very interesting. And if I may ask you one more thing, itne sare achievements bhi aapke naam mein hai. You have been 2-time finalist in the Play It Strange Lion Foundation Songwriting Contest. और साथ में आई थिंक सिडनी में जो कंपटीशन हुआ था सुर सम्राट का उसमें आप थर्ड प्लेस जो है ये आई थी एंड सुसो ई बेस्ट वोकल कंपोजिशन जो है इसकी आप विजेता भी रह चुकी हैं.
2: यस.
1: सो इतने सारे अचीवमेंट्स ऑलरेडी आपके किटी में हैं. व्हाट इज दैट वन थिंग एज अ सॉन्ग राइटर एज अ सिंगर एज अ क्रिएटिव आर्टिस्ट आप टूवर्ड्स इट वर्क यू नो मेहनत कर रहे हैं कि ये एक अचीवमेंट है दैट आई रियली लाइक टू हैव इट अंडर माई नेम वो क्या है आपके लिए.
2: Right now, at this stage, I think abhi koi like award ke liye meko wo nahi hai, but I think the Aotearoa Music Awards, if I was like a finalist for them, because wo New Zealand ke sabse bade award show hota hai, musical artist ke liye, so I think wo, aur bas, I think meko tours pe jaane ka man hai, right now. I just wanna grow my like following, you know, aur promotion karna hai, aur बस ये करने का मन है.
1: दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. एंड हर आर्टिस्ट का वो एक होता है कि जब वो मेहनत करते हैं तो उनको वो इज्जत मिले उनके काम को उनके वर्क को इज्जत मिले एंड दे ट्रूली डिजर्व इट. एंड आई मस्ट से जिस तरह से आप हार्ड वर्क कर रही हैं वन डे आपका ये सपना भी पूरा होगा. बट बिफोर आई लेट यू गो सेंसी योर मैसेज टू ऑल दिस पीपल हु आर लाइक यू हु आर इन दिस कंट्री एंड दे माइट बी डूइंग समथिंग एल्स लाइक फुल टाइम एक जॉब भी होगा उनका लेकिन म्यूजिक उनका पैशन है आपके लिए उनके लिए क्या मैसेज है आपकी ओर से.
2: मेरा मैसेज है बस इफ यू लव समथिंग देन गो आफ्टर इट बिकॉज यू नेवर नो लाइक व्हेन इट्स गोना बी टू लेट यू नेवर नो व्हेन यू आर नॉट गोना हैव टाइम टू डू इट अगेन एंड इट विल जस्ट बी अ हॉबी लाइक इट्स फाइन इफ इट्स अ हॉबी बट इफ यू वांट टू मेक समथिंग लाइक योर फुल टाइम करियर then go after it. Go chase your dreams and dream big.
1: Thank you so much for your time, Sensi. बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातें करते हुए और definitely we wish you all the very best. आपका जो गाना है ये हमारे पास है और हम आपके साथ इस collaboration को लेकर भी बहुत खुश हैं. तो in future आपका और भी कोई भी ऐसा music release हो we'd love to support you in that and wishing you a very happy New Zealand Music Month as well.
2: Thank you so much, Pooja. Thank you.
0: Thank you. तो ये थी सेंसी प्रभाकर जिनसे आज बातें हो रही थी इस प्रोग्राम में जिसके साथ अब 22 मिनट हो रहे हैं 9:00. What's up, Auckland? तमाम चीजें हो रही हैं हमारी कम्युनिटी में हमारे आसपास. सबसे पहले याद रखें श्री वेंकटेश्वर देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट का भोजन मेला ये होने जा रहा है इसी रविवार को दिन में 11 से 4 बजे तक 378 अररीमू रोड रामारामा में. एंट्री फ्री है सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्री है खाना फ्री है और कुछ स्टॉल्स वगैरह यहाँ पर होंगे जहाँ से आप चीज़ें खरीद सकेंगे. बच्चों के लिए फेस पेंटिंग बाउंसी कासल आदि होगा तो आप आकर इस प्रोजेक्ट को ज़रूर अपना सपोर्ट दे सकते हैं.
1: और इसके अलावा आपको याद दिला दें कि इसी सैटरडे को होने वाला है खास आपके लिए 147th गिरमिट फाउंडेशन या 147th गिरमिट रिमेम्बरेंस डे फीजी गिरमिट फाउंडेशन द्वारा ये होने वाला है. एंड सैटरडे 16 मई को मलायोलो कम्युनिटी सेंटर में रहेगा. इट्स 16 वाकारी प्लेस मैंगरी 4:30 PM टू 8:30 PM. द डोर्स विल ऑफिशियल प्रोग्राम जो है ये रहेगा बट द डोर्स विल ओपन एट 4 PM. तो यहाँ पर एंट्री बिल्कुल मुफ्त है आपके लिए. कैन डेफिनेटली कम डाउन एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस. कैंडल कमेमोरेशन यहाँ पर रहेगा. आर्टिफैक्ट डिस्प्ले होगा. सीनियर्स रिकग्निशन अवार्ड भी यहाँ पर दिए जाएंगे. बहुत सारे कल्चरल परफॉर्मेंसेज के साथ साथ लाइव सिंगिंग रोल प्ले और ऑन स्पॉट प्राइजेस भी जीतने का मौका आपके पास रहेगा. गिरमिट दिवस क्या होता है गिरमिट रिमेम्बरेंस डे क्यों मार्क किया जाता है और फिजी गिरमिट फाउंडेशन इसके साथ क्यों इस तरह से डीपली जुड़े हुए हैं बहुत सी चीज़ें हैं. एंड एज आई ऑलवेज से व्हेनेवर आई हैव स्पोकन अबाउट दिस इवेंट की इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टेंस ऑफ फिजी इंडियंस इन फिजी तो आप डेफिनेटली इसका हिस्सा बन सकते हैं.
0: साथ ही में दी वाइब मिक्स इवेंट्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं ग्रैंड मस्ती नाइट. नेक्स्ट वीक सैटरडे को नेटबॉल होल मनुरेवा में ये होने जा रहा है. अ नाइट फुल ऑफ फन एंड एंटरटेनमेंट. द डांसिंग लेजेंड 17 सालों के बाद वापस आ रहे हैं न्यूजीलैंड चर्फर. साथ में फेमस पर्सनैलिटीज SN जय भैया जी राउडी नमन डुअल वॉइस सिंगर मनी डिसूजा साथ में मोंटो मोनिका युवा डांस ग्रुप हमारे अपने केतन ये भी परफॉर्म कर रहे होंगे. बहुत सारे गिव अवेज हैं आपके लिए खाना पीना है, फ्री पार्किंग एंड सिक्योरिटी प्रोवाइडेड। टिकट्स अब आप ले सकते हैं जो बहुत तेजी से बिक रहे हैं, हंटर्स फूड टाउन पापटोई टोए, जेस फ्रेश मार्ट पापटोई टोए, गेट फ्रेश सुपर मार्केट मैंग्री, कैस हेयर एंड ब्यूटी सलून मनु रेवा, विकेट चिकन बॉटनी डाउन्स, जेंडर हेयर एंड ब्यूटी सलून, कैवेंडिश ड्राइव मेनुकाउ, और यहाँ से जाकर अपने टिकट्स आप ले सकते हैं।

0: Radio.
1: Streaming on Rover.
2: Bathroom moisture from shower steam. It's a problem in most homes, so eliminate steam with a Shower Dome shower top. With Shower Dome, you get a warmer, drier bathroom and a lifetime guarantee. That'll give you the warm fuzzies. Showerdome.co.nz.
3: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं. फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है. इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम. परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV. जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स. आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले. फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल.
4: Adore your floor for less with Flooring Extra's Walk Into Winter Sale. Here's your chance to save on their range of best-selling carpet and hard flooring. Discover the sale at your local Flooring Extra today.
5: Flooring Extra. Adore your floor.
6: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
7: क्यों, क्या हुआ?
6: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
8: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
9: Welcome to Kebabs Kitchen. I am Chef Alex और ये है मेरी गेस्ट सेरा.
10: क्या बनाते हैं कबाब को स्पेशल, Chef Alex?
9: Perfect blend of spices, tender meat और fresh vegetables. हर कबाब बनता है with love and passion.
10: Wow, these kebabs are amazing. Spices एकदम right and meat is so juicy.
9: ये है अम्मा's kebabs promise, delivering happiness bite by bite. अम्मा's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
10: 100% authentic and pure as mother's love.
11: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
12: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है. सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
13: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 0927994399 और विजिट लीगल एसोसिएट्स.co.nz.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: 28 मिनट हो रहे हैं 9 बजकर ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम या फिर अरोवा पर आप एंजॉय कर रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर लवली कंपनी दिस मॉर्निंग. एंड एक और हमने आपको बताया है कि हम फ्लाई अवे फ्रेंजी इसी वीक खत्म होने को है. एंड कम नेक्स्ट वीक शेड्यूल जो है ये भी खत्म हो जाएगा.
3: यस, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं है. ऑल द एक्साइटिंग प्राइजेस जो है दे आर कमिंग टू एन एंड. और फिनाले जो है किसका होने वाला है, अगर अभी तक आपने इसमें पार्ट नहीं लिया है, यू स्टिल हैव सम टाइम, एटलीस्ट अ फ्यू मोर डेज टू गो. डू ट्राई योर लक बिकॉज यू नेवर नो कि आपका लक आपके काम आ जाए और आप विजेता बन जाए. जहां पर शेड्यूल में टोटल ऑफ $7,000 हमने गिव अवे किए हैं. यू कैन डेफिनेटली विन योर शेयर. और उसके अलावा हमारा जो फ्लाईवे फ्रेंजी, इसके तहत हम गिव अवे कर रहे हैं रिटर्न एयर टिकट टू फिजी. रिमेंबर, इसका जो एंड डेट ये इसी फ्राइडे को है. सो इट्स कमिंग टू एन एंड दिस फ्राइडे. दिस इज द फाइनल वीक. तो अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए सिर्फ आज और कल तक के लिए है.
2: तो इसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें. कई चीज़ें जो है ये हो रही हैं. जो हमारी मौरी क्वीन है, शी इज़ बीन ऑन अ टूर और उन्होंने मुलाकात की है विद प्रिंस विलियम एट द विंडसर कासल इन यूनाइटेड किंगडम. और ये मीटिंग वॉज द फर्स्ट टाइम अ मौरी मोनार्क हैड मेट अ मेंबर ऑफ द यूकेस रॉयल फैमिली एट द कासल. इन सभी चीजों के बारे में प्लस कुछ और चीजों के बारे में डिटेल्स बस थोड़ी देर बाद इस प्रोग्राम में हम आपको देंगे.
0: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड.
4: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
5: मैं लाऊं अपना ए गेम.
0: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स. बिल्ड योर ड्रीम.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: With a gym personal loan, you can give your old kitchen a makeover. Combine multiple debt repayments into one. Or get from A to B in a new CAR. And for a limited time, pay zero establishment fee, saving $240. Search Gem Personal Loans and check your personalised rate in under 2 minutes, with no impact to your credit score. Establishment fee waived till May 19th, 2026. Lending criteria, TCs, fees and other charges apply.
2: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? Switch to Leap Motor C10 और B10 Ultra Hybrid और Electric. सिर्फ 44,990 plus on road से शुरू. Visit Armstrong's Leap Motor Green Lane or Botany. T's and C's apply.
3: With the Genesis app, LPG delivery feels easy. Switch to Genesis LPG Empower to get $15 credit per bottle delivered, plus 50 free power shout hours. Eligibility criteria and terms apply. Genesis, with you, for you.
1: Looking for that unforgettable holiday in paradise?

0: Fiji Airways is on sale now. Fly to Fiji from just $309 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations like LA and San Francisco from just $939 one way. Or fly to Vancouver from only $999 one way. Book now at FijiAirways.com or call your travel agent. Conditions apply.
1: Do you know why so many of your neighbours are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mould and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
2: Shower dome.
3: Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
5: What's going on?
6: 20 मिनट रह गए हैं 10 बजने में और बेंगलुरु के एक कपल की कहानी जो है ये अभी काफ़ी वायरल हो रही है. एंड ये हस्बैंड वाइफ जो हैं दे आर आईटी प्रोफेशनल्स. इनका नाम है दनिश अब्दी और वृशाली प्रसाद. इन्होंने इतिहास कायम कर दिया है.
7: ऐसा क्या किया
6: इन्होंने? दे आर द फर्स्ट कपल टू कंप्लीट अ साइड बाय साइड ओपन वाटर स्विम.
7: आई थिंक आई हैव सीन द वीडियो, क्योंकि इनके बारे में बहुत बातें हो रही हैं. बट इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग स्विम, क्योंकि इन्होंने आई थिंक फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका तक का कुछ तय किया ना.
6: नहीं नहीं
7: नहीं, ओ दैट्स अ डिफरेंट वन देन.
6: श्रीलंका से इंडिया किया है.
7: Oh, Sri Lanka is India. Oh, that's the right one.
6: along Ram Setu, 7th May ko, इन्होंने 32 किलोमीटर स्विम किया. सुबह 4:30 बजे इन्होंने शुरू किया और जाकर शाम 3:15 बजे के वक्त तमिलनाडु ये पहुंचे. 10 hours and 45 minutes का स्विम इनका.
7: Wow, यार, such couple goals, I would say, me and my husband. I think probably we can go to sleep for 10 hours straight.
6: Not me.
7: ये कर सकते हैं. No, we can. We can. ये ऐसे records तो हम नहीं बना सकते, but ये जरूर कर सकते.
6: तो काफ़ी वीडियोस जो हैं ये इनके वायरल अभी हो रहे हैं. वेयर दे वर सीन बैटलिंग रफ वाटर्स. हवाएं जो हैं ये अपनी दिशा बदल रही हैं. स्ट्रॉन्ग ओशन करंट्स जो हैं बार बार इनको ऑफ कोर्स ले जा रहे थे, यू नो, जिस दिशा में इनको जाना था उससे हटा रहे थे. एंड द क्रॉसिंग वॉज कंडक्टेड अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन. सेफ्टी सुपरविजन जो है ये उनको दिया गया. सपोर्ट बोट्स, पैरामेडिक्स, इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सनल जो हैं ये अकम्पनी कर रहे थे दोनों पति पत्नी को थ्रू आउट द रूट. एंड द डे वी स्विम फ्रॉम श्रीलंका टू इंडिया एंड बिकम द फर्स्ट एवर कपल टू डू सो, ऑल आवर ट्रेनिंग एंड प्रिपरेशन विल बी टेस्टेड ऑन दिस स्विम एंड वी फील वी आर रेडी फॉर इट. ये उन्होंने अपने वीडियो में कहा था एंड देव मैनेज्ड टू डू इट.
7: आई थिंक सिर्फ 4 साल इन्होंने कुछ ट्रेनिंग की है इसके लिए. It's not an easy thing that they have done this, but they did 4 years of training, and then after that they felt like they were ready, and they finally did it. जिसके बाद चलकर एक achievement तो है भाई, बहुत बड़ी achievement है, and of course इनको recognition जो है ये भी मिल रहा है.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chupo jao, papi ho. Chupo jao.
2: वैसे बिफोर वी गो, क्योंकि हमारा जाने का समय भी हो रहा है, बहुत ही जल्द वील हैव टू से टाटा गुड बाय टू यू. आज हमने ये जरूर नोटिस किया कि आप थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, यू नो, व्हेन इट कम्स टू टेकिंग पार्ट इन कॉम्पिटिशन्स. बट हमने सोचा क्यों ना जाते जाते एक मौका और आपको हम दे दे. दिस टाइम अराउंड व्हाट्स हैपनिंग इज कि हम आपको एक मौका दे रहे हैं वाइब मिक्स इवेंट्स की ओर से, द ग्रैंड मस्ती नाइट. इसके लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है टू विन अ डबल पास. और अगर आप इंटरेस्टेड हैं ग्रैंड मस्ती नाइट का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि ये हो रहा है नेक्स्ट वीक सैटरडे को, जहां पर ऑफ कोर्स बहुत सारे कमाल की चीज़ें होने वाली है, ऑन स्पॉट प्राइजेस भी आप जीतने वाले हैं, बहुत सारे स्टेज पर यू नो डांस परफॉर्मेंसेस होंगे, म्यूजिकल सिंगिंग परफॉर्मेंसेस होंगे, जो लाइव डीजे परफॉर्मेंस है ये भी होगा. तो इसके लिए आप अगर डबल पास जीतना चाहते हैं, ऑल यू नीड टू डू इज आपको बस अपना जो नाम है ये लिखकर हमारे पास भेज देना है. सबसे पहले BF लिखे, फिर अपना नाम लिखे और 5599% कर दे. तो और कल हम रिवील करेंगे कि हमारे साथ किसने जीता है ये.
3: तो आज का जो विजेता बनने का ये फाइनल चांस है आपके पास, और अभी से बिटवीन 10 AM ऑल यू गॉट टू डू इज BF, उसके बाद अपना नाम लिखे और 5599 पर आप हमारे पास भेजें. अगर आप जीतना चाहते हैं पास,
2: यस एब्सोल्युटली, सो BF योर नेम 5599 पर भेज दे और कल हम बताएंगे कि किसने हमारे साथ ये डबल पास जो है जीता है. फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर

0: वक्त हो चुका है दो बातों का, और आज दो बातें जो है, पहली बात कहते हैं कि जिंदगी में मिलने वाला हर शख्स होली सा होता है।
1: होली सा क्यों?
0: अब सोचो होली सा क्यों होता होगा?
1: I don't really know, but something to do with colors, I believe. यार कोई अपना रंग दिखा देता है।
0: कोई रंग बदल लेता है तो कोई रंग भर देता है।
1: अच्छा, इंटरेस्टिंग।
0: यस, बड़ा सिंपल है लेकिन कभी हम सोचते नहीं इसके बारे में ना,
1: पर सच्चाई बहुत है इस बात में।
0: ऐसी चीजों का ख्याल भी नहीं आता मन में। और दूसरी बात कहते हैं कि धूल चाहे कितनी भी ऊंची चली जाए, धूल चाहे कितनी भी ऊंची चली जाए मगर कभी आसमान को गंदा नहीं कर सकती।
1: ओह यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। चले, दो बातें तो हो गई और उम्मीद है कि आज की इन दो बातों से कुछ सबक आपको भी मिला हो अपने जीवन में एक पॉजिटिव चेंज लाने का, अपनी सोच में एक पॉजिटिव चेंज लाने का। और इसी उम्मीद के साथ अब आपसे हम चाहेंगे इजाजत जाने की। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात अब होगी कल एक बार फिर ठीक से बच्चे पर।
0: और जाने से पहले वक्त है अभी आपके पास, याद रहे अभी तक तो शेख अली हैं, नीलेश दयाल हैं, कमल लता हैं और कविनेश हैं जिन्होंने अपने टेक्स्ट मैसेजेस 5599 पर हमारे पास भेजे हैं। आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है कि आप हमारे हमारे पास अपना जो मैसेज है ये भेज दें। बस BF लिखना है और अपना नाम लिखना है और भेज देना है, क्योंकि कल ड्रॉ होगा और पता चलेगा कि आप में से कौन है जिनको एक डबल पास जो है ये मिल रहा है टू गो एंड वॉच ग्रैंड मस्ती नाइट। ये नेक्स्ट वीक सैटरडे को होने जा रहा है। अंटिल देन टेक केयर।

0: gentlemen, दिल थाम के बैठे क्योंकि आ रही है
1: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल. हाउ आर यू? देखिए आज तो हम पवार हो गया. बातें करते करते पता नहीं चलता कि आपको सामने दिखाई दे रहा है वीकेंड. परसों का क्या प्लान है? परसों रात का? अरे भाई जो भी प्लान हो वीकेंड पर आपको पता है आप मस्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं जो मैं आपको पूरे हफ्ते भर बताती चली जाती हूँ कि समय आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है. आप देर कर सकते हैं पर समय नहीं करेगा. ओके, सो रिमेंबर दैट पार्ट. माई टाइम आपके लिए मैं काशिका लेकर आ जाती हूँ 10 से 12 बजे तक. और आपका मेरा जो एक बहुत ही खूबसूरत सा नाता है, जो हमारा रिश्ता है, वो है दरअसल समय से रिलेटेड. और समय के इस समय जो हमें मिलता है उसमें हम क्या क्या करते हैं, उसे किस तरह से निभाते हैं, बस यही सब बातचीत हमारी मंडे टू फ्राइडे 10 से 12 बजे कशिश फूड्स के सौजन्य से मुमकिन हो जाती है. भाई ये 10 से 12 बजे का सफ़र तो होता ही होता है, इसमें कुछ एक्सपर्ट बातें भी होती हैं और कुछ जीतने जिताने की बातें भी होती हैं, है कि नहीं? जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि फ्लाई वे फ्रेंजी लास्ट 2 डेज़ बचे हैं बस. अब ये ड्रॉ भी जल्दी होने वाला है, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा रुवा ऐप के ज़रिए जाकर अपना नाम वहाँ नहीं अंकित किया तब तक तो कुछ भी नहीं हो पाएगा. यानी कि अगले घंटे पर तैयार रहिएगा हम फ्लाई वे फ्रेंजी का कोड जानने के लिए, क्योंकि हो सकता है वो रिटर्न टिकट टू फीजी आप जीत जाएँ. ओके, ये तो हो गया. इसके साथ साथ हमारे पास एनजेड म्यूजिक मंथ है, 6 वर्ड स्टोरी है, ऑफिस शाउट आउट है. भाई बताइए किस ऑफिस से सुन रहे हैं ताकि मैं आपको शाउट आउट दे सकूं. चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और वेलकम करते हैं आपको. हाउ आर यू?
2: बचाओ क्या?

तुमसा कोई दूसरा इस जमीन पे हुआ तो रब से शिकायत होगी। तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत।

0: Birds Adda.
1: जो मेट गाला जो आजकल सब ट्रेंड कर रहा है ना, और जब ये मेट गाला जब ये ट्रेंड कर रहा है, सब अपने अपने इमेजेस बना बना के उसमें ऐड करते हैं। बट एक बात बताऊं, चाहे वो कांस हो, मेट गाला हो, कुछ कोई भी आप एक ओकेजन लीजिए, ऐश्वर्या राय बच्चन ये वाकई ही बहुत ही एक प्रैक्टिकल तरह की चीज़ें लेकर आती हैं। ओवर द टू डेकेड्स एक्स मिस वर्ल्ड, ये किस तरह से कांस में पहुँच के अपने ग्लोबल फ्रेंड्स को एक वो देती हैं कि एक चैलेंज कि देखो मैं ये भी कर सकती हूँ। अफकोर्स इनका आपको याद है 2016 में एक इन्होंने एक बड़ी इनफेमस चीज़ जो की थी, वो की थी लेवेंडर पर्पल लिपस्टिक। अब उन दिनों में रेड कार्पेट पे जो चलते थे वो ब्लश लगाना, ये करना, वो करना, इस तरह के लुक्स आते थे। बट एग्जैक्टली मैं ये बताऊँ, शी वॉज ऑपोजिट ऑफ एवरीथिंग एंड दैट इज़ वाई शी इज़ द अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ कांस। ये किसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स जो होती है वो करने से शर्माती नहीं है, चाहे वो उसको आप प्रेप मोड में आप समझ लीजिए कुछ कर लीजिए, या फिर कोई एक वीकेंड डिनर हो या कुछ हो, लेकिन इनके लिप कलर का जो गैम्बल होता है ना, वाकई ही याद रखते हैं। ये फ्रॉस्टी लिपस्टिक बहुत डिफरेंट थी एंड बहुत अलग थी, एंड इट वॉज लाइक शी इज़ अ फैशन पुलिस, आई कुड से दैट। तो इनका ये एक सिग्नेचर लिप्स के ऊपर जो था बोल्ड प्रेजेंटेशन, वाकई ही देखा जाता था। बट शी ऑलवेज नेल्ड इट। अब इनके आइकॉनिक क्लासिक रेड्स जो होती थी या ग्लॉसी न्यूड्स, ये इसके साथ कॉम्प्लीमेंट करती थी। अब आपके लिए क्या ये लेसन है, अगर आपका आउटफिट एक आपकी बाउंड्रीज पुश कर रहा है और आपको पता है दैट प्रॉब्ली दिस पर्टिकुलर कलर आपको सूट कर सकता है, या वाइस वर्सा आपका कलर लिपस्टिक का कुछ है लेकिन आपको लगता है उसको आपके कपड़े जो है कॉम्प्लीमेंट करें, सो इट गोज हैंड इन हैंड। आपको इन बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी लिपस्टिक का कलर क्या है उस टाइम पे। आपकी आईज़ बहुत कुछ बोल जाती हैं, ऐसे में चाहे आप वो सफ़ायर स्मोक्ड आउट आईलिड्स हों, या फिर आप हैवी काजल लगाते हों, या कुछ भी आपको लगता है कि आप आपकी आँखें जो है बहुत बहुत इम्पैक्ट करती हैं, जस्ट आईलाइनर या जस्ट आई शेडो, क्या आप इसको लगता है कि आप अच्छे से कैरी कर पाते हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट करता है आपकी लिपस्टिक के साथ। ऑलराइट लेडीज़, कुछ चीज़ें ऐसी होती, व्हाई डिड आई हैव टू टेक हर नेम, रीज़न बीइंग कि ये आउट एंड आउट एक्सपेरिमेंट्स करती हैं, और आपको भी अपने कंफर्ट जोन से निकलकर ये एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, चाहे वो अपनी आइज़ को किसी बार, चाहे वो कभी आपके लिप्स को, कभी आपको इस तरह से एक लुक जो है अपना कंटिन्यूसली चेंज करते रहना है। एक चंकी सा हाइलाइटर डेफिनेटली ऑन लेयर ऑफ फाउंडेशन विल एक्चुअली मेक योर स्किन ग्लो एंड लुक ब्यूटिफुल, चाहे वो आप मैट फिनिश देना चाहते हैं या ग्लॉसी लुक देना चाहते हैं, या वो एक पेपराजी लग्जरी लुक देना चाहते हैं। एंड हर नेम कम्स इन द पिक्चर फर्स्ट, रीजन बींग बिकॉज शी लव्स टू एक्सपेरिमेंट एंड She can't be a better example for you. इससे बढ़िया example कोई नहीं हो सकता कि ऐश्वर्या जगर कर सकती हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। हम भी अपने आप में एक ऐश्वर्या को ढूंढना चाहते हैं कि किस तरह से हम आई डिटेलिंग करें अपनी, अपने लिप्स को हम ध्यान से देखें, या चीक्स हों, या फिर आपके बाल, एक सिंपल हेयर स्टाइल, सिंपल बन, वो भी एक तरह से बहुत ज़्यादा वर्कआउट करता है। क्लासिक लुक से एक मॉडर्न लुक तक आप उसे किस तरह से कैरी कर पाते हैं।
0: My time with Kashika.
2: आजकल चल रहा है बहुत न्यूज में, आप भी तो नहीं।
0: May month is NZ Music Month. ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, ये है इमोशन, पैशन और थोड़ा सा देसी स्वैग। Presenting Back Your Backyard Beats, जहां हर गली हर कॉर्नर से निकलता है एक नया सुपरस्टार। आज का लोकल आर्टिस्ट कल का ग्लोबल सेंसेशन, तो क्यों ना आज से ही उनका साथ दे। ट्यून इन करो और अपने Backyard Beats को दो फुल सपोर्ट। Back Your Backyard Beats, brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. And Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. The Vibe Mix Events presents
3: The Grand Musty Night in conjunction with Freight and Cargo Brokers, Low Finity in Wicked Chicken Botany Downs on 23rd May at Manurewa Netboard from 6 PM. Show featuring comedy, dance and giveaways with stars Satya Anand, Jay Bhaiyaji, Rowdy Naman Chapar alongside Money, Moto, Aku and Ketan. Tickets available at Get Fresh Mingri, Jay's Fresh Mart, The Agenda, Hunter's Food Town, Guest Manurewa and Wicked Chicken Botany.
0: Don't miss out.
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279 439 और विजिट legalassociates.co.nz।
7: The Red Hot Sale is on now at Mazda, with great deals across a range of SUVs. But hurry, these prices are too hot to last. Don't miss out. Head to Mazda.co.nz and book a test drive today. Mazda.
8: Beating pump prices is easy with Auckland Transport. Simply use your Hopcard, credit or debit card, smartphone or smartwatch to tag on and off buses, trains and most ferries. Search AT Journey Planner and save when you mix your go with AT.
9: Danny didn't think he needed a DVS system.
10: Our whole house was damp, so I got a dehumidifier to sort it.
9: But it didn't sort the whole house, did it, Danny?
10: Nah, only one room. It was just too noisy.
9: So Danny got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making his whole home drier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
11: बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
12: क्यों, क्या हुआ?
11: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
13: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424।
0: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
14: Office shout out.
1: ऑफिस शाउट आउट में डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि मैं तानिया आपको एक ऑफिस शाउट आउट देना चाहती हूँ। और आपने कहा आप घर से काम करती हैं, आप बहुत सारा कम्युनिटी वर्क करती हैं और जितने भी लोग सुन रहे हैं, सो तानिया मेहरा की तरफ से अ वेरी वेरी बिग हेलो टू ऑल ऑफ यू। तो ऑफिस शाउट आउट में आपने अपनी कंपनी का नाम या अपना वो तो लिखा नहीं, बट आपने सिर्फ एक मुझे कॉल करके ये बात बोली कि भाई मैं अपना काम घर से कर रही हूँ एंड आई एम वर्किंग राइट नाउ फॉर कम्युनिटी। सो थैंक यू सो मच तानिया इस चीज़ के लिए। एंड आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, लेकिन इससे पहले कि मैं प्रोग्राम में आगे बढ़ूँ, मुझे कुछ कुछ बातें होती हैं याद दिलानी होती हैं आपको, ख़ासतौर पर कम्युनिटी में क्या हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अगर हम सैटरडे की आने वाले, तो सैटरडे को 147th गिरमिट रिमेम्बरेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है एट द मलायोला कम्युनिटी सेंटर। 4:30 से 8:30 तक ये होगा। ये एक फ्री इवेंट है जहाँ पर आप बिल्कुल पहुँच सकते हैं और आप यू नो वहाँ पर अटेंड करके ये सब देख सकते हैं कि यू नो आर्टिफैक्ट डिस्प्ले होगा, सीनियर्स रिकग्निशन अवार्ड होगा, कल्चरल परफॉर्मेंस होंगे, गाने होंगे, कुछ क्विजेस, स्पॉट प्राइजेस, कुछ स्पीचेस होंगे। तो आप अगर बिलोंग करते हैं टू फीजी या ना भी बिलोंग करते हैं फीजी, ये बहुत ही खूबसूरत है। मैं हर बार जाती हूँ और जाकर मैं इसमें इतना इन्जॉय करती हूँ, ख़ासतौर पर जो परफॉर्मेंसेज होती हैं और ख़ासतौर पर जब कम्युनिटी के बाकी के लीडर्स आकर इसे सपोर्ट करते हैं। तो फीजी गिरमिट फाउंडेशन के आप पेज पे चले जाएं फेसबुक के और डेफिनेटली जाके रजिस्टर कर सकते हैं अगर आप वॉलंटियर भी करना चाहते हैं।
0: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: Time with Kashika.
1: Wow.
2: How?
1: Adbhut.
3: अद्भुत बात यह है कि जब आप इकट्ठे मिलकर आ जाते हैं और कहीं पर आप पहुंच जाते हैं तो श्री वेंकटेश्वरा देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट में भी आप इस आने वाले संडे के दिन पहुंच सकते हैं सुबह 11 से लेकर 4 बजे तक। ये एक सपोर्ट होगा टू द लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल प्रोजेक्ट, जहां पे बहुत ही खूबसूरत सा एक निर्माण किया जा रहा है मंदिर का, लेकिन वहां पर भोजन मेला एक कार्निवल किया जा रहा है 378 आरआरएमओ रोड रामारामा में, जहां पे फ्री एंट्री, फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्री खाना आपके लिए है फ्रॉम शिवानीज रेस्टोरेंट एंड इडली सांबर, ज्वेलरी क्लोथिंग के स्टॉल्स हैं शॉपिंग करने के लिए, है ना, आर्टिस्ट है, फेस पेंटिंग है, बाउंसी कासल है, आप यहाँ पर पूरा दिन भर आप आ सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें फ्री में हैं और बच्चे इंजॉय कर सकते हैं 11 से 4 बजे के बीच में। एंड दिस इज हैपनिंग ऑन दिस संडे भोजन मेला नाम से।
2: Are you ready?
4: थोड़ा सा हॉल बना दे।

0: एक्सपर्ट्स अड्डा।
1: वैसे आज एक्सपर्ट अड्डा में मेरे पास मयंक जी वेडनेसडे एवरी अल्टरनेट वेडनेसडे को आ जाते हैं, लेकिन आज का जो मेरा सवाल है ना, थोड़ा हटके सवाल है, एंड आई एम वेरी श्योर ही विल बी कमिंग विद सम काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन। ओके, लेट्स टेक हिम ऑन लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल। गुड मॉर्निंग मयंक जी, कैसे हैं आप?
2: मैं एकदम ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग कशिका जी, आप कैसे हैं?
1: मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। मेरे साथ एक सवाल आया है, बड़ा अटपटा सा, मैंने सोचा आपसे पूछूं।
2: Sure.
1: तो आजकल के जमाने में हम देखते हैं AI हर एक चीज में इस्तेमाल हो रहा है, राइट फ्रॉम स्टॉक्स पिकअप करने हो या ईमेल्स को हम लिखने की बातें करते हैं। विथ ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, क्या आपको लगता है AI मॉर्गेज टूल्स जो है 2026 में हमें इस्तेमाल करने चाहिए, या फिर हमें स्ट्रेट अवे आपको या एडवाइजर जैसे आप हैं इनका इस्तेमाल करना चाहिए, या AI टूल के जरिए हमें जाना चाहिए? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन एक्सपर्ट एंड एन हाई टेक AI मैन और वुमन?
2: सही क्वेश्चन है, और आई वुड से ये क्वेश्चन ऑफ द ईयर कहा जाएगा डेफिनेटली। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि AI हमारे लिए ईमेल्स लिख सकता है, AI नंबर्स क्रंच कर सकता है, वेरी क्विक कैलकुलेशंस कर सकता है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि वो फ्लुएंट है, डज इट मीन कि वो रिलायबल है? वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है इसका, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, रिलायबिलिटी आई थिंक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है फॉर एवरीबॉडी। ऊपर से रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड एक्चुअली फ्यू मंथ्स अगो उन्होंने AI को बोला था कि AI कैन हेलुसिनेट। व्हाट इट मीन्स इज केस कि AI कैन कॉन्फिडेंटली give you the wrong answer. ठीक है, अब थोड़ी एक और चीज फाइनेंस के बारे में बात कर ले कि अगर हमें क्या चाहिए, तो हमें ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट चाहिए when it comes to your finances, because as a human, as a advisor, we know कि आपका फ्यूचर प्लान क्या हो सकता है, इन करंट मार्केट जॉब सिक्योरिटी कैसी है, एंड बेस्ड ऑन दैट हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी बोरोइंग कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए। ऑफकोर्स AI को ये सब चीजें नहीं पता, इवन आप उसको बताएंगे तो भी वो इंफॉर्मेशन किसी गूगल की कोई वेबसाइट पे होगी, वहां से लेकर आपको वो अच्छे वर्ड्स में दिखाएगा, बट इट विल नॉट बी एबल टू टेल यू कि एग्जैक्टली आपकी बोरोइंग कैपेसिटी क्या है और आपको कितना बोरो करना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि कई बार ऑफकोर्स जो बैंक के गाइडलाइंस हैं वो कहीं सब जगह पे अवेलेबल नहीं होते, बिकॉज वो गाइडलाइंस अपने बैंक के अपने होते हैं और कई बार वो डिफरेंट भी होते हैं बैंक बाय बैंक। तो हमें एज एडवाइजर हमें बैंक से बात करनी पड़ती है, नेगोशिएट करना पड़ता है। ऑफकोर्स AI जो है वो नेगोशिएट तो कर नहीं पाएगा ऑन क्लाइंट के बिहाफ, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द अकाउंटेबिलिटी। जैसे हम लोग फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, अगर मान लो हमसे कोई गलती हो जाती है और क्लाइंट अगर हैप्पी नहीं है हमसे, तो एक कंप्लेंट प्रोसेस फॉलो होता है, एंड दैट कंप्लेंट कैन गो ऑल द वे अप टू फाइनेंशियल मार्केट अथॉरिटी, एंड अगर क्लाइंट सही है तो उनको पूरा का पूरा चीजें रीइंबर्समेंट मिलता है। वाइल अगर AI के केस में कंप्लेंट करने के लिए कुछ है ही नहीं, बिकॉज यू आर जस्ट टॉकिंग टू अ मशीन,
1: राइट?
2: ठीक है, सो मेरी एडवाइस लिसनर को यही

0: होगी कि अगर आपको होम लोन्स के बारे में बात करनी है तो फील फ्री टू रीच आउट टू ह्यूमन बीइंग लाइक अस एंड ठीक है, और हम हियर टू हेल्प. और दूसरी बात, जस्ट सेम एज एआई, हम लोग भी फ्री सर्विस है, हमारे कोई चार्जेस क्लाइंट्स के हम पास ऑन नहीं करते हैं. ठीक है, हाँ कोई केस में करना पड़ता है, बट मोस्ट केसेस में वो फ्री सर्विस है, बिकॉज हमें बैंक से पैसे मिल जाते हैं, फीस हमारी.
1: बिल्कुल.
0: सो इट्स नो ब्रेनर फॉर क्लाइंट्स, यूज अस. और हमारी इंफॉर्मेशन ऑफकोर्स गूगल पे अवेलेबल है, हमारा फोन नंबर 0800 नंबर तो है ही, बट मेरा डायरेक्ट डायल नंबर है 0271810000. That's 0271810000, या ईमेल एड्रेस mayank@squirrel.co.in.
1: एब्सोल्युटली. एंड ये एक टॉप ब्रोकरेज के न्यूजीलैंड एडवाइजर के तौर पर भी रह चुके हैं, मयंक पटेल का नाम आप भूलिएगा नहीं. स्क्विरल मॉर्गेजेस से ये हमारा साथ अभी दे रहे थे, और फिर आई थिंक वी हैव वन मोर सेशन टू गो विद यू ओवर हियर इन माय टाइम. तो कोई सवाल हो तो डेफिनेटली आप हम तक पहुंचा सकते हैं. थैंक यू सो मच मयंक फॉर टुडे.
0: थैंक यू कशिका जी.
1: टेक केयर, बाय बाय. माय टाइम विद कशिका ब्रॉट टू यू बाय कशिश फूड्स. ईट बेटर, लिव बेटर.
2: Bro, look at you. Blue light screen को इतना घूर रहा है जैसे वो तुझे प्रमोशन दे देगा. और ये कॉफी lukewarm, a taste बिल्कुल heartbreak जैसा. Please sir, तू cubicle के लिए नहीं बनाए, तू beach के लिए बनाए, तू life को enjoy करने के लिए बनाए.
3: Listen to Hum on Rover every weekday at 8 a.m., 11 a.m., 1 p.m. and 5 p.m. Hum denge ek special code word. You've got 60 minutes to enter it in the Rover app and go in the draw to win a trip to Fiji. So what are you waiting for? Download the Rover app now. Win a trip to Fiji. Only on Hum on Rover. T's and C's apply.
4: At Bunnings, we've got a wide range of rugs to make your home cozier this winter. From plush rugs to hard-wearing styles for busy areas and fun designs to brighten the kids' rooms. We make cozy easy this winter. Lowest prices are just the beginning.
5: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
6: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
5: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
6: Available at selected branches. T's and C's apply.
7: South Auckland Motors' biggest sale ever is on now. Save thousands on new, demo and used cars. With big deals, big choices and big savings. On now but ends Sunday at South Auckland Motors, Manukau, Botany and Pukekohe.
8: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
1: ड्रीम डायरी में आज मेरे पास एक्चुअली कल ही आया था, और मैं वेट कर रही थी कि मैं कब आप लोगों के साथ बातचीत करूं और आप लोगों को इसके बारे में बताऊं. तो इनका ड्रीम था कि इनको टोटली डिफरेंट, ओके नाउ आई पिक दिस अप एंड आई टेल यू. उन्होंने कहा था कि शी ड्रीम्ड अबाउट गेटिंग प्रेग्नेंट. अब क्या तब शी से तभी तो प्रेग्नेंट होने का सवाल ही नहीं होता. दोनों बच्चे मेरे समय यूनि में जाने लग गए हैं एंड हाउ कैन आई बी. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो मैं पता लगाती हूँ एंड पता करती हूँ. तो क्या था कि आई आस्क्ड हर व्हाट आर यू डूइंग. तो उन्होंने बताया कि शी डज अ लॉट ऑफ क्रिएटिव वर्क एंड थिंग्स लाइक दैट. तो उन्होंने कहा मैं काफ़ी क्रिएटिव चीज़ों को करने की कोशिश करती हूँ, और उस क्रिएटिविटी में मैं एक्सपीरियंस करती हूँ कि अब क्या करूँ नया, अब क्या करूँ नया. तो बेसिकली अगर आप देखा जाए उसको 2 into 1 into 2 करें या 2 into 2 करें, आप देखेंगे कि इट्स नॉट नेसेसरी दैट आप ने देख लिया सपने में कि आप प्रेग्नेंट हो गए तो आप वाकई प्रेग्नेंट हो जाएंगे. बट इट्स बेसिकली योर क्रिएटिव आइडियाज़ विच कीप कमिंग इनटू योर माइंड, इनटू योर बॉडी, वो आप किस तरह से वो निकालते हैं. और इट किस तरह से उस कॉन्टेक्स्ट में आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं. सो जस्ट गोस विदाउट सेइंग दैट इस तरह की ड्रीम्स कभी कभी इस तरह सिग्निफिकेंट बन सकती हैं. बिकॉज आई आस्क्ड कि आप एग्जैक्टली कितना क्रिएटिव मतलब आप करती क्या है, तो उन्होंने बताया मैं क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स करती हूँ, मैं ये कम्युनिटी के लिए करती हूँ, मैं वो करती हूँ, तो अभी मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ. तो भाई दिस वॉज अ वेरी सिंपल सिंपल वे

तो थ्रोबैक में मैं आपके लिए जो गाना लेकर आ रहे हूँ उसमें एक ये पर्टिकुलर सीन था. वैसे आमिर खान के बारे में यही कहा जाता है दैट कुछ चीज़ें वो स्टंट्स वगैरह करने में डरते हैं, कमाल के उनको डर लगता है. मिस्टर परफेक्टनिस्ट है मगर कहीं जगह उनकी जगह यू नो प्रॉब्लम होती है. तो ये देखा जाता है एक स्टंट था जो उन्होंने खुद किया था. जब तक इन्होंने ये सीन एडिटिंग रूम में नहीं देखा था इन्होंने ये रियलाइज नहीं किया था, वो ट्रेन वाला सीन था, कि अगर उन्होंने उस सीन को करते करते अगर ज़रा सा लेफ्ट या राइट हो गए होते तो जेन्युइनली ही कुड हैव बीन हिट बाय अ ट्रेन. एंड हियर इट गोज. थ्रोबैक में आपके लिए गाना आ रहा है फ्रॉम द मूवी गुलाम, जिसमें दो परफेक्शनिस्ट यानी कि इसमें रानी मुखर्जी और साथ साथ आमिर खान भी नजर आए थे. ब्यूटिफुल ट्रैक दो, आई रियली लव्ड इट.

0: iconic restoration projects to the tune of $36 million. Councillor Sam McDonald says it would be conditional on these projects securing other funding sources.
1: The money only leaves the council's doors if they can provide us with a clear pathway to completion, and that requires a lot of money from other people.
0: And in Oz, plans to build a $1.5 billion Trump Tower on the Gold Coast have reportedly been scrapped. The developer told ABC News the Trump Organisation pulled out of the deal, adding that the brand was becoming increasingly toxic in Australia. In sport, just 24 hours until the all-white squad for the Football World Cup is announced in Auckland. It happens tomorrow. Coach Darren Baisley taking 26 players to the tournament in the US, Canada and Mexico. Auckland FC defender Nando Pienaar asked if he'd received a call yet.
2: I'm not allowed to disclose any information yet.
0: And staying with football, a goal in the 116th minute has propelled Southampton into the English Championship playoff final, beating Middlesbrough 2-1 in the semi-final series at St Mary's Stadium. They'll face Hull for a chance to be in the Premier League next season. Football updates brought to you by Hisense.
3: Sports News.
4: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
5: Hum par shok suchnaye aap tak late hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
6: सूचित किया जाता है कि रमेश चंद्रा की पत्नी प्रेम कृष्णा और सरिता गौंदर की मां नांदी फिजी के भूतपूर्व निवासी वन ट्री हिल की ईश्वरी अम्मा चंद्रा की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार आज दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन-साइट क्रीमेशंस में किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 021-238-2412 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने, रमेश चंद्र की पत्नी प्रेम कृष्णा और सरिता गौंदर की मां नांदी फिजी की भूतपूर्व निवासी वन ट्री हिल की ईश्वरी अम्मा चंद्रा की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार आज दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन-साइट क्रीमेशंस में किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 021-238-2412 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचित किया जाता है कि बलवंत मिस्त्री अरविंद वल्लभ, मधुबेन मिस्त्री और जयाबेन मिस्त्री की मां फिजी में नावुआ सेंट्रल स्टोर के मालिक स्वर्गीय वनमाली भाई वल्लभ की पत्नी जशुबेन मिस्त्री की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार आने वाले शुक्रवार के दिन शाम 4 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन-साइट क्रीमेशंस में किया जाएगा। सूचना दोबारा सुने, सूचित किया जाता है कि बलवंत मिस्त्री अरविंद वल्लभ, मधुबेन मिस्त्री और जयाबेन मिस्त्री की मां फिजी में नावुआ सेंट्रल स्टोर के मालिक स्वर्गीय वनमाली भाई वल्लभ की पत्नी जशुबेन मिस्त्री की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार 15 मई के दिन आने वाले शुक्रवार को शाम 4 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन-साइट क्रीमेशंस में किया जाएगा।
5: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: The highs of 19, overnight temperature of 8, आज का forecast बताया जा रहा है. Southerlies जो है धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे. It feels like 15 degrees right now, 525 पे sunset बताया गया है.

एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल. हाउ आर यू? स्टूडियो की घड़ी में इस समय 11:05 होने वाले हैं. आपका साथ निभाने के लिए मैं काशिका 12 तक आपका साथ जरूर निभाने वाली हूँ. लेकिन इसी के साथ साथ मैं ये बताना चाहती हूँ दैट ये अब आपके लिए फिनाले इसकी तरफ ही बढ़ रहे हैं हम, जहाँ पे हम फ्लाई अवे फ्रेंजी जो है हम आपको ये कोड जो है दो कोड और दे रहे हैं. एंड आई होप दैट ये कोड आपने सही सही लिखा जाए. फ्राइडे तक एक्चुअली ये कोड है, तो मैं आपको जो कोड देने वाली हूँ वो थोड़ी ही देर में दूंगी. लेकिन इस घंटे पर एक तो रेस्क्यू मी रिसाइकल में 6 वर्ड स्टोरी और न्यूजीलैंड म्यूजिक मंथ में हम किसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं इसके बारे में भी बातचीत करेंगे. एंड कुछ लोग ओवरसीज चले गए हैं, हाउ इज द लाइफ टेकिंग देम, इन सब बातों में थोड़ी बहुत हम आपके साथ बातचीत करेंगे. बट कशिश फूड्स को थैंक यू करते चले जाते हैं. कशिश फूड्स के सौजन्य से आपके लिए मुमकिन हो जाता है जहां पर माय टाइम मैं काशिका आपके लिए लेकर आ जाती हूं 10 से 12 बजे के दरमियान मंडे टू फ्राइडे. ये सफर ऐसा होता है जहां पर मैं कोशिश करती हूं

0: हूँ आपके साथ कुछ ऐसी ऐसी बातें शेयर करना, जिसके साथ साथ आप और हम मिलकर उस सफर को और भी खुशनुमा बना देते हैं। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये सब तो चलता रहता है, लेकिन आपके लिए एंटरटेनमेंट तो भाई हम फुल ऑन हम लेकर आते हैं। और ऐसे में आपके लिए जब हम एंटरटेनमेंट की बातें करते हैं तो कुछ ना कुछ खास चलाते ही रहते हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच दिस मूवी, बट आई हैव वॉच कृष्ण अवतार एंड आई ऑल्स एब्सोल्युटली लव द मूवी। अच्छा चलिए प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्रैक सुनते हैं। बजाऊं क्या? अरे अरे अरे, गाना तो मैं बजा ही दूंगी, लेकिन साथ में मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ साथ जुड़ जाएं और भी चीज़ों में। लेकिन ये चीज़ें क्या हैं भाई, इनको जाने के लिए गाना तो बजाना पड़ेगा ना, तभी तो मैं आगे बढ़ के जाऊंगी। चलिए
1: बजाओ क्या।

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: सेलिब्रेटिंग लोकल आर्टिस्ट
3: बैक योर बैकयार्ड बीट्स
4: बैक यार्ड बीट्स और आपकी इन बीट्स में हमें बहुत मज़ा आ रहा है. और आज जिस कलाकार को मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, ये न्यूजीलैंड बेस्ड एक नेपाली ओरिजिन के आर्टिस्ट हैं और ये बॉर्न एंड रेस्ड जो है इनकी जब ये पैदा भी हुए और बड़े भी हुए इन इंडिया. म्यूज़िक जो है इनकी रूट्स में है और स्टोरी टेलिंग, इनकी जर्नी किस तरह से इनका एक्सपीरियंस है फॉर द कंट्री यानी कि न्यूजीलैंड, वो पूरा बयान कर रहे हैं नन अदर देन भास्कर प्रधान. भास्कर प्रधान जी, मैं आपको वेलकम करना चाहती हूँ ऑन NZ लोकल म्यूज़िक टैलेंट, जो हम लोग NZ म्यूज़िक मंथ में आपको अब आगे लेकर आ रही हूँ. भाई इसी तरह से आप चाहते हैं कि हम आपको भी आगे लेकर आएँ. आप बहुत अच्छा गाते हैं, आपने कोई गाना रिकॉर्ड किया है प्रोफेशनली, तो आप हमें buzz@humfm.com पे ईमेल कर सकते हैं. आप जब हमें ईमेल करते हैं तो हम देखते हैं कि आपका बायो उसमें आया कि नहीं आया, एंड दैट्स अबाउट इट. आपका बायो उसमें आ गया, आपका गाना अच्छा लगा, तो हो सकता है हम आपको शॉर्टलिस्ट करके, आज जैसे भास्कर प्रधान जी का गाना बजा रहे हैं तो आपका भी बजा सकते हैं. टॉप थ्री जो हमारे कंटेस्टेंट्स जो या आर्टिस्ट होंगे वो फीचर किए जाएंगे डेफिनेटली ऑन द रोवा. और साथ साथ देखते हैं कि क्या आप अपने फेवरेट आर्टिस्ट को ये पायदान पे आगे चढ़ाना चाहते हैं कि नहीं. लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना है अपने सोशल्स पर और किस तरह की इनकी इंगेजमेंट इन्हें आगे लेकर जाने वाली है, बस यही कहानी है. और हमारे इस आज के टैलेंट को वेलकम करते हैं भास्कर प्रधान.

0: Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
1: हम फ्लाईवे फ्रेंजी में बस आपको कोड देने का वक्त आ चला है और मैं आपको आज का कोड देने वाली हूँ जो एक घंटे तक वैलिड रहेगा. रोवा ऐप उठाइए और रोवा ऐप उठाने के बाद आप लोग फटाफट एंटर करिए जो मैं बताने वाली हूँ. आपका बहुत ही सुनहरा मौका है जो आपको मैं कह सकती हूँ टिकट की तरफ लेके जा रहा है. ये फ्लाइट पकड़ने का मौका आपके लिए आ चुका है जहाँ आज का कोड है फ्लाइट FLIGHT. फ्लाइट लिखिए रोवा पे, आप जाइए इस कोड को एंटर कर दीजिए, आपका नाम ड्रॉ में चला जाएगा. एंड दिस कोड इज वैलिड ओनली फॉर 1 आवर.
2: ड्राइविंग योर होम Drive Show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि आज ही मेरे को जहाज मारा किसी ने,
5: वो भी आई लव यू वाला.
4: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ पे किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
5: अच्छा आप दिलजीत हो?
4: आए आए बताओगे यार.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
6: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम.
7: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि ड्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
6: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है.
7: और पता है मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है.
6: और दैट्स नॉट गुड. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर. और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं.
8: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111. रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18.
9: Flight Centre's Big Red Sale has landed with up to 50% off stays, cruises and tours, plus sky high savings on flights, holidays and more. Book online or in store today. End 2nd June. T's and C's apply. Flight Centre, your centre for travel.
10: Before winter really sets in, make sure your windows and doors are ready. From drafty window gaps to doors that won't close properly, Exceed fixes windows and doors to help keep your home warm. Call 0800-EXCEED.
11: We fix windows and doors.
12: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
13: क्यों, क्या हुआ?
12: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
14: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800-564-424.
15: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है. वेस्ट सिटी GWM हैवल. हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स. आज ही वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले. लिमिटेड टाइम ऑफर. टीज एंड सीज अप्लाई. फॉर मोर इन्फो विजिट westcityautogroup.nz और सर्च फॉर वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स.
16: Jen didn't think she needed a DVS system.
17: Oh, I've got insulation in that.
16: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
17: Ah, yeah.
16: So Jen got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete.

0: सिक्स वर्ड स्टोरी।
1: मेरी आज की सिक्स वर्ड स्टोरी पे मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इसे आपने भेजा 2977। द वॉर इज ओवर इजंट इट, द वॉर इज ओवर इजंट इट। सो नो कमेंट्स बट थैंक यू सो मच, आपका टेक्स्ट आ गया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं बता देती हूँ, आपकी कम्युनिटी में कुछ खास हो रहा है तो आप हमें buzz@hamfm.com पे ईमेल ज़रूर कर सकते हैं। 23rd of May के दिन आप अपनी डेट को सेव कर लीजिए। वाइव मिक्स इवेंट्स आपके लिए द ग्रैंड मस्ती नाइट लेकर आने वाले हैं द नेटबॉल मानोरीवा, जहाँ पे फीजी के फेमस आरजे जैसे SN, जय भैया जी, राउडी रमन आपके लिए परफॉर्म करने वाले हैं। 4-17 साल के बाद डांसिंग लेजेंड जो हैं वो भी आ रहे हैं। 5 से 6 मसाला स्किट्स होंगी जो दो तरह की आवाज़ें निकालते हैं, मनी डिसूजा ये भी हैं परफॉर्म कर रहे हैं, मॉन्टो मोनिका और युवा डांस ग्रुप और टॉप DJs आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। इट विल बी अ सोलफुल एंड अमेजिंग धमाकेदार नाइट जहाँ पे बहुत सारे गिव अवे वाउचर्स हैं, चाहे वो आप डायमंड एंड गोल्ड के वाउचर्स हैं, रॉयल गोल्ड के वाउचर्स हैं, ग्रीन हॉर्न हैम्पर्स हैं और आपके लिए खाने पीने के वाउचर्स भी बहुत सारे हैं। फ्री पार्किंग है, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है और हमारे अपने केतन भी इसमें परफॉर्म करने वाले हैं। तो चले ज़रूर जाइएगा यहाँ पर और ग्रैंड मस्ती नाइट में इंजॉय करने के लिए।
0: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Klassiker.
1: Boah.
2: Hau.
1: An Grund.
3: तो मैं बात करना चाहती हूँ, यू नो, क्वींसलैंड गोल्ड कोस्ट में कुछ कॉन्वर्सेशंस हो रही थी जो न्यूजीलैंडर्स ऑस्ट्रेलिया मूव करके गए हैं, कि लगभग 40,000 न्यूजीलैंडर्स मूव करके गए थे पास्ट वन ईयर में, और 100 लोग उसमें से हर रोज़ हमारे डिपार्चर गेट से निकल कर जा रहे थे. मेजॉरिटी जो एज थी वो 18 to 35 की एज थी, लेकिन कुछ लोग सही मायने में बिना किसी होमवर्क के वहाँ पहुँच गए, और उसके बाद पहुँच कर उन्होंने क्या क्या फ़ेस किया, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग और कितनी सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से उन्हें बहुत कुछ सफ़र करना पड़ा था. लेकिन अब ये रफली न्यूजीलैंड इज़ लाइक अ होम, लेकिन वहाँ कितनी सारी कठिनाइयाँ फेस कर रहे हैं. वहाँ लोगों ने अपनी अपनी कम्युनिटीज़ बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग वापस लौट कर भी आए हैं. ये स्ट्रगल क्या आप देख रहे हैं या नहीं? ये काफ़ी हद तक आजकल यू नो बातचीत चल रही है लोगों की, क्या आप इसे रिलेट कर पाते हैं?

0: चाहे आप हमके ढिंचैक बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी. बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड. कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स.
1: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले. जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट. squirrel.co.nz.
2: Popeyes is turning two, but you get the presents. Their limited time birthday box is packed with two drumsticks, six nuggets, and regular Cajun fries for just $11.90. Celebrate 2 years of world famous Louisiana

0: Show.
1: Rescue me, recycle me.
2: रेस्क्यू मेरी साइकिल में हम आज बातें कर रहे हैं अबाउट कितनी तरह की हम लोग सब्जियां होती हैं जो वेस्ट हो जाती हैं, उनका हम क्या कर सकते हैं। तो एक चीज़ और जो थी जो हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं उन सब्जियों की, हम जैसे ब्रेड पकौड़ा होता है ना, उस तरह से हम ब्रेड रोल बना सकते हैं। तो आपने जो आपके घर में ब्रेड्स पड़ी हुई हैं, सब्जी को ले ली, उसके अंदर आपने छोटे छोटा प्याज टमाटर हरा धनिया काट के आपने ऐड कर दिया, ठीक है, अच्छी तरह से इसको भून लीजिएगा। उसके बाद भूनने के बाद आपने इसको निकाल लिया, आपने ब्रेड ली, आपने ब्रेड लेके उसको हल्का हल्का अपने हाथ से गीला कर लिया ताकि वो बाइंड हो जाए, दैट्स अबाउट इट। आपने उसको बाइंड करना है और उसको सील कर देना है, सब्जियों के सब्जी जो है उसके अंदर भरकर आपने उसको बाइंड कर देना है ब्रेड को, और फिर उसको आपको फ्राई कर देना है। बहुत सिंपल है और आप इसे डेफिनेटली इंजॉय करेंगे, और ये आपका ब्रेड पकौड़ा होगा, इसमें सब्जियाँ भी चली गई। बच्चे जो है ये केचप के साथ ब्रेड रोल्स बहुत शौक से खाते हैं, एंड एक्चुअली अगर आप चाहें तो इसको टिफ़िन में भी भर कर दे सकते हैं, खुद भी अपने टिफ़िन बॉक्स में इसको ऐड भी कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो आपके लिए रेस्क्यू में हो चुका, आपकी सब्जी को रेस्क्यू करने का।

तो चलिए फिर इसी के साथ साथ कीजिए स्वीकार काशिका का नमस्कार। आज का दिन कहलाता है हम पवार, मेरी मुलाकात होगी आपसे, दिन कहलाएगा गुरुवार, वीरवार, बृहस्पतिवार, जो भी से कहना चाहे, लेकिन अभी के लिए चलती हूँ, कल सुबह 10 बजे आपसे मुलाकात ज़रूर करती हूँ। ऑल राइट, आज तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारी एक साथ डिस्कस हुई, बातचीत हुई, और उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने डेफिनेटली सोचा होगा हाँ ये मेरे काम की चीज़ है। तो भाई आपके लिए जो भी काम की चीज़ है उसे पकड़ कर रखिएगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद मस्त मौला हमारे अपने केतन आ जाएंगे लंच बॉक्स में, आप इनका साथ जरूर दीजिएगा। सो लुक आफ्टर योरसेल्फ्स, कशिश फूड्स के ओर से माय टाइम लेकर मैं आपके लिए कल सुबह 10 बजे फिर आ जाऊंगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज कशिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम द हम स्टूडियोज, लुक आफ्टर योरसेल्फ्स, बाय।

0: breakfast show with Vijay and Pooja.
1: पूरी planning से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब क्या मैसेज
3: कर रहा हूँ? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ में नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।